ओम शं शनैश्चराय नमः। कलयुग में न्याय के देवता शनि देव भगवान जो सबको कर्म फल देते हैं, इसीलिए तो कहते हैं शनि की बुरी दशा से बचना हो तो हमेशा अच्छे कर्म करो। एक बार रावण भीषण तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते हैं। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और रावण से वरदान मांगने को बोले। इस पर रावण ने अमर होने का वरदान मांगा। तब ब्रह्मदेव ने रावण को कहा कि ये तो मेरे वश की बात है ही नहीं, ये तो सिर्फ शनि देव ही कर सकते हैं। शनि देव शत्रु नहीं है, शनि देव मित्र हैं, तुम उन्हीं की पूजा करो।

आपने सोचा कि मैं अमर नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं अपने आप को अमर न कर सका तो क्या हुआ, मैं ऐसा काम करूंगा कि मैं अपने होने वाले पुत्र को अवश्य ही अमर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ऐसा सोच विचार कर रावण ने सभी ग्रह और नक्षत्रों पर चढ़ाई करके सबको पराजित करके सबको बंदी बना लिया, सभी ग्रह नक्षत्रों को अपने अधीन कर लिया। तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था, क्योंकि रावण ने सबको अपने वश

महान तपस्वी रावण जो अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर चुका था, उसने अपने पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह और नक्षत्रों को ज्योतिष के हिसाब से अमरत्व के निश्चित स्थान पर बैठाकर अमर योग बना दिया, ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो, उसके होने वाले पुत्र को कभी कोई मार न सके।

बनने से सभी देवता चिंतित हो गए और न्याय के देवता शनिदेव से मदद की गुहार करने लगे। तब शनिदेव सभी देवताओं की करण पुकार सुनकर न्याय करने की बात सोचने लगे और जन्म का शुभ मुहूर्त आने के सही वक्त पर उन्होंने अपना एक पांव आगे बढ़ा दिया, जिससे अमर योग समाप्त हो गया। और अमर योग के समाप्त होने पर रावण ने क्रोध में आकर शनि देव के पैर पर वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे एक पैर सदा के लिए लंगड़ा हो गया।

सच में न्याय के देवता हैं। वो अन्याय को दूर करने के लिए स्वयं समस्या में चले जाते हैं, मगर अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देते। इसीलिए तो कहते हैं, सुखी रहना है, चिंता से दूर रहना है, तो शनि देव की पूजा करो, शनि देव की आराधना करो। जय शनि देव।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जन सेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
2: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
1: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
3: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
1: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
4: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना दयाकर जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
1: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम करकेटा।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे टी20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स समाधान दीदी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवी पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा

0: आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वी सी प्रमोद। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi calls for greater focus on health, nutrition and overall development of adolescent girls. Chairs valedictory session of National Departmental Summit on Women and Child Development. Delhi Police denies permission for proposed protests at Jantar Mantar in National Capital today. Tightens security across National Capital. Delhi Metro shuts entry and exit at 45 stations. All 10 candidates from Uttar Pradesh, including 8 from the BJP and 2 from Samajwadi Party, elected unopposed to Rajya Sabha. US lifts sanctions on sale of Russian diesel in global markets until April next year amid unprecedented price surge. In sports, Putul Sonowal assures country's first ever medal at World Bowls Champion of Champions after reaching semi-finals in Australia. And in men's cricket, West Indies beat India by 6 wickets in the second T20 international to level 5 match series 1-1. Prime Minister Narendra Modi has called for greater focus on the health, nutrition and overall development of adolescent girls. The Prime Minister made the remarks while chairing the valedictory session of the two-day National Departmental Summit on Women and Child Development in New Delhi yesterday. Mr. Modi emphasized the importance of Jan Bhagidari, people's participation, and called for Anganwadi centers to be developed as centers of community participation. He said families living near Anganwadi centers should be encouraged to contribute on special occasions by sharing nutritious food, toys and other locally relevant items for children. Discussing issues related to women's safety, Mr. Modi advised the development of age-appropriate modules for children on women's safety, dignity and empowerment. He also stressed the importance of preventive measures through coordinated efforts across various departments. Prime Minister Modi has stressed the need for young people to continuously upgrade their skills and adapt to emerging technologies amid rapid technological advancements. He made these remarks while interacting with members of Team India.
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
4: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: हाँ मेरी कसम,
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
8: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
9: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
10: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल चाल, खुशामुदीन, सब बढ़िया है ना जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी का, वेलकम बैक एक बार फिर से, एक और नई सुबह है, ताजगी से भरी हुई, आप सभी का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। और आज का दिन है शनिवार का, बहुत ही खूबसूरत दिन। सैटरडे की सुबह में आनंद आपके रेडियो पर आ चुका है दस्तक देने के लिए। जो लोग रेडियो खोल चुके हैं, जिन लोगों ने जस्ट अभी रेडियो ट्यून इन किया है, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सबसे पहले घड़ी मिलाएं, 8:21 हो गए हमारे स्टूडियो की घड़ी में। और बहुत तेज़ी से मौसम बदल चुका है श्रोताओं, आप ऐसे में अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का खास ख्याल रखिए और अपने स्पेशली घर के बुज़ुर्गों का विशेषकर ख्याल रखें, क्योंकि मौसम में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हुआ है, बहुत तेज़ी से चेंज हुए हैं वेदर। आप भी देख रहे हैं, आप कल से जो है मौसम लगातार बदल रहा है, तो ऐसे में जो है आपने बहुत ख्याल रखना है, बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। खैर, बस इतना ही कहना चाहते हैं, आज के सुबह के सफ़र की शुरुआत हो रही है। तो दोस्तों देखो, जीवन है तो समस्याएँ आना बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है। और जब समस्याएं जीवन में आती हैं तो वो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं और बहुत कुछ बना कर जाती हैं, है ना। तो ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई अप्स एंड डाउन है, कोई लो फेजेस चल रहा है, तो कोई बात नहीं जी, लाइफ है, अप डाउन होती रहती है ज़िंदगी में, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं, बस आपको ना अपना वो नहीं छोड़ना है, कहते ना अपने अंदर की मजबूती को मेनटेन रखना है। चलिए, आज के दिन की आपको ढेरों मंगल शुभकामनाएं देते हैं। और अभी लौट कर आएंगे तो और ढेर सारी बातें करेंगे। 10 तारीख हो गई है, अक्टूबर का महीना है, बहुत ही खूबसूरत तारीख है। आप ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। एक सफ़र की शुरुआत करेंगे खूबसूरत गीत के साथ, एंड उसके बाद वापस आएंगे तो फिर और भी बात करेंगे। आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

श्रोताओं, आज की मॉर्निंग वाइब की शुरुआत हो गई आनंद के साथ, किक स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही फैबुलियस गाने के साथ। आप ऐसे ही कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned to FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: कोई मिल गया,
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM.

बहुत ही सुना है भाई, इस गाने को बहुत ही ज्यादा सुना है अपने स्कूल टाइम में। बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ। और श्रोताओं, कल मूसलाधार बारिश ने जो सडन मौसम को चेंज कर दिया है ना, मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मौसम पूरी तरह बदल चुका है। पूरी तरह ठंडी हवाएं चल रही हैं, एकदम बर्फीली हवाएं चल रही हैं। ऐसे में अपने घर के बुजुर्गों का और अपना खास ख्याल रखना है। आपने देखो मेरे गले की बैंड बज गई है, क्योंकि कल रात ही पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मतलब गला पूरा जकड़ा हुआ है भाई। बड़ी बेचैनी हो रही है गले में, तो इसलिए आप प्लीज अपना ख्याल रखें। ये जो मौसम चेंज हो रहा है ना, इसमें बिल्कुल भी भीगने भागने की जरूरत नहीं है, है ना। और मौसम पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, तो थोड़ी सी जो आदतें हैं वो हमें भी चेंज करनी है। तो क्योंकि अब हम आपको बता दें सर्दियों की तरफ रुख कर रहे हैं, आपको भी अपना ध्यान रखना है भाई। देखो सर्दियां तो फाइनली आएंगी ही, नवरात्रे जैसे ही आते हैं सर्दियां तुरंत आ जाती हैं। आज का दिन बहुत खास है, आज अमावस भी है, पितृ अमावस्या है, आज बहुत बड़ा दिन है, है ना। आज के दिन जो है, जो हम श्राद्ध करते हैं उसका फाइनली लास्ट डे होता है, जो हमारे घर की जो पितृ पक्ष में हम श्राद्ध करते हैं वो सारा आज के दिन हम जो है कंप्लीट करते हैं। आज पितृ अमावस्या है, आपको ढेरों शुभकामनाएं। और जब ये अमावस्या शनिवार को पड़ जाती है तो और भी खास हो जाता है। शास्त्रों के मुताबिक माने तो आज के दिन ये अमावस्या पड़ने से बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी लाइफ की दूर हो जाती हैं। तो शनिवार का दिन पितृपक्ष अमावस्या, ढेरों शुभकामनाएं। कल मैया आ रही है, यानी कि माता रानी आ रही है, और आप लोग ढेर सारी तैयारियां करने वाले हैं। आज क्या कुछ खास रहने वाला है मार्केट में, सब कुछ पता लगेगा आपको इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी उपाय है, कोई रेमेडी है, कोई मेडिसिन है, या कोई ऐसी चीज है जिसे करके यार मेरे गले को थोड़ी सी राहत मिल सकती है, तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा 9837896896 पर। गला कैसे हम सही कर सकते हैं, क्या फंडा है आपके पास? बहुत भयंकर जुकाम होने के चांसेस लग रहे हैं मेरे को अब। ढेर सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हैं। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपके भी हालचाल अच्छे हैं। कल रात को हमने आपको रामलीला ग्राउंड में देखा था और आप बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अरे वाह क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। ये तो बड़ी प्यारी बात कर दी आप लोगों ने यार, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें आप करते हो ना, दिन बना देते हो यार। एक मैसेज और आया है, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आनंद? गुड मॉर्निंग जी, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर, कैसे हालचाल हैं? यार मेरे हालचाल अच्छे हैं। आप बहुत ही अच्छे गाने प्ले करते हो, बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सुनने में। थैंक यू सो मच यार, बस इतना ही कहना चाह मैं बस इतना कहना चाहता हूँ। देखिए अच्छे विचार आपके मन को खूबसूरत बनाते हैं और अच्छे कर्म आपके जीवन को महान बनाते हैं, तो इसीलिए अच्छे कर्म करिए और अच्छे विचारों को अपनाइए अपनी जिंदगी में। आज की सुबह अगर आप कॉन्सर्ट के पासेस जीतना चाहते हैं तो इस घंटे भी आप जीतेंगे और अगले घंटे भी आप जीतेंगे, उससे अगले घंटे भी आप जीतेंगे। तो 13 और 14 को अगर आप हमारे साथ डांडिया खेलना चाहते हैं, इस नवरात्रि को स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। थोड़ी देर में आपके साथ होंगे ढेर सारे गेम्स। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। वेरी गुड मॉर्निंग।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग. आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
2: कहा मेरी कसम?
1: मिस कर दिया. रीलोड
3: चाय चाय चाय
1: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10.
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है. श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा. 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार. आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद. कॉल 7055011681. मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में.
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन. स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970.
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01.
6: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है.
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है. आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं.
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री.
7: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद.
9: बसंती इनके सामने मत नाचना.
4: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना.

यार एहसान तो आपका मेरे पे बहुत ज्यादा है, आप डेली मेरे शो में आते हो सुबह सुबह ढेर सारी बातें लेकर। चलिए बात करते हैं 10 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। क्यों खास है 10 अक्टूबर की तारीख?

सोनिए एवरीबॉडी, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज। सैटरडे की सुबह यार, चलो बात करते हैं 10 अक्टूबर के इतिहास के पन्नों की। तो आपको बता दें, 1992 में कोलकाता को हावड़ा से जोड़ने वाला हुगली नदी पर केवल आधारित देश का सबसे बड़ा पुल विद्यासागर

0: सेतु यातायात के लिए खोला गया था श्रोताओं आज ही के दिन। इसके अलावा भारत ने इसराइल के रूस के साथ जो है भाई साहब AWACS निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता किया था सन 2003 में। एंड 2014 में नोबल स्मिथ द्वारा भारतीय समाज कार्यकर्ता कैलाश सारथी को नोबल शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की थी आज ही के दिन लेडीज एंड जेंटलमैन। ये आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सन 1910 में आज के दिन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में वाराणसी में प्रथम अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मैं कह रहा था यार गली की बैंड बजी पड़ी है, आपके पास कोई अच्छी टिप्स है, अच्छी रेमेडी है तो शेयर करो मेरे साथ 9837896896 पे। क्यूबा ने स्पेन से स्वतंत्रता पाने के लिए विरोध किया था आज के दिन से 1868 में। श्रोताओं एंड फिजी ने स्वतंत्रता हासिल की थी सर 1970 में आज ही के दिन। तो ये आज के दिन से जुड़ी कुछ खास बातें थी। 1991 में भारत ने विश्व कप कैरम प्रतियोगिता टीम का खिताब जीता था आज ही के दिन श्रोताओं। और आपको बताते चलें आज ही के दिन कुछ महान कलाकारों का भी जो है जन्म हुआ एंड उनके बारे में बात करना तो बनता है। सबसे पहले आज का दिन नाम आता है मंजीत सिंह, जो भारतीय रोवर एथलीट है, इनका जन्म हुआ था 1988 में आज ही के दिन। आर के नारायण भारतीय उपन्यासकार सन 1906 में जन्मे। बॉलीवुड की एक अभिनेत्री बहुत ही पॉपुलर है, उनका जन्म हुआ था 1954 में आज ही के दिन। मदन मोहन जी का हुआ, जो भारत के भूतपूर्व 28वें मुख्य न्यायाधीश थे, 1933 में आज के दिन जन्म हुआ था। बलवीर सिंह भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी जी का जन्म हुआ आज के दिन श्रोताओं, और 1924 में। इसके अलावा आज के दिन एक और खास चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं और हम उसे क्या कहते हैं, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे आज मनाया जाता है श्रोताओं। इसके अलावा और भी तमाम सारे स्पेशल दिवस जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं, हौले हौले आपको हम बताते रहेंगे इस स्टेशन ऑफ द नेशन पर। चलिए जी, स्टूडियो की घड़ी में फिलहाल सुबह के 9 बज चुके हैं, ये बताना बहुत जरूरी है। आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द बेस्ट, वीकेंड है, सैटरडे है, तो अच्छे से निकल जाइए। फिलहाल गुड मॉर्निंग, ये इसलिए मैंने बजाया क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए हैं, थैंक यू।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
6: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: ये अपनी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कह रही है कि देखो इस बार का फेस्टिवल बहुत खास होने वाला है क्योंकि सब लोगों के घरों पे जो है एक और मुफ्त सिलेंडर पहुंचने वाला है। क्या बात है यार, ये तो एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। तो ये क्या है पूरा माजरा, अभी आपको बताने वाला हूँ इसे स्टेशन ऑफ द नेशन पर। 9:03 हो गए सैटरडे की सुबह, आज 10 तारीख है, 10:10 पे 10 तारीख है, 10वां महीना है। 10:10 पे बहुत ही अमेजिंग पोर्टल बनने वाला है, अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो उस टाइम पे तो वो सच हो सकता है, बड़ा अच्छा होना चाहिए, डेफिनेटली वो काम करेगा अगर आप सही हैं तो भाई, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत सोचोगे, आई नो दैट, बट आप डेफिनेटली सही सोचने वाले हो, आई टोटली एग्री विद यू, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ये चीज करते हो आज के दिन तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि देखिए 10 तारीख है, 10वां महीना है, 10:10 पे ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि आज एक मैजिकल पोर्टल खुलेगा, तो मैं भी अपना उस मैजिकल पोर्टल को आपके साथ शेयर करूंगा एंड डेफिनेटली आप भी कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग स्टार, बहुत ही कमाल की बॉलीवुड एक्टर जिनका आज हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, शी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग यार, मेरी बड़ी ऑल टाइम फेवरेट हैं ये। ये कौन सी अभिनेत्री है जिनके बारे में आज आरजे आनंद बात करने वाला है आज की सुबह, सच में शी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। ओह माय गॉड, व्हाट अ सॉन्ग, बिन तेरे तेरे बिन साजना। आपको पता है मैं कौन सी अभिनेत्री के गाने प्ले कर रहा हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कौन सी अभिनेत्री है ये तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896, आप व्हाट्सएप करके जरा मेरे को बताइएगा। इनका एक और गाना प्ले करता हूँ, वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट। अच्छा ये वाला सुनो, एक और प्ले करता हूँ। कौन सी सेलिब्रिटी की बात कर रहा हूँ आज की मॉर्निंग में, जल्दी से व्हाट्सएप करके बताओ फटाफट से 9837896896 पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सबसे बड़ा क्लू देता हूँ, इनका ये गाना काफी पॉपुलर है। व्हाट्सएप करके आप मुझे बता सकते हैं कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ आज की सुबह, ठीक है। मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये वाली बात, थोड़ी देर में लौट कर आऊंगा तो बताऊंगा, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही ट्यून इन रहिए आनंद के साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए, मुझे इंतजार है आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस का, तो इमीडिएटली आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा 9837896896 पर। शी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग सेलिब्रिटी यार, बहुत ही कमाल के एक्टर है, इनके गाने, इनके डायलॉग, इनके पिक्चर मुझे तो बहुत पसंद है यार। मैं कौन सी हीरोइन की बात कर रहा हूँ आज की सुबह, मैसेज करिएगा। 9:06 हो रहे हैं और अभी लौट कर आते हैं तो आपको डानी नाइट कॉन्सर्ट के पासेस देने वाला हूँ 13 और 14 के, मेरे पास सिल्वर प्लैटिनम गोल्ड तीनों कैटेगरी के पासेस हैं, अगर आप इनमें से कुछ भी कोई भी एक विन करना चाहते हैं तो आपको छोटे से सवाल का आंसर करना है, अगर आप दोगे सही जवाब तो आप जीतोगे आज की सुबह एक्साइटिंग वाउचर। अगर आप जीतना चाह रहे हो तो मुझे मैसेज कर दो यार 9837896896, ठीक है। मैं अभी लौट कर आता हूँ, अभी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए आरजे आनंद को। कुछ भी कहना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896 पर। स्टूडियो का नंबर बहुत ही आसान है भाई, इस नंबर को सेव करके रखा करो यार, कभी भी काम आ सकता है। फिलहाल अभी आने वाला गाना आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का डोज देने वाला है, चलो जी इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज की सुबह की बेहतरीन शुरुआत। ये ब्यूटीफुल ट्रैक निकाल दिया मैंने आपके रेडियो पर, इसी को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ये सैटरडे है, आनंद के साथ हैं आप।
1: दिमाग ना हिला हुआ है तुम्हारा,

0: मुझे भी आपको है बताना कि भैया घड़ी मिला लो, 9:15 हो गए, आप आनंद को सुन रहे हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ढेर सारे मैसेजेस मेरे पास पहुंच रहे हैं आज की सुबह, और अभी मैं आपको डांडिया नाइट के 13 और 14 के पासेस देने वाला हूं एक्सक्लूसिवली लाइव। एक छोटा सा सवाल होगा, उसका रैंडम जवाब देकर जीतूंगा।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे, सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: चलिए जी, वेलकम बैक है। आज दिल्ली में इंटरनेट बंद है, बहुत सारे लोगों का दिल्ली में इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अगर आप आज दिल्ली जाने का प्लान कर रहे हैं या आप दिल्ली निकल चुके हैं और आप मुझे सुन रहे हैं, तो मैं फटाफट से बता देता हूं, क्योंकि कई लोग हमें सुनते हैं वहां पर भी। तो भैया, अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आपको बता दूं, आज जो है वहां पे CGP प्रोटेस्ट दिल्ली में 24 घंटे के लिए इसलिए इंटरनेट पर रहेगा बैन। एंड प्रोटेस्ट से पहले एक अलर्ट जारी कर दिया है, आज सैटरडे है, जंतर मंतर पर एक बार फिर से। तो इसीलिए जो है कई किलोमीटर तक जो है इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मेरे भी कुछ लोग हैं जिनसे मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं बात करने का इंटरनेट पे, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि वहां पर अनफॉर्चुनेटली अभी इंटरनेट बंद है। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है, आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, तो आपको मैंने इसीलिए पहले अलर्ट मैसेज दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। और कल जो बारिश हुई ना, उसके बाद मुरादाबाद का मौसम पूरी तरह बदल चुका है बॉस। फिलहाल आज का मौसम क्या कहता है, इस पर एक नजर डालेंगे इमीडिएटली। करंट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस अभी दिखा रहा है बॉस। एंड हवा की बात करूँ तो 5 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं रहने वाली हैं आज की। और ये टेम्परेचर हाईएस्ट की बात करूँ तो 29 डिग्री पहुंच सकता है, लोएस्ट की बात करूँ तो 22 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। एयर क्वालिटी अच्छी हो गई है, ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है, लेकिन यार आज जो हवाएं हैं ना, ये आपको थोड़ी ठंडी ठंडी फील देंगी। लेकिन मुझे मेरा गला अच्छे से बिल्कुल भी फील नहीं लेने दे रहा है, क्योंकि यार जुकाम हो गया है बहुत भयंकर वाला, मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा।
7: यू आर लिसनिंग टू द बिगेस्ट हिट्स, द बिगेस्ट हिट्स नॉन स्टॉप।
8: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
0: एब्सोल्युटली मजा आएगा। एक अच्छा गाना प्ले कर रहा हूँ आपके लिए, तो मजा तो डेफिनेटली आपको आएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे एक बात बताओ यार, मैसेज करके। चलो, आपको मैं एक यहाँ पर गोल्ड का नहीं, अभी सिल्वर का हम आपको एक पास देने वाले हैं अभी के अभी, राइट नाउ। ठीक है, आपको क्या करना है, मुझे फटाफट व्हाट्सएप करना है राइट नाउ।

चलो एक काम करते हैं, छोटा सा सवाल पूछते हैं, आप मुझे फटाफट फोन करके ना आप मुझे कॉल कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट से आपको मेरे को तीन गाने सुनाने होंगे नवरात्रि के, जो डांडिया स्पेशल गाने होते हैं ना, डांडिया वाले जिसपे लोग डांस करते हैं, वो तीन गाने आप फटाफट से मुझे गा करके कॉल करके सुनाएंगे। देन उसके बाद मैं आपको सिल्वर पास दे दूंगा 13 और 14 की जो डांडिया नाइट कॉन्सर्ट हो रहे हैं उसके पासेस। जस्ट अभी आप मुझे फोन कर सकते हैं 9837896896। तीन गाने छोटे छोटे आपको गुनगुना रहे हैं जिसपे अपन डांडिया खेलते हैं और उसके बाद आप जीत जाएंगे। देखते हैं किसका कॉल पहले लगेगा। अगर आप आना चाहते हैं हमारे साथ फन करना चाहते हैं 13 और 14 को, तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है 9837896896 पे। बाकी हमारे इंस्टा हैंडल पे जाके भी आप कॉन्टेस्ट खेल सकते हो। FM मुरादाबाद का आईडी है FM मुरादाबाद 89.6 के नाम से, और मेरा आईडी है रेडियो वाला आनंद के नाम से। वहां पर जाओ, वहां भी मैंने बहुत सारे रील और कॉन्टेस्ट चालू कर दिए, वहां से भी आप जीत सकते हो। अगर यहां जीतना चाहते हो तो कॉल करो।

0: ਨਾਲ ਰਹੇ ਤੇ ਦੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ।
1: Get ready।

बहुत ही लवली ट्रैक अभी आपने किया एंजॉय। 9:29 हो रहे हैं भाई, गले की बैंड बजी पड़ी है आज की सुबह वाले। आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज किए हैं, थैंक यू। आनंद जी वेरी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? आपका शो बहुत ही अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग। गणेश प्रसाद हुजदार काठमांडू से जुड़े हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुजीत भाई ये फोटोन हॉस्पिटल से, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है? बहुत ही बढ़िया हालचाल है जी, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी आपको भी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुर्गेश भाई, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। चमन लाल साहब जुड़े हैं सहारनपुर से, जोन रोजी पलविलीज मेरे साथ जुड़े हैं, हेलो जी गुड मॉर्निंग। अभी जो आपने गाने प्ले किए थे ये सभी नेत्री को पिक्चराइजेशन है, बिल्कुल सही जवाब है जी, आज उनका बर्थडे भी होता है। जय श्री राम। बबलू जी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह। अविनाश सतनागर हैप्पी बर्थडे जी डैश, एंड हुस्न की मलिका अदाओं की शहजादी, आपकी चमक के आगे हर चमक लगे फीकी, आप जादू सदियों तक यूं ही बरकरार रहो, वेरी हैप्पी बर्थडे। एग्जैक्टली आज इन्हीं का बर्थडे होता है। एंड हमारे पास सही जवाब पहुंचा है ममता जी का सूर्यनगर से, एंड कोमल ने राइट आंसर दिया है, हमारे पास पीहू का सही जवाब आया है। तमाम सारे लोगों ने मुझे राइट आंसर्स किए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। आज बॉलीवुड की एक बहुत ही पॉपुलर अभिनेत्री का हम जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, शी इज वेरी वेरी अमेजिंग एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी सेलिब्रिटी हैं, पॉपुलर एक्टर हैं, इनके कुछ गाने मैं प्ले कर रहा हूँ।

0: व्हाट्सएप करके बताओ जरा कौन सी अभिनेत्री की बात कर रहा हूँ आज की सुबह लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत ही अमेजिंग एक्टर हैं ये और इन्हीं से रिलेटेड आज का क्वेश्चन होगा मेरे शो में। थोड़ी देर में एक कड़क सवाल होगा और फिलहाल मैंने कहा था आप मुझे गाना गाकर सुनाओ और डांडिया नाइट के पास जीत कर जाओ। मेरे पास कॉल बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। आई डोंट नो कोई नेटवर्क ग्लिच है कोई इशू है, तो अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक सवाल का जवाब बता सकते हो। अगर आपको मेरे साथ गेम खेलना ही है तो बहुत ही आसान सवाल है, अगर आप इसका जवाब दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ में सवाल जवाब ढेर सारे होते हैं, बहुत मजा आता है, आप लोग पार्टिसिपेट भी करते हो। ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे मैसेज पहुंच चुके हैं आज की सुबह, उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और अभी जो मैं आपसे पूछने वाला हूं ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है? इसका आंसर आप करोगे तो भी आप जीत सकते हो डांडिया नाइट कॉन्सर्ट के पास। हम डेली आपको जिताते हैं, आज भी आप जीतोगे। थोड़ी देर में मैं आपके साथ वो गेम खेलूंगा, उसमें भी आप पार्टिसिपेट करके जीत सकते हो, ठीक है जी? फिलहाल अगर आप अभी भी जीतना चाहते हो तो आपको क्या करना है, बस आनंद को सुनना है ऐसे ही। और अगर आप इन अभिनेत्री का नाम बता दोगे तो भी चलेगा, आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हो 9837896896 पे मैसेज करके, ठीक है जी? अभी लौट कर आता हूँ। आज कौन कौन से डेज मनाए जाते हैं इस पे बात करेंगे हम, बहुत ही स्पेशल डे है आज।
1: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।
2: कौन आया?
0: आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अच्छा, नवरात्रि में कल से माँ के 9 दिन शुरू हो रहे हैं, शरदी नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। मुरादाबाद की एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर की बड़ी मान्यता है, पूरा फलों के साथ उसको डेकोरेट किया जाता है, बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, माता की पूजा अर्चना की जाती है, दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं इस मंदिर की। इस मंदिर की मान्यता बहुत है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलैरिटी है। जैसे कि मैंने आपको सबसे बड़ा क्लू दिया कि इस मंदिर को ना फ्रूट्स के साथ सजाया जाता है। कौन सा मंदिर है वैसे, अगर आपको बताए तो जरा बताओ। करो 9837896896 में इमीडिएटली दो लकी विनर को अभी शॉर्टलिस्ट करूंगा। अभी की अभी लौट कर आ रहा हूँ इस गाने के बाद, कुछ एड ब्रेक, देन वापस आके फिर आपसे मैं बताऊंगा कौन है आज का विनर। बताओ मुझे कौन सा मंदिर है जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत है नवरात्रों में, स्पेशली मुरादाबाद का बहुत ही पॉपुलर मंदिर है। अगर आप मुरादाबादीज हैं तो आप मुझे इसका आंसर करेंगे। फ्रूट्स के साथ डेकोरेशन की जाती है, मान्यता बहुत ज्यादा है हर नवरात्रि में, जो है हर साल नवरात्रि स्पेशली शरदीय नवरात्रि की बात करूं तो बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता है, मां की पूजा अर्चना की जाती है, दूर दूर से श्रद्धालु जो है दर्शन करने पहुंचते हैं, बहुत अच्छा मेला भी लगता है वहां पर। बताओ कौन से मंदिर की बात कर रहा हूँ।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।
4: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशाद जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
5: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
6: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
7: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
8: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: बसंती के सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

क्या बात है यार, एक अच्छा गाना भी आपने सुना। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप किए हैं आज की सुबह। और यार, कल की बारिश के बाद ना सबसे पहला जुकाम मुझे हो गया, ऐसा लग रहा है मतलब एकदम से ना गला पकड़ लिया बॉस। आज तो बोलने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन कोई नहीं, जाके मेरे को सबसे पहले मेडिसिन लेनी है बॉस। तालियां आप लोगों के लिए, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग यार, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए हैं एंड अभी इस घंटे में किनको विनर बनाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, काली धाम लाल बाग की बात कर रहे हैं आप, ये सत्यप्रकाश जी मुझे मैसेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सत्यप्रकाश जी, अगर आप हमारे साथ डांडिया कॉन्सर्ट में चलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन। फिलहाल इस घंटे के विनर मैंने आपको बना दिया है, आपने जीते हैं ये बहुत ही बढ़िया 14 तारीख को होने वाली गरबा, सबसे बेहतरीन गरबा जो है ये पार्टी होने वाली, जिसके अंदर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारा फन एक्साइटमेंट होगा। तो आपको बहुत सारी बधाइयां, आपका नंबर पे जल्दी कॉल आएगा। पहले लकी विनर शॉर्टलिस्ट कर लिए, ताली बजाते हैं इनके लिए और गाना भी चलाएंगे यार। एब्सोल्युटली ये आपके लिए भी हो सकता है। एक और विनर अभी मैं निकाल के जाने वाला हूँ, तो अगर आप जीतना चाहते हैं डांडिया गरबा नाइट के, अभी मैं गोल्ड पासेस देने वाला हूँ, इनको सिल्वर दिया है मैंने, गोल्ड आप जीत सकते हैं। कैसे जीतेंगे उसके लिए आपको बस मेरे साथ ट्यून इन रहना है, मैं आपको बताऊंगा। अभी इंस्टाग्राम पे हम एक रील अपलोड करने वाले हैं हमारे सोशल मीडिया पे, सो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट। इंस्टा आईडी एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से फॉलो करना है आपने, एफएम मुरादाबाद 89.6 के नाम से आप फॉलो करो। वहां आपको बहुत सारी गेम्स मैं खिलाने वाला हूं थोड़ी देर के बाद वहां पर भी। तो अभी जो है फेस्टिवल फुल ऑन, धमाकेदार होंगे आपके, आगे आपको बहुत कुछ जीतने का मौका मिलेगा। आप ऐसे ही ट्यून इन रहो हमारे साथ, सुनते रहो आपके शहर का अपना रेडियो लेडीज एंड जेंटलमैन, जहां दिल से दिल तक वाली बातें होती हैं। एंड मेरे पास और भी लोगों के मैसेज आए, हाय माय नेम इज शिखा, माय नेम इज तरुण, माय नेम इज क्या लिखा है इन्होंने, ये माय नेम इज शिफालिका, ओहो नाइस नेम है शिफालिका। एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, गुड मॉर्निंग भाई कैसे हालचाल है, आप बहुत ही अच्छा बोलते हैं जी, थैंक यू। बट इस तारीफ के बदले मैं आपको वाउचर तो नहीं दे सकता यार, उसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत और मेहनत जो है करनी पड़ेगी यार, अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। वैसे इंस्टाग्राम पे भी आप आकर जीत सकते हैं आज की सुबह, उन्हें आप वहां विनर बन जाए यार, आई डोंट नो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप वहां भी वैसे जीत सकते हैं। सो आ जाओ मेरे इंस्टा हैंडल पर, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूं वहां पर मैं आपको। एंड आप जहां भी जा रहे हैं ऑल द वे बेस्ट, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना फेवरेट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों आपको बता दें, हर रोज आप सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हैं, दूसरों की खुशियों का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक सवाल, क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि आप अंदर से सच में कितने खुश हैं या सिर्फ दिखाने के लिए खुश हैं? आज 10 अक्टूबर है, आज के दिन मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और आज बात हम कर रहे हैं हमारे मन की उन परेशानियों की, जो अपने मन ही मन में हम उससे लड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं, लेकिन हम दुनिया को दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं। तो सच सच बताइए, आपकी जिंदगी में कुछ तो उलझा हुआ है ना, अगर आप अंदर से सच में खुश हैं तो अच्छी बात है, बट अगर आप थोड़े से भी अंदर से स्ट्रेस में हैं, दुखी हैं, तो आप मुझे आके मैसेज करो यार, मेरे से बात करो, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट, कोई भी टेंशन है तो मेरे साथ शेयर कर सकते हो, डोंट फरी यार, किसी को नहीं पता चलेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज अच्छा रखिए, सुबह सुबह उठिए, अपने लिए टाइम निकालिए, मेडिटेट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज कीजिए, रूटीन बनाइए, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करो यार। देखो जिंदगी ना अगर फर्श पे है तो अर्श पे डेफिनेटली आएगी, यहां से वहां पहुंच जाओगे आप। थोड़ा सा अपना ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ को प्लीज थोड़ा सा जो है फ्री कीजिए, उसको स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है आपका सुबह का समय। तो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ा मेडिटेट कीजिए, ओवरथिंकिंग बंद करो यार, ज्यादा सोचने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो इसीलिए फालतू मत सोचो, ज्यादा लोड नहीं लेनी है, एक लाइफ है फुल के एंजॉय करना है, खुल के एंजॉय करना है, ज्यादा टेंशन लेके कहीं जाओगे यार। अच्छे गाने सुनो, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाओ। आज आनंद को सुन रहे हैं आप, यह है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, जहां बातें

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा।
3: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
5: You are listening to the biggest hits. The biggest hits. Non-stop.

कल रात को रामलीला में क्या हुआ ये आपको बताऊंगा, और आज क्या होने वाला है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मुरादाबाद से जुड़ी लोकल बातें तो कर ही सकते हैं यार फटाफट से। 9:48 हो गए, एक और कॉन्टेस्ट लेकर आने वाला हूँ कड़क सवाल के साथ। कम बैक करूंगा, लेडीज एंड जेंटलमैन डोंट गो।

0: चलो जी, अब मैं आपको एक प्लैटिनम पास देने वाला हूँ, ठीक है, इस घंटे, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा।
1: क्वेश्चन
0: कुछ नहीं करना है, एक बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है, एक शॉर्ट स्टोरी बताऊंगा, आपको गेस करना है कौन सी फिल्म है। अगर देंगे आप सही जवाब तो आप जीतेंगे एक्साइटिंग वाउचर, ठीक है, प्लैटिनम वाउचर आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। और अगर आप अपने पासेस बुक करना चाहते हैं यहाँ आने के लिए, तो आप कैसे बुक कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक सवाल पूछ रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है। आज की मूवी बड़ी स्पेशल है, शुरू करते हैं आज की फिल्म। एक माँ है जो दो बेटियों को पालती है, एक बेटी के लिए दिल में थोड़ी सी नफरत की दीवार खड़ी होती है, वहीं दूसरी से बहुत प्यार होता है। वक्त गुजरता है, दोनों बहनें वक्त के साथ बड़ी हो जाती हैं और फिर दोनों एक ही लड़के से प्यार करने लगती हैं। एक तरफ बहन का रिश्ता होता है एक लड़की के दिल में, दूसरी तरफ माँ का प्यार छुपा होता है, और माँ के दिल में एक ऐसा राज होता है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है परिवार की। अभी कौन सी फिल्म है जिसमें एक माँ दो बेटियां हैं, लेकिन दोनों बेटी जब बड़ी होती हैं तो एक ही इंसान से प्यार करने लगती हैं, लेकिन एक माँ जो है भाई वो दोनों बेटी से बहुत प्यार करती है लेकिन दिखा नहीं सकती, बट हाँ, एक बेटी के लिए उसके दिल में थोड़ा सा पुराने दर्द की दीवार खड़ी होती है, बट फिर भी समय के साथ चीजें ठीक हो जाती हैं। लेकिन दिक्कत ये होती है कि एक लड़की दूसरी लड़की, दोनों बहनें और दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं, लेकिन माँ को अपनी पहली वाली बेटी जो उसकी अपनी बेटी होती है वो बहुत प्रिय होती है, दूसरी वाली के लिए थोड़ी सी मन में नफरत भी होती है, वो हर बात में बात पर उस पर शक भी करती है, लेकिन वो लड़की एक्चुअल में ऐसी नहीं होती है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत ही कमाल की फिल्म है। प्लीज टेल अस कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी फिल्म है। एक माँ दो बेटी, दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं वक्त के साथ, एक इंसान से प्यार कर बैठती हैं, लेकिन माँ जो है वो दोनों बेटी से प्यार करती है, लेकिन हाँ, एक बेटी के लिए थोड़ी सी मन में नफरत की दीवार होती है, लेकिन वक्त के साथ वो भी भर जाती है, माँ हमेशा गलत सोचती है, लेकिन ये लड़की अपनी बहन के लिए बहुत ऑनेस्ट

अंदर गांधी मैदान में। अगर इसके टिकट्स आपको खरीदने हैं तो आप कैसे जा सकते हो, कहां से आप ले सकते हो, सारी डिटेल्स आपको पता लगेंगी थोड़ी देर में मेरे शो पे। लेकिन उससे पहले मेरा कड़क सवाल, देकर भी आप जीत सकते हो आज की मॉर्निंग ये अमेजिंग पासेस।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग.
2: यार बड़ी बोरिंग पार्टी है.

चलो भैया अभी कुछ एड ब्रेक आएंगे, 10 बजने को है सुबह के। आप सुन रहे हैं आनंद को, ये है आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक ढेर सारी। और भैया कल रात को जो है रामलीला की मैं बात करूं तो अपने रामलीला ग्राउंड में बहुत ही भव्य रामलीला चल रही है। 5 अक्टूबर से शुरुआत हो गई और आज फाइनली जो है राम की बारात होने वाली है और बहुत ही खूबसूरत जगराता भी होने वाला है। तो आप डेफिनेटली आइए, आप जहां जहां भी मुझे सुन रहे हैं एक बार जरूर आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही अच्छी रामलीला है, बहुत ही अच्छी तैयारियां हैं और बहुत कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है। कल रात को सीता स्वयंवर दिखाया गया बहुत ही खूबसूरत तरीके से, उसके लिए आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो, सारी रील्स मैं अपलोड कर रहा हूँ बैक टू बैक। आपको जाना है मेरे इंस्टा हैंडल पर, रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूँ, वहां जाके आप देख सकते हो। हमारी ऑफिशियल आईडी भी फॉलो करो, वहां पर भी आपके लिए अमेजिंग कॉन्टेस्ट चल रहे हैं पाजी। और आज भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है रामलीला। तो अब तो डेफिनेटली कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में रामलीला देखना, रामलीला को जानना, उसके बारे में पढ़ना, मतलब जितना आप इन चीजों में आओगे ना आपको उतना आनंद आएगा, आपको आनंद की अनुभूति मिलेगी। सच्ची बात, भाई मैं लड़काओं कैसी बात कर रहे हो वरुण भाई, वो तो अच्छी बात है, ये नहीं होगा। ओहो क्या बात है, हाय हाय, एक बार और। एक फिल्म की बात कर रहा हूँ आज जो है, इसी फिल्म में एक बहुत ही प्यारी सी माता का रोल करने वाली लेडी का बर्थडे होता है एंड उसका जो है पिक्चर का मैंने क्लाइमेक्स आपको थोड़ा थोड़ा शेयर किया। मूवी बहुत अच्छी है, एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी शेयर कर रहा हूँ आज की सुबह, 10 बज चुके हैं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, मूवी बहुत ही अच्छी है। दिस मूवी इज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग एंड यू कैन वॉच गो इट ऑन यूट्यूब, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अमेजिंग व्यूज है, मूवी अच्छी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है इस मूवी की। एक लेडी होती है जिसकी 2 बेटियां होती हैं, एक बेटी से मोहब्बत होती है, दूसरी बेटी से मोहब्बत तो होती है लेकिन दिल में एक दर की दीवार खड़ी होती है। लेकिन आगे आगे समय के साथ दोनों लड़कियां बड़ी हो जाती हैं, लेकिन फिर किस्मत एक अलग मोड़ पर लाके खड़ा करती है। दोनों बहनों को एक इंसान से प्यार हो जाता है, लेकिन दूसरी बहन को पहली बहन के बारे में पता होता है, लेकिन हमेशा मॉम उनकी अपनी बेटी के अलावा दूसरी बेटी को जो उनकी नहीं होती उसको बहुत गलत समझती है। लेकिन वो लड़की बहुत ही जेन्युइन होती है, अपनी बहन के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती है। मूवी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं। प्लीज टेल अस कौन सी मूवी की बात कर रहा है आज की सुबह आरजे आनंद। अगर आपको पता है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9837896896। बहुत पॉपुलर था इस मूवी का ये गाना, कौन सा म्यूजिक है, कौन सा गाना है शायद आप आइडेंटिफाई कर लो, कौन सी पिक्चर का गाना है ये तो आप डेफिनेटली बता दोगे। अब जल्दी से व्हाट्सएप करो, पता चल गया जी, मैसेज करो कौन सी पिक्चर की बात कर रहा हूँ आज की सुबह 9837896896। दिस इज माय नंबर, आप सुन रहे हैं आनंद को। आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। आनंद को ये आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। थोड़ी देर में लौट कर आता हूँ एक लकी कॉलर के साथ, सो आप कहीं मत जाओ, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाओ, ऐसे ही ट्यून इन रहो मेरे साथ। कहीं ट्रैफिक है तो मुझे बता सकते हो।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276111।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।

0: शरारा।
1: बहुत ही प्यारा कुमाऊनी लोग, अभी बढ़िया उत्तराखंडी गाना भी आपने सुना। आई रियली रियली लव दिस सॉन्ग। मतलब उत्तराखंडी डांस की ना बात ही अलग होती है यार। आप जाओ, इतना अच्छा डांस होता है। और ये राकेश जोशी जो इसमें एक्टर हैं, जिन्होंने इसमें मेन किया है, मतलब डांस परफॉर्मेंस, यार ही इज़ माई वन ऑफ माई ओल्ड टाइम फेवरेट। और मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे, कई बार बात भी होती है। और इतनी पॉपुलैरिटी मिली है राकेश भाई को इस गाने से, तो मतलब छा गए यार, तुसी पाजी छा गए हो यार। मतलब मज़ा आ जाता है, मैं जब भी इनका गाना प्ले करता हूँ उसको भेज देता हूँ, भाई देख मैंने तेरा गाना बजाया, खुश हो जाता है यार बंदा। हाय, गुड मॉर्निंग, 10:09 हो रहे हैं, सुन रहे हैं आनंद को, बंदे का नाम आनंद है यार। और अभी यहाँ पर आपकी मॉर्निंग को थोड़ा आनंदित बनाने के लिए आपसे एक सवाल पूछ रहा था, बिकॉज मेरे पास ना बहुत अच्छे कॉन्सर्ट के पासेस हैं और बड़े महंगे पासेस हैं यार। ये प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, तीन कैटेगरी मेरे पास है। और मैं आपको सच बताऊं, ये मैं आपको देने वाला था आज की सुबह, लेकिन आप लोग मुझे लग रहा है जीतना नहीं चाह रहे हो यार। अगर आप जीतना चाहते ना तो आप मुझसे जीत लेते अब तक। वैसे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं यार आज की सुबह, यार गला साथ नहीं दे रहा आज। ये फिल्म थी जिसमें वो मैडम ने मम्मी का रोल किया था, मैं आपसे वही पूछ रहा था कि कौन से फिल्म है। बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, मतलब आज की सुबह बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स के जवाब आए हैं मेरे पास यार। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग एवरीबडी, थैंक यू सो मच। आप हमारे इंस्टा हैंडल से भी जीत सकते हैं, अगर यहाँ आप नहीं जीत पाए तो कोई बात नहीं जी, आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करके वहाँ पर भी हमारे साथ जो है जीत सकते हो एक्साइटिंग वाउचर। 13 और 14 को हमारे साथ डांडिया खेल सकते हो, गरबा कर सकते हो, एंड बहुत सारा फन। भजन जामिंग फर्स्ट टाइम मुरादाबाद में लेकर आ रहे हैं जी। कौन लेकर आ रहे हैं ये तो आपको मेरे इंस्टा से पता लगेगा। कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए तो प्लीज यू हैव टू गो एंड चेक आउट ऑल द डिटेल्स, सब कुछ आपको मिलेगा वहां पर, तो डेफिनेटली एक बार आप विजिट करो यार। और अभी के लिए मैं आपको कुछ इमीडिएटली चीज़ें बता देता हूँ फटाफट से, फिर आप बोलोगे यार आनंद आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, है ना। तो आपको तो दुनिया की सबसे अमीर बिल्ली की बात हुई है, जिसकी कीमत पता है कितनी है? मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी महंगी ये बिल्ली है, इतनी महंगी ये कैट है, और ये इतने करोड़ों की मालकिन बन गई है। 839, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि यार ऐसे भी कोई इंसान की जगह पर, मतलब कोई इस तरह की चीज़ भी जगह ले सकती है। अमीरी लिस्ट में नाम आया इनका। एक नाला केन सोशल मीडिया पेज है, दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी जो एक कैट है, उसकी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम अकाउंट की शुरुआत उसकी 2012 में हुई थी, और जहां पर उसने कुछ तस्वीरों को शेयर किया था, कुछ वीडियोस को शेयर किया था। उसकी लोकप्रियता बढ़ने के बाद 42 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हो गए थे, एंड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आया था भाई। एंड नाला का नाम सबसे ज़्यादा फॉलोवर में आता है, और इनकी जो कैट है उसकी कीमत भी बहुत ही अलग है भाई। मतलब शब्दों में बताना बड़ा मुश्किल है कि यार बताइए कैट भी इतनी पॉपुलर हो सकती है। बाबा मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था यार। आपको बता दें रणवीर सिंह स्टार फिल्म धुरंधर द रिवर्स बॉस, धुरंधर की बात हो रही है बॉक्स ऑफिस पर। आपको बताया धमाल मचाने वाली मूवी है, एंड अभी ग्रामी अवार्ड्स दौड़ में शामिल हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है। इसका म्यूजिक, इसकी एल्बम को लेकर काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, एंड काफ़ी पॉपुलर और बढ़िया मूवी है, काफ़ी लोगों को पसंद भी आई है यार ये। तो आपकी अगर फेवरेट है बहुत अच्छी बात है यार। कैश बैक और ऑफर के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपका अकाउंट खाली हो जाए। फेस्टिव सीजन शुरू हो गया, ऐसे में ऑनलाइन शॉपिंग जो है काफ़ी धड़ल्ले से चल रही है, और लोग जो है उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो बस आपने ध्यान रखना है। यूपीआई पेमेंट जो है भाई साहब बढ़ने के साथ साथ जो है साइबर फ्रॉड का खतरा भी बढ़ जाता है, ऐसे में फर्जी डिस्काउंट और लिंक से प्लीज़ थोड़ा सा दूर रहें। नकली कस्टमर केयर कॉल सेंटर से भी दूर रहें, क्योंकि कुछ लोग फ्रॉड कर सकते हैं आपके साथ, नए नए फंडे और ये लोग जो है तकनीकी अपना रहे हैं ताकि लोगों के साथ इस फेस्टिव सीजन में फ्रॉडगर्दी की जा सके, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और वहीं मैं बात करूं अहमदाबाद की एक खबर की, तो जो मैं पढ़ रहा था तो मेरे भी तोते उड़ गए थे यार। अहमदाबाद में जेंजी गरबा ग्लो और एनर्जी के लिए आईवी ड्रॉप ले रहे हैं बॉस, और जिसका खर्च है 15,000 रुपए। कैन यू इमेजिन, एक गरबा नाइट के लोग क्या क्या कर रहे हैं। जेंजी में एक नया क्रेज आ गया बॉस। और आपको बता दें फोन से नहीं, ना ही QR कोड से, अब चश्मे से होगी UPI पेमेंट। क्या क्या क्या ऐसा हो सकता है? हाँ जी, चलिए इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। देखिए भाई साहब, आप UPI पेमेंट के लिए बार बार फोन निकालने की जरूरत नहीं है बाजी, और ये अब कम होगी, बिकॉज एक नया गूगल्स मार्केट में आने वाला है। 2026 में इस चश्मे की शुरुआत हुई है। ये AI स्मार्ट चश्मा है, जिसके अंदर कुछ फीचर्स एंड कैमराज और कुछ एडवांस फीचर्स अवेलेबल होंगे, जिसमें आप QR कोड को स्कैन करने के लिए अपने मोबाइल नहीं, पेमेंट करने की सुविधा जो इस गूगल्स के अंदर यानी चश्मे में दी गई है। एंड ये चश्मे में कॉलिंग, म्यूजिक, AI असिस्टेंस, और साथ ही साथ 12 भारतीय भाषाओं में ये लाइव ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी आपको देगा। एंड इसकी कीमत अभी भाई साहब बहुत महंगी बताई जा रही है, वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन अब सोचिए आप, मतलब अब आपको फोन QR कोड स्कैन करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्या करना है अपने चश्मे से ही आप पेमेंट कर दोगे। माय गॉड, क्या क्या टेक्नोलॉजी, कितना सुपर फास्ट हो गया अरे भैया, हमको समझ नहीं आ रहा। चलो कोई और एंकर आने वाली है, आई मीन रीना आने वाली है स्टूडियो में, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन एक विनर का नाम अनाउंस करके जाने वाला हूँ।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: चलो भाई अभी फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच, इतने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेज करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज किए हैं आज की सुबह एंड तमाम सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, और बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को आइडेंटिफाई करना, लेकिन कोई बात नहीं जी, फिलहाल हम यहाँ पर एक विनर को जो है अभी मैं सिल्वर पास देकर जाने वाला हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। विनर को एक ही होता है जी, है ना। तो यहाँ पर मेरे पास मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग, हाय, कैसे हालचाल है। मनोज कुमार गौतम सूर्यनगर लाइन पार से मुझे मैसेज कर रहे हैं और इन्होंने मेरे को सही जवाब दिया है। मनोज भाई थैंक यू सो मच, और हो सकता है मैं आप ही को पास दे दूँ, है ना। तो अब आपका नाम आ ही गया, तो आपको बहुत बहुत बधाई है, आपको जरूर हम कॉल करेंगे थोड़ी देर में। अभी एक और नाम मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ फटाफट से, देखो बहुत सारे मैसेज मेरे पास पहुँच रहे हैं, थैंक यू वेरी वेरी मच। और देखो कोमल बहुत तेजी से पार्टिसिपेट करती है, कोमल कंग्रेचुलेशन, एक आपको भी मैं देता हूँ सिल्वर पास। तो तीन विनर हमने यहाँ पर निकाल दिए हैं पाजी। चलो जी बहुत बहुत बधाइयां, और बाकी आप आगे भी शो सुनो, उसमें भी कुछ ना कुछ हम आपके लिए कराते रहेंगे। आप ऐसे ट्यून इन रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही धूम मचाते रहिए हमारे साथ। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद, आपके शहर का अपना रेडियो। चलिए गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और ऐसे ही सुनते रहिए आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। बहुत सारी बधाइयां जी, कल फिर से मुलाकात होगी। निकुंज भाई थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, मेरे भाई आपने भी आज की सुबह पार्टिसिपेट किया, थैंक यू। अलका वर्मा जी बुद्धि बिहार से आप जुड़े, आपका भी दिल से थैंक यू, आपने सही जवाब दिया। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इर्शाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर सैयद शारिक अली जी जुड़े थे, एंड सोनू मोनू रीना वंशिका रुचि इशिका गुप्ता ये हमारे साथ लाइन पर मंझोला से जुड़े, थैंक यू सो मच। हेलो हाय गुड मॉर्निंग आनंद, हाउ यू, दिल है तुम्हारा, दिस इज द राइट आंसर, ये हमारे साथ डीके अरोड़ा जी जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। चंदन नगर से गुड मॉर्निंग जी, ये ग्राम बीजना से रिजवान खान साहब, विक्की सागर जी ने सही जवाब दिया है, और हमारे साथ रजा हुसैन साहब जुड़े थे आज की मॉर्निंग सही जवाब के साथ। हेलो हाय निखत फातिमा, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, एंड रिहाना भी सही जवाब पहुंचा रही थी, गुड मॉर्निंग सर कैसे हाल चाल है। सत्य प्रकाश जी कंग्रेचुलेशन, आप तो ऑलरेडी जीत चुके हैं। अफरोज फातिमा मेरे साथ जुड़ी है, एंड लाल बाग काली माता का मंदिर फूलों से सजाया जाता है, बिल्कुल। दुर्गेश भाई थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अविनाश भाई थैंक यू सो मच। आज बॉलीवुड की अभिनेत्री रेखा का बर्थडे होता है, और राइट आंसर है दिल है तुम्हारा, उसी फिल्म की बात कर रहा था मैं, स्टारिंग बाय महिमा चौधरी, प्रीति जंटा एंड रेखा, अर्जुन रामपाल एंड जिमी शेरगिल, ये सारे लोग थे, बहुत ही अच्छी मूवी थी। शुमाइला हमारे साथ जुड़ चुकी है आज की सुबह, हाय गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड साथ में मैसेज पहुंचा, हाय माय नेम इज सपना, गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे पास और भी मैसेज पहुंच रहे हैं ढेर सारे, जिन जिन लोगों ने मैसेज किए उनके लिए मैं दिल से थैंक यू करता हूं। दर्पण भैया थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, एंड थैंक यू सो मच, हाय गुड मॉर्निंग। ममता झा सूर्यनगर से मेरे साथ जुड़ रही हैं आज की सुबह सही जवाब के साथ, थैंक यू ममता जी, थैंक यू सो मच। ऑल द पार्टिसिपेंट्स दिल से थैंक यू, आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ सोशल मीडिया पर जरूर जुड़िए। और आप सभी को एडवांस में जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि, कल तो मेरी आपकी मुलाकात होगी नहीं, और कल माँ का पहला नवरात्रा है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आज ही एडवांस में, बहुत बहुत बधाइयां माता रानी आपकी, ढेर सारी मनोकामनाएं पूरी करें, आप जो भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिले। मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रों की ढेरों शुभकामनाएं इन एडवांस, शरदी नवरात्रि कल से आरंभ हो रहे हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुस्कान भी मेरे साथ जुड़ी थी टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से, गुड मॉर्निंग, हाय कैसे हालचाल है। हावड़ा जंक्शन कोलकाता से नेहा शर्मा जुड़ रही थी, एंड गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं ये भी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, वीकेंड आपका अच्छा जाए, हैव अ फैबुलस डे, एंजॉय करते रहिए अच्छे गाने, बाय।

0: उसको डांस नहीं करना, वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: You are listening to the biggest hits. The biggest hits, non-stop.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइट, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
3: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट, मुरादाबाद।
6: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
7: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
6: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
7: अरे नहीं,
5: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
7: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
6: अच्छा?
7: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

हेलो जी, गुड वाली मॉर्निंग है। आर्जरीना के साथ मॉर्निंग मसाला शो में आप कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 10:29 हो चुके हैं और यहाँ पर अब हम करेंगे ढेर सारी बातें। और आपसे यही कहना चाहेंगे कि देखिए, मॉर्निंग मसाला शो का ना जो शुरुआत हो गई है, बस आपने क्या करना है, हमें मैसेज करना है जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं। और इसी के शो के माध्यम से आपको बहुत सारे अपडेट्स भी मिलने वाले हैं, देश दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। साथ ही साथ आज का स्पेशल डे क्या होने वाला है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल आज अमावस्या है और आज भैया आज की जो तैयारी है ना पितरों के लिए, मतलब एक अलग ही लेवल का होता है, क्योंकि पितरों को नाराज नहीं करना होता है। तो आपके घर में अच्छे से तैयारियां चल रही होगी और तैयारियां करते रहिए। और जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं उसके लिए हमें मैसेज करते रहिए। नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करके जो भी गाना सुनना चाहते हैं आप डेफिनेटली सुन सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ना एक गाना सुनवाऊंगी और उसके बाद जितने भी आप सभी के मैसेज है ना वो हम शामिल करेंगे। तो एक गाना बहुत फैंटास्टिक है, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के साथ। फिलहाल आप मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896 पर मैसेज करना है आपने।

0: यानी कि आप हमारे प्यार के खिलाफ नहीं है?
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705070552।
4: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
5: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
6: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है अरिजीत सिंह की आवाज में। और समय की बात करूं तो 10:53 हो चुके हैं और आज की तारीख 10 अक्टूबर, और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है भैया कि 1 नवंबर से बिजली बिल है वो बढ़ने वाला है। लेकिन यूपी की बात की जाए तो आम घरों में बिजली बिल की जो दरें हैं वो नहीं बढ़ने वाली है। हालांकि ये सिर्फ कंपनियों के लिए बताया जा रहा है कि 30 नवंबर तक नया टैरिफ प्रस्तावना देना है, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो अगर आप इधर उधर से कोई न्यूज देख लेते हैं तो बिल्कुल घबराइए नहीं, क्योंकि पहले ही एक चीज सोचकर ना और दिमाग में टेंशन हो गई बहुतों की कि अब तक हमने अगर चलान वाला जो पेमेंट था वो नहीं हमने भरा है तो वो बिजली बिल के साथ कनेक्ट देखिए होना है, बट बिजली

हाँ जी, तो मैसेज की बात की जाए तो रानी नांगल से रिहाना कनेक्ट होती है, गुड मॉर्निंग पहुंचाती है। वेरी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे हैं। और ये सुहाग मूवी से गाना सुनना चाहती है, आज इम्तिहान है। चलिए जी, लता मंगेशकर की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत हम आपको गाना ये सुनाए।

और अगले मैसेज की बात की जाए तो ये मैसेज आता है हमारे पास खुशी दी। अरे खुशी दी नहीं है आज सर, सैटरडे है और सैटरडे को आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट होती हैं और इनके कहने की सभी खैरियत से हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया है, सभी एकदम मस्त हैं और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं मुरादाबाद से रिहान अली जी और ये गाना सुनना चाहते हैं। बड़ा ही खूबसूरत इन्होंने गाने की फरमाइश की है, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया। आशा भोसले जी की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। सो डेफिनेटली ये गाना हम पूरी कोशिश करेंगे सर कि आपको ये गाना सुनवाया जाए। आप बस बिंदास होकर कनेक्ट रहिए और आप सभी जो भी गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल बिना सोचे आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी गाना सुनना चाहते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276111।

0: ओए हाय, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। आरजेरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:06 हो चुके हैं। और आशा भोसले जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना, साथ ही मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मतलब मोहम्मद रफ़ी जी और आशा भोसले जी ने भैया बहुत ओल्ड इज़ गोल्ड वाले गाने हम सभी के लिए गाने इतने दिए नए इन्होंने कि भाई इनकी आवाज़ें सुनकर ना आप, मतलब आपको पता चल जाएगा कि लता मंगेशकर, आशा भोसले जी की, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में ये जो गाना इन्होंने सभी के लिए इतने गाने गाए हैं। और ये भले ही हमारे बीच आशा जी ना रहे, लेकिन इनकी जो आवाज़ है वो हमेशा हमारे दिलों तक पहुंचती रहेंगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं, देखिए बहुत से बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी करते हैं और उनको रहता है कि भैया कोई वैकेंसी निकले तो हमें पता चल जाए, बहुतों को नहीं पता चलता है। तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप रेलवे के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर से ही वैकेंसी निकल चुकी है और ये वैकेंसी 6 नवम्बर तक रहने वाली है। अगर आप रेलवे में यानी कि NTPC का फॉर्म भरना चाहते हैं, जो कि TT का काम होता है, अगर आपके अंदर और भी स्किल्स है तो आप पूरे डिटेल चेकआउट कर सकते हैं और आप उसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 8 अक्टूबर से और ये लास्ट तारीख यानी कि इसकी रहेगी 6 नवंबर। तो इस बीच में आप जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं बिल्कुल भर सकते हैं। आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12th पास है तब भी आप भर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि ग्रेजुएशन वाला ही हो, 12th पास आउट वाला भी इस फॉर्म को भर सकता है। लेकिन एज लिमिटेड की अगर मैं बात करूँ तो 33 साल से जो नीचे वाले हैं वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि जो 34 साल के हो गए वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो एज लिमिट भी बहुत मायने रखता है। जो 34 के हो गए तो आप बिल्कुल नाराज मत होइए, आपके लिए भी कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर निकलेगी। फिलहाल जो भी 33 तक के हैं उनके लिए है ये फॉर्म, यानी कि जो 22, 23, 24, 25, 33 तक जिनकी एज है वो अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी में, यानी कि RRB NTPC की वैकेंसी निकल चुकी है। तो आप बिल्कुल चेकआउट करिए और अप्लाई करिए और इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि जैन फेब में शायद एग्जाम भी हो सकते हैं। बाकी अभी आप अप्लाई कर सकते हैं अपना फॉर्म। अगले मैसेज की बात करूं तो मोहम्मद ही हमारे साथ गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं ईदगाह मुरादाबाद से। सैफी अहमद अंसारी जी कनेक्ट होते हैं और कहते हैं कि शानदार शो है, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ सर। मूवी से ये गाना सुनना चाहते हैं, कभी दुश्मनी कभी दोस्ती। ओके, और एक ना हमारे पास वॉइस मैसेज आता है जो कि मैं सुनवाती हूँ, उनकी आवाज आप सभी तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करती हूँ मैं। आखिरकार इन्होंने अपनी आवाज में क्या बोला है, क्या नहीं बोला है।
1: हेलो, मैं मुरादाबाद से आकाश बात कर रहा हूँ। क्या आप हमारी पसंद का कोई गाना बजा सकते हैं? अगर हाँ तो एक गाना बजा दीजिए, मुसाफिर जाने वाले, गदर फिल्म का गाना।
0: लग रहा है कि अभी ट्रैफिक में है इसीलिए ये गाना सुनना चाहती है, मुसाफिर आने वाले। तो ये गाना हम आपको जरूर सुनवाएंगे जी। और अगले मैसेज की बात करूँ तो रीना जी

हाँ जी, इनका कहना है कि देखिए मैडम जी, अगर आप लोगों को जानकारी देना चाहती तो वे भी बता दीजिए कि दिल्ली में मेट्रो बंद है इस टाइम, आज बंद कर दिया गया। बिल्कुल जी, आज वहाँ पर थोड़ी सी इन चीज़ों को देखकर कष्ट दिक्कत रहने वाली, क्योंकि मेट्रो बंद है आज के लिए। और मैं इसके बाद इसी के बारे में बताने वाली थी। थैंक यू विक्की जी कि आप भी अपडेटेड रहते हैं, और मैं तो कहती हूँ कि अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप बिल्कुल हमारे पास शेयर करिए, वॉइस मैसेज भेजिए ताकि हम प्ले कर सकें। क्या पता वो मैं नहीं बोल पाऊँ जो आप बोलना चाहे और जो आप अपडेट देना चाहे, तो बिल्कुल आपके लिए कोई मना नहीं है। आप अपना वॉइस या फिर टाइपिंग करके हमें बता सकते हैं। गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये हरियाणवी गाना सुनना चाहते हैं, मेरी पसंद का। ठीक है जी, मेरी पसंद की आपको हरियाणवी गाना मैं सुनवाऊंगी, लेकिन फिलहाल कभी दुश्मनी कभी वाला गाना सुनते हैं और उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ।

0: उदित नारायण जी की आवाज में ये गाना आप एंजॉय कर रहे हैं।
1: मुसाफिर जाने वाले
0: कभी प्रीति उत्तम जी की आवाज में खूबसूरत ये गाना मुसाफिर जाने वाले कभी लौट कर ना आने वाले, वाकई में बहुत ही शानदार गाना है और ये मूवी भी गजब वाली है। और गदर मूवी तो आपने जरूर देखी होगी, पार्ट वन की तो बात की जाए तो भैया बड़ा ही खूबसूरत, और सेकंड की बात की जाए तो वो भी बहुत ही बेमिसाल वाला है। और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है। और देखिए आज दिल्ली में 66 ट्रेनें रद्द कर दी गई है, साथ ही साथ मेट्रो की अगर मैं बात करूं तो 6 बजे तक मेट्रो भी बंद रहने वाले हैं, उसके बाद ही चालू किए जाएंगे। और कांग्रेस जनता पार्टी के चलते ही ऐसा हो रहा है, उसके बाद फिर से कल से वही रूटीन। अगर आप जाना चाहते हैं कहीं तो एक बार चेकआउट जरूर करिए तभी आप घर से बाहर निकले, अदरवाइज आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। चलिए फिलहाल मैसेज की बात की जाए तो मैसेज आता है हमारे पास। रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नवीन नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी रीना जी, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर। कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हैं आप और जानकारियां भी बहुत अच्छी लेकर आती हैं। और ये गाना सुनना चाहते हैं, एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। बिल्कुल जी, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाएंगे। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, हम कितने सही और कितने गलत है यह बात दो ही जानते हैं, यानी कि दो जानते हैं, पहला ईश्वर और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। बिल्कुल जी, सही बात कहा आपने कि हम कितने सही और कितने गलत है ये दो इंसान ही जानता है, एक तो परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। और हैरानी की बात यह है कि दोनों ही हमें नजर नहीं आते। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने, ये दोनों ही हमें नजर नहीं आते। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। मोहम्मद उस्मान जी कनेक्ट होते हैं रामपुर दौराहा से और ये गाना सुनना चाहते हैं, एक जरूरत, एक विलेन मूवी से गाना सुनना चाहते हैं, सो डेफिनेटली ये गाना हम आपको सुनवाएंगे सर। अगले मैसेज की बात करूं तो गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं। रवि सैनी लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, जब से हम तेरे आशिक बन गए। ओके, ये गाना हम आपको डेफिनेटली सुनवाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। आप बस यूं ही बिंदास रही, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, एक हरियाणवी ट्रैक विक्की सागर जी।
2: पतली पतली

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

जी गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में, और समय की बात करूं तो 11:28 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं। और आज भैया बहुत सारी डेज मनाई जाती हैं, साथ ही साथ एक हम इंसानों में पता है क्या होती है, हम शिकायत बहुत जल्दी करते हैं किसी से भी, चाहे कुछ भी हो जाता है ना तो हम उस शिकायत को करने लग जाते हैं। लेकिन फूल और इंसान में क्या डिफरेंस है पता है, फूल को आप तोड़ो वो मुरझा भी जाता है, तब भी किसी से शिकायत नहीं करता है कि तुमने मुझे क्यों तोड़ा और मुझे क्यों फेंक दिया, बल्कि वो मुरझाता भी है टूटता भी है और फिर से कल उसी पॉजिटिव वाइब के साथ वो खिलता भी है और फिर से पूरे वातावरण को शुद्ध बनाता है। तो इसीलिए कभी जिंदगी में अगर मन मोटाव हो ना तो किसी से शिकायत मत करिए, क्योंकि जो होता है वो तो होना ही है और शिकायत नहीं करेंगे ना तो बहुत बेटर रहता है, क्या पता कुछ इससे ज़्यादा होने वाला हो जो थोड़े से में सिमट गया है। तो इसीलिए कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए किसी से भी। ओके जी चलिए फिलहाल हम मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। नफीस हरथले से कनेक्ट होते हैं, गुड मॉर्निंग मैम कैसी हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं आया आया प्यार का जमाना। ओके जी ये वाला गाना हम डेफिनेटली सुनाएंगे। जय श्री राम, गुड मॉर्निंग रीना जी क्या हाल है आपके, बहुत अच्छी हैं जी। दुर्गे सैनी कल्याणपुर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं और गाने की बोल है, ये जो भी गाना फरमाइश की है इन्होंने हम ये गाना जरूर प्ले करेंगे आप सभी के बीच। और अगले मैसेज की बात करूँ तो मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी कनेक्ट होते हैं, सैयद शारिक अली जी, मेराज अंसारी, बाबू अंसारी, गुड मॉर्निंग रीना जी कैसी हैं आप, बहुत अच्छी हैं जी। मोहम्मद रफी की आवाज में गाना सुनना।

अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। तेरी यादों के चादर में ये गाना सुनना चाहते हैं नैना मुरादाबाद से कनेक्ट होती हैं। अगले मैसेज की बात की जाए तो गुड मॉर्निंग सीमा अंसारी जी कनेक्ट होती हैं और अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना सुनना चाहते हैं। बिल्कुल जी, हम आपको गाना सुनवाएंगे। चलिए जी, फिलहाल गाना सुनते हैं एक बहुत ही शानदार वाला, उसके बाद लौट कर आते हैं।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग, गुड वाली मॉर्निंग है जी। आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर जाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। कभी कभी ना अपना वाला फ्लो आ ही जाता है भैया, कितना भी कोशिश करते रहो लेकिन ये जुबान है ना वो मानती नहीं है। समय की बात करूँ तो 11:39 हो चुके हैं और आप सभी के बहुत सारे मैसेज है, उनको शामिल करना बहुत ही जरूरी है। फिलहाल वेदर की बात की जाए तो अभी वेदर यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस मुरादाबाद का टेम्परेचर है और कल जिस तरीके से बारिश आई थी ना भैया, ओहो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन आज अगर टेम्परेचर की बात करूँ तो पूरे दिन ऑलमोस्ट 29 तक जा सकता है, मतलब धूप के साथ साथ बादल भी रहेंगे। लेकिन कल और परसों फिर से वही ताबड़तोड़ वाली गर्मी रहने वाली है। और इसी के साथ आप सभी के मैसेज, बबली अंजान जी, गीता कश्यप जी, लक्ष्मी कश्यप जी, संतोष कश्यप जी, प्यारी वाली गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। और ये गाना सुनना चाहती हैं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी। ओके, कितनी होनी चाहिए बताइए आप जरा मुझे मैसेज करके। अगले मैसेज की बात करूं तो नंबर वन पावरफुल गोल्डन परफॉर्म प्लेटफॉर्म प्लेइंग अमेजिंग सेलेक्शन सॉन्ग, ओके, विद लवली होस्ट आर्जेरीना सिस्टर जी, अजीत कसाना जी, माया देवी, रितिक आदित्य लदावली मुरादाबाद से।

तो कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं, गाना सुनना चाहते हैं ये, मत रो मेरे दिल। ओहो, दिल रो रहा है तो सर एक काम करिए, पहले आप हेल्दी खाना खाइए, हेल्दी खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल को रोना नहीं है, दिल को बच्चा नहीं, शैतान के साथ शरारती खुराफाती बना कर रखिए, क्योंकि जब तक आप खुराफाती बना कर रखेंगे ना, आपको टेंशन नहीं होगी, कहेंगे ठीक है यार जो होएगा देख लिया जाएगा। मतलब जुबान पे ना हमेशा एक चीज सोचा करिए, जो होएगा देख लेंगे, क्योंकि आप आज के दिन को छोड़कर कल के बारे में सोचेंगे ना तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेंशन की वजह से फेस पर झुरिया अलग ही, मतलब जो बीमार ना होना इंसान वो भी बीमार दिखने लग जाता है, इसीलिए टेंशन नहीं लेने का, जो होएगा हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकते आप, इसीलिए बिंदास होकर एंजॉय करिए। चलिए जी, बहुत सारे मैसेज हैं वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खार गाना प्ले करते हैं आप सभी के बीच, आया आया प्यार का जमाना। ये प्यार का जमाना बहुत टाइम से आ गया है, और ये गाना है आशा भोसले जी, मोहम्मद अजीज की आवाज में आप गाना सुनेंगे। अब तो ये है दौर चल चुका भैया, दिल टूट गया तो हम क्या करें, मलहम लगा लीजिए जी।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
2: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
3: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
4: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन, जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्थी आउटफिट फ्री।
3: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
5: ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

जिगर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बड़ा ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है आसा जी की आवाज़ में। और वाकई में सही कहते हैं, ओल्ड इज़ गोल्ड। मतलब पुराने गाने कितने प्यारे होते हैं ना, जितनी बार आप सुनो आपका मन नहीं भरेगा। बस उन इन गानों को सुनकर ना आपको एक प्यारी सी नींद आ सकती है, इन प्यारी सी झपकी आप ले सकते हैं। और समय की बात की जाए तो वेरी गुड मॉर्निंग जी, 11:51 हो चुके हैं और अभी आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और फिर हम लेने वाले हैं यहाँ से जाने की इजाजत। और देखिए नाना पाटेकर जी के बारे में ना मुझे एक और बात पता चली है। देखो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं ना, हम जो मूवी देखते हैं हमें तो यही लगता है ना कि बड़ी आसानी से ये मूवी शूट हो जाता होगा, लेकिन हर एक मूवी के पीछे, हर शूट के पीछे, हर एक एक्शन के पीछे, हर एक चीज के पीछे ना बहुत बड़ी मेहनत होती है। और ये कहा जा रहा है नाना पाटेकर जी के बारे में, क्योंकि अभी ये चीज़ें कुछ चीज़ें होती हैं जो रिवील नहीं होती हैं, लेकिन जब वो हमारे बीच नहीं रहते हैं तो वो चीज़ें धीरे धीरे रिवील होती रहती हैं। तो नाना पाटेकर जी ने मतलब 12 घंटे बर्फ में वो शूट करते थे। जब भी कोई मूवी शूट होता था पहाड़ों वाले इलाके में तो 12 12 घंटे शूट करते थे। सोचिए हम आम ठंड में भी कहते हैं हाय तुबा कितनी ठंड हो गई है, बाहर नहीं निकलते, कंबल से आलस कर जाते हैं। और एक एक्टर की जिंदगी ना बड़ी टफ होती है, क्योंकि हम हर किसी, देखिए कोई भी लाइफ हो, किसी भी कोई फील्ड में हो, हर किसी की लाइफ, हर किसी की जिंदगी बड़ी टफ होती है। कहने के लिए बात होती है कि दो शब्द हमने कह दिए कि अरे यार तुम्हारी जिंदगी तो बड़ी आसान है, लेकिन एक्चुअल में उसकी मेहनत की बात करिए तब आपको शायद आप कहेंगे कि नहीं नहीं यार, हर जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, बस उसका जीने का तरीका अलग होता है। तो इसीलिए कभी ये कहने से पहले एक बार उसकी मेहनत की तरफ जरूर देखिए। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं और फिर लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत। हम मिलेंगे दोपहर 3 बजे हेलो फरमाइश शो में। ये हमारे पास मैसेज आता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन रोजिस पलवली जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसकी। ओके अगले मैसेज की बात की जाए तो गुड मॉर्निंग रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी, आशा है कि आप बिल्कुल ठीक होंगी। हाँ जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप भी ठीक होंगे। और इनका कहना है कि जैसे मैंने रेडियो स्टार्ट किया तो आपकी आवाज़ आई और आपकी आवाज़, प्यारी प्यारी बातें और गाने सुनकर ना सच बताइए मज़ा ही आ गया। बस रीना जी, अरे सर रीना जी नहीं है, तेरी की, आप सभी मेरा नाम ना चेंज कर देते हैं। इन्होंने रीना लिख दिया, आपने रीना लिखना था। कोई बात नहीं जी, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं। और नाम का क्या है जी, नाम तो आप 70 रख दो, लेकिन मेरा रियल नेम रीना ही है जी। और इनका कहने की एक फरमाइश है जो पूरी कोशिश करिएगा प्ले करने के लिए, अगर टाइम हो रहे तो। बिल्कुल जी, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके गाने प्ले करने के लिए। गुलाम जिलानी कुंदर की पासा से कनेक्ट होते हैं, मेरी जिंदगी है तू गाना सुनना चाहते हैं, मेरी जिंदगी है तू, ये वाला गाना हम पूरी कोशिश करेंगे सर प्ले करने के लिए, बेफिक्र रहिए। और इसी के साथ हम क्या कहेंगे, जाने की इजाज़त, लेकिन जाने की इजाज़त तो लेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और मैसेज है भैया।

दिमाग पर प्रेशर आएगा, कुछ चीजें अलग ही हो पाती जो आप सोच नहीं पाते। इसीलिए हमेशा खुश रहने का, जो होएगा देखा जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला गाना, बाय, टेक केयर, हम मिलेंगे दोपहर 3 बजे।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
3: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
2: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहां पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
3: अरे नहीं,
4: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
3: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
2: अच्छा?
4: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे। कार्यक्रम है खेती किसानी।
1: खेती किसानी कार्यक्रम का प्रसारण पिछले कई हफ्तों से आप लोग सुन रहे हैं हमारे कम्युनिटी रेडियो पर, और इसमें हम आपको अलग अलग तरह की जानकारियां दे रहे हैं। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर ए के सिंह, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं चंबल फर्टिलाइजर्स के, और आज ये हमको किस विषय में जानकारी देने वाले हैं, आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे ही जानते हैं कि आज किस विषय की जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिल रही है।
2: स्वागत के लिए आपका बहुत बहुत आभार संज्ञा जी। और आज का जो हमारा विषय है वो है संतुलित फसल पोषण, उसकी क्यों आवश्यकता है और उसके क्या लाभ है खेती, और उसके बारे में चर्चा करेंगे।
1: जी हाँ, इस विषय में तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि जो भारत सरकार का उर्वरक मंत्रालय है उसके संचालित PMKSK एक जो केंद्रों के बारे में योजना है, इसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहिए।
2: भारत सरकार और भारत सरकार के अंतर्गत ही जो उर्वरक का जो मंत्रालय है वो कार्य करता है। उर्वरक मंत्रालय हम ऐसे समझें कि जितने भी खेती में उर्वरक जो उपयोग में आते हैं उनकी जो दुकानें हैं उनसे संबंधित जो भी सारी क्रिया है, क्रियाएं से अर्थ ये है कि वहां पर खाद की पूरी जानकारी वहां की रखना, उनकी आवश्यकता क्या है, उनकी मांग क्या है और कौन से सीजन में कौन सा उर्वरक उनको चाहिए, ये सारा काम जो उर्वरक मंत्रालय का है। अगर आपको ऐसे समझे PMKSK तो आपको लगेगा शॉर्ट फॉर्म में ये समझ में थोड़ा उतना ना आए, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताऊं कि जितनी भी खाद की दुकानें हैं जहां पर उर्वरक उपलब्ध होता है, उर्वरक मतलब हर तरह के खाद जिनमें कि यूरिया है, DAP है, MOP है, NPK है और भी अलग तरह के न्यूट्रिएंट हैं जो उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा खेती से संबंधित जो और भी आधान है जिनमें कि आपके खरपतवार नाशी हैं, कीटनाशी हैं, फफूंद नाशी हैं और अन्य तरह के भी पोषक तत्व हैं जो उपलब्ध होते हैं, वो खाद की दुकानें कही जाती हैं। अब ये जो खाद की दुकानें हैं ये ऐसे ही नहीं खुल जाती, इसके लिए राज्य सरकार जो अपना एक लाइसेंस इश्यू करती है और उस लाइसेंस के आधार पर फिर उनको ये अनुमति होती है कि वो खाद उनके यहाँ सप्लाई होता है, वो उसका भंडारण करेंगे और वो उसका विक्रय करेंगे, वो एक तरह से ऑथराइज दुकानें होती हैं। ऐसा था पीछे वाले समय में कि इनमें जो लोग खाद के काम में थे या इच्छुक थे तो उन्होंने लाइसेंस लिए और वो इसका काम करने लगे, लेकिन लंबे समय से भारत सरकार और राज्य सरकार ने एक जो निर्णय लिया कि जितने भी उर्वरक की दुकानें हैं या खेती के आदान की विक्रय के जो दुकानें हैं वहां पर हम ऐसे लोगों को रखें या ऐसे लोगों को ही लाइसेंस दें जो कि खेतीबाड़ी के बारे में सलाह दे सकते हैं या उनको खेती के बारे में जानकारी है। मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर कोई भी खेती का आदान इस्तेमाल होना है तो वो कैसे इस्तेमाल होना है, कितनी मात्रा में इस्तेमाल होना है, कौन से समय में इस्तेमाल होना है, अगर जो किसान को वह जानकारी चाहिए तो वो उसको सही सलाह दे सके। तो एक तरह से ये मान के चले कि ये मतलब विक्रय केंद्र है और साथ के साथ सलाह केंद्र भी है। फिर भारत सरकार ने इसके ऊपर और विचार किया और उन्होंने कहा कि हम इसको एक अलग पहचान देते हैं जो PMKSK है, जो मतलब जो प्रधानमंत्री जो किसान सेवा केंद्र, ठीक है जी। तो उसका अर्थ अब ये है कि यहाँ पर जो जो भी खेती के आदान आपको उपलब्ध हो रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी किसानों को देना अत्यंत आवश्यक है, और अगर उनकी कोई खेती बाड़ी से संबंधित समस्या भी है तो उसके समाधान के लिए भी उनकी ओर से प्रयास किया जाएगा। और प्रयास करने में ये शामिल है कि वहां पर कोई अगर वैज्ञानिक संस्था है, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है और एग्रीकल्चर के जो और अधिकारी हैं उनको भी वो उसमें शामिल करें, उनसे सलाह लें और फिर उसको वो जो किसानों तक पहुंचाएं। तो खाद की विक्रय और खेती के आदान की जो सेल है उसके साथ साथ फार्मर्स को सही सलाह मिले, सही ढंग से वो इस्तेमाल करें। सही ढंग से इस्तेमाल ये है कि हम कभी भी कोई चीज जब लेके आते हैं

0: धान की फसल में यूरिया का कब इस्तेमाल करना है, डीएपी का कब इस्तेमाल करना है, एनपीके का कब इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में उसका इस्तेमाल करना है एक एकड़ में, तो वो सारी जानकारी होती है। लेकिन अगर हमें जानकारी ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ले आएंगे और उसको ऐसे ही उसको इस्तेमाल कर लेंगे। उसकी मात्रा आपकी तरफ से ज्यादा भी हो सकती है और आपकी मात्रा कम हो सकती है। ज्यादा होगी तो आपका खर्चा हुआ लेकिन लाभ जो आपको होना था उतना ही होगा। तो जो आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया उसका कोई आपको लाभ नहीं मिला। और लाभ की वजह तो मैं ये ऐसा कहूंगा कि उससे जो कहीं ना कहीं नुकसान ही होता है, आर्थिक नुकसान हुआ और पर्यावरण को नुकसान होता है। और अगर आपने कम मात्रा में दिया तो उसका भी आपको लाभ उतना नहीं मिल पाएगा। उसके साथ साथ जो है मतलब कौन से समय पर इसका इस्तेमाल करना है, ये पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। अब आपने कहा कि चलो हमें एक बार यूरिया डालना है तो शुरू में ही सारा डाल दिया, ऐसा नहीं है। हर एक की क्रांतिक अवस्था होती है, उसके हिसाब से। अब जैसे कि हम भी भोजन करते हैं, अगर हमें 24 घंटे में सिर्फ एक बार जो 24 घंटे का इकट्ठा भोजन हम अगर जो कहें कि आप ये खा लीजिए, हो सकता है आप जोर लगा के खा भी लें लेकिन वो आपके लिए सुपाच्य नहीं हो, सुपाच्य नहीं होगा, स्वास्थ्य वर्धक नहीं होगा। तो उसमें समय है अलग अलग, जैसे सुबह आपने थोड़ा सा नाश्ता लिया, फिर दोपहर में लिया, फिर संध्या को आपने कुछ जो खाया, तो वो स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पाचन भी अच्छे से होता है और कम मात्रा में आप उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकते हैं। इसी तरह से खेती में इस्तेमाल होने वाले उर्वरक है, कीटनाशक है या खरपतवार नाशी है या अन्य पोषक तत्व है, उनकी मात्रा, उनका समय और उनके उपयोग का जो ढंग होना चाहिए उसके बारे में एक जो है आपके साइंटिस्ट की ओर से या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ओर से पूरी जानकारी होती है, तालिका होती है, तो वह तालिका है अब पीएम की एसके पर उपलब्ध है। अगर नहीं भी है, आपको लगता है कि वहां पर वो चीजें उपलब्ध नहीं है, तो आप उनसे कहिएगा कि आप ये हमें उपलब्ध कराएं।
1: पीएम के एसके के बारे में तो ये जानकारी आपने हमको बहुत अच्छी तरह बताई, लेकिन अब आप ये बताइए कि उर्वरक के उपयोग के बारे में प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन दिया है
0: जी,
1: वो क्या है और उसका क्या उद्देश्य है?
0: जो भी हमारे उर्वरक हैं उनका सही इस्तेमाल हो वो इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक हैं और इनका अगर हम अधिक मात्रा में अगर हमने इनका उपयोग किया तो वो वेस्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि जो फसल है वो उतना ही लेगी, उससे ज्यादा नहीं लेगी और उसमें खर्चा भी आपका ज्यादा होगा। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी जो खामी वो ये है, इससे हमारे जो खेत के अंदर जो हमारे मित्र जीव हैं या जो खेत के आसपास का पर्यावरण है जिससे कि हमारी खेती होती है, उसको एक नुकसान पहुंचता है। तो ये नुकसान नहीं पहुंचे और हमारे जो खेती करने वाले लोग हैं उनको आर्थिक क्षति भी ना हो, उनका पैसा ज्यादा खर्च न हो, एक संतुलन में हम उर्वरकों का उपयोग करें। कभी कभी होता है, देखी देखा हमको, जैसे उन्होंने इतना खाद डाला है एक एकड़ में तो मैं भी इतना खाद डाल देता हूँ, या उसने ये वाला खाद लिया तो मैं भी ये वाला खाद देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी उर्वरक ले रहे हैं उसमें ये जरूर देखिए कि उसमें पोषक तत्व तो है कौन से और कितने हैं, आपको कौन सा पोषक तत्व तो चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए। जैसे कि हमें प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए अगर हम शाकाहारी है तो हमें जो है मतलब उसके हिसाब से जो चुनना है भोजन के, जैसे दालें हैं, सोयाबीन है, ऐसी चीजें हमें जो मतलब चुननी है। अगर हम थोड़ा सा नॉन वेज खाते हैं तो हम अंडा भी खा सकते हैं और चीजों का भी इस्तेमाल हमारी ओर से हो सकता है। तो ये हमें कोई भी चीज है उसके नाम से नहीं खरीद के उसके अंदर जो जो उसके अंदर पोषक तत्व है और उसका जो लाभ हमें होने वाला है उसको देख के हम खरीदें, और उसकी कितनी मात्रा किस समय पर प्रयोग करनी है यह बहुत जरूरी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये अपने संबोधन में यही कहा है कि उर्वरकों का जो एक अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं उससे हम बचें, क्योंकि ये हमारे राष्ट्र के लिए हानिकारक है। आज जो खेती इस जो है एक तरह से सक्षम है, हमें इतने सालों से हम इसमें उगा रहे हैं, अपना पोषण कर रहे हैं, अगर हम इसी तरह से हमने ध्यान नहीं दिया तो इसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में यही कहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के संबोधन को आप सभी लोगों को अवश्य सुनाएं।
1: जी बिल्कुल,
2: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दें, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी

0: हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है। दो गोली की जरूरत है, चार गोली खा ले तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है। वैसा ही ये धरती मां को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है, इसलिए मैं भी बोरी डाल दू, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती मां हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है। ये हमारी मां है, हमें उस मां को भी बचाना है।
1: प्रधानमंत्री जी के इस संबोधन के बाद चलिए अब हम आज की चर्चा आरंभ करते हैं, जो है संतुलित फसल पोषण के बारे में। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसलों के संतुलित पोषण से तात्पर्य क्या है।
2: जी हाँ बिल्कुल, जैसे अक्सर बात आती है कि यार ये तो खेती बाड़ी है, इसमें संतुलित पोषण ये सब बातें क्या आ गई, खेत की मिट्टी है इसमें कुछ भी डाल दो और हो जाता है अपने आप। अगर एक्स्ट्रा डाला है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा डाला है तो उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये सर्वथा उचित नहीं है। संतुलन से होता है कि हर चीज में संतुलन है, अगर कोई चीज ज्यादा हो जाए तो कोई चीज उसी अनुपात में कम होने लगती है, और कोई चीज अगर जो है मतलब जो कम हो जाए तो फिर उसका उसी तरह से उसका असर दिखता है। अब अगर ऐसा कोई कहे कि भाई पंजाब में जो धान होता है और जो छत्तीसगढ़ में धान होता है उसकी की जो मांग है वो एक ही होगी, ऐसा नहीं। आम तौर पर धान की फसल के हिसाब से देखें तो ठीक है हम कह सकते हैं, लेकिन धान की जो हम छत्तीसगढ़ में उगा रहे हैं उसकी जो उर्वरक की मांग है, जो पोषण की मांग है, वो थोड़ी अलग होगी, क्योंकि यहाँ की जो खेत, यहाँ की जो मतलब मिट्टी और आबोहवा है वो थोड़ी अलग है, और जो हम जो पंजाब में, हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में ले रहे हैं वहां पे वो अलग होगी। तो अब हर जगह के हिसाब से हम एक अंदाजा लगा लेते हैं, जैसे कि हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, कृषि विज्ञान केंद्र है, या और भी जो संस्थाएं जो कि सॉइल टेस्टिंग कराती हैं, मिट्टी की जांच कराती हैं, वो उसमें अनुसंधान उन्होंने किया है और वो देखते हैं कि इस जगह पर इस तरह से हम अगर पोषण देंगे, अतिरिक्त पोषण, अतिरिक्त पोषण से उर्वरक के द्वारा दिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे और जैसे कंपोस्ट खाद है, जैविक खाद है, हरी खाद है, इनके द्वारा दिया जाता है, तो हमारी फसल को एक जो आहार चाहिए उसको, जो उसको पोषण चाहिए वो पूरा मिलेगा। ये हर राज्य का, और मैं तो कहता हूँ एक राज्य में हर क्षेत्र का अलग अलग भी हो सकता है, तो उसकी मांग के अनुसार ही अगर हम जो पोषण देते हैं तो उसके उससे हमें काफी लाभ होते हैं। और लाभ से संदर्भ भी है कि हो सकता है कि क्षणिक रूप से हमें कुछ ऐसा न लगे, लेकिन लंबे समय के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो संतुलित पोषण से तात्पर्य यही है कि जितनी मांग, जितनी आवश्यकता, उतना ही हम दे और हम अच्छे से अच्छा उत्पादन ले पाए। ज्यादा देने का अर्थ या असंतुलित अगर हम देंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ज्यादा लाभ उससे मिलेगा, उससे लाभ की संभावनाएं नहीं होती है। लेकिन अगर हम सही मात्रा में, सही समय पर उर्वरक देंगे या पोषण देंगे तो उसे ही हम संतुलित पोषण कहते हैं, तो उसके हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे।
1: तो फसलों में संतुलित पोषण से क्या तात्पर्य है श्रोताओं, ये तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है फसलों में, आइए अब हम ये जानते हैं डॉक्टर सिंह से।
2: जी हाँ, क्यों आवश्यक है, अगर आप देखें तो जैसे आज के समय में सघन खेती हो रही है, सघन खेती से ये अर्थ है कि एक फसल ली उसके बाद दूसरी फसल ले ली, अगर खेत खाली हुआ और मौका है तो हम तीसरी फसल भी लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आज के समय में हमारी कोशिश रहती है कि हम कम क्षेत्र से ज्यादा लाभ ले सके। मांग भी है उत्पादों की, जैसे कि मान के चले कि अभी हमारे यहाँ धान हो रहा है, धान के बाद हमें लगेगा हम गेहूं ले लेंगे, गेहूं अगर टाइम पे कटाई होगी तो उसके बाद मक्का ले लेंगे और मक्का के बाद फिर हम धान ले लेंगे। तो आप देखिए कि साल में हमने तीन फसलें ले ली और तीन फसलों के हिसाब से ले लेंगे चार महीने के हिसाब से, तो लगभग ये है कि 12 महीने पूरे होंगे। अब ऐसी सघन खेती में अगर पोषण का हमने सही ध्यान नहीं रखा तो फसलें हमारी कमजोर होने लगेंगी और हमें उत्पादन सही नहीं मिलेगा। उत्पादन सही मतलब यह है कि हम बीज डालेंगे, जैसे आज की तारीख में अगर हम सघन खेती करें तो हाइब्रिड बीज आते हैं, है ना, बहुत महंगे आते हैं। इसके अलावा जो क्लाइमेट में भी सूखा, बारिश, ये भी इनके भी असर होते हैं, तो अगर हमने संतुलित और सही समय पर पोषण नहीं दिया तो हमें उत्पादन अच्छा नहीं मिलेगा, फसल कमजोर रहेगी, उसमें रोग बीमारी या जो मतलब कीटे हैं उनका भी प्रकोप ज्यादा होगा। जैसे अगर हम देखें कि हमारा जो शरीर है वो उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो उसमें बीमारियां कम लगती है। इम्यूनिटी कहाँ से आती है? इम्यूनिटी आहार, विहार और विचार, तीन चीजों से आ जाती है। अगर हम अपने शरीर का देखें, आहार मतलब हमारा भोजन, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह हम करें, थोड़ा बहुत योगा वगैरह करें, व्यायाम करें, तो संतुलन शरीर का बना रहता है। और थॉट प्रोसेस हम अपनी संतुलित रखें, बहुत ज्यादा उद्वेलना में रह रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक तरह से ठीक रहता है। लेकिन अगर हम इससे हट जाए तो फिर हम हमारी स्थिति ये हो जाती है कि छोटी छोटी जो समस्याएं आती है, या कोई मतलब मौसम का परिवर्तन हुआ, क्या ये कोई और चीज हुई, तो हमें कभी जुकाम हो गया, तो कभी बुखार हो गया, कभी पेट खराब हो गया, ऐसी बहुत सारी। इसी तरह खेत में है, अगर संतुलित पोषण देंगे तो खेत के अंदर पोषक तत्वों की जो एक स्तर होना चाहिए वो सही बना रहता है, फसल अच्छी होती रहती है, उत्पादन ठीक मिलता है, और जो आपने इनपुट लगाया है, जो आदान आपने दिए हैं, उसके हिसाब से जो आउटपुट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको मिलता है।
1: जी,
2: इसलिए आवश्यक है संतुलित पोषण।
1: फसलों में संतुलित पोषण क्यों आवश्यक है, ये जानकारी तो हमको प्राप्त हो गई, लेकिन ये संतुलित पोषण हम कैसे और फसलों तक पहुंचा सकते हैं, किस किस मात्रा में हमको पहुंचाना चाहिए, कैसे ये पता चलेगा कि संतुलित पोषण हम दे पा रहे हैं, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को
2: जी हाँ,
1: जानकारी दीजिए।
2: संतुलित पोषण कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है कि हमें तो भाई जो जानकारी नहीं है कि संतुलित पोषण हम कैसे करें, इस खेत को कितना चाहिए और इस फसल ने जो मतलब कितना लिया। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम इसको सही रूप में या वैज्ञानिक रूप में हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए एक बड़ी साधारण सी और अच्छी तकनीकी हमारे पास उपलब्ध है, वो है मिट्टी परीक्षण। हम खेत की मिट्टी की जांच कराएं। वैसे तो अगर हम कहें कहीं पर अगर कोई वैज्ञानिक परीक्षण होता है तो वो हर फसल से पहले कराते हैं, लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो कम से कम साल में एक बार खेत जब आपका खाली हो तो मिट्टी का नमूना लें और उसकी जांच कराएं। उसकी रिपोर्ट के हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन कौन से पोषक तत्व तो आपके खेत में उपलब्ध है और क्या उनकी मात्रा होनी चाहिए। फिर तो उसके साथ साथ आप ये भी लिखते हैं कि कौन सी फसल आप लेने जा रहे हैं। फसलों का जब आप नाम लिखते हैं तो वैज्ञानिक उसमें अपनी तरफ से मिट्टी की जांच को देखकर लिखते हैं कि इस फसल को इस समय पर ये आपको पोषक तत्व तो देने हैं, इस समय पर ये पोषक तत्व तो देना है। तो उससे क्या है कि जो फसल आप ले रहे हैं उसकी पूर्ति होगी और जो खेत में पोषक जो स्तर रहना चाहिए वो उसमें बना रहता है, उसमें कमी नहीं आती। तो अगर आप इस ओर जाना चाहते हैं कि आप जो संतुलित पोषण हो आपके खेत में, तो मिट्टी की जांच आप जरूर कराएं।
1: श्रोताओं, हम पिछले अंक में खेती किसानी के आप लोगों को मिट्टी के परीक्षण के बारे में काफी कुछ बता चुके हैं। वो मिट्टी का नमूना अगर आप लोगों को भेजना चाहें तो वो कहाँ भेज सकते
2: जी
1: हैं? हम चाहेंगे
2: जी
1: कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से इस
2: जी
1: बारे
2: हाँ
1: में भी
2: बिल्कुल।
1: बता दो।
2: उसके लिए देखिए, एक तो क्या है, आपके क्षेत्रीय लेवल पे कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला है, आप उनका लाभ ले सकते हैं। वहां मिट्टी का नमूना लेके जाए और फ्री में जांच होगी, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। दूसरा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की भी अपनी प्रयोगशालाएं होती है, वहां भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां पे आप मिट्टी की जांच करा सकते हैं। दूसरा, अगर वहां पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कोई या रिसर्च स्टेशन है, वहां पर मिट्टी की जांच की भी जो
1: सुविधा रहती है।
2: सुविधा है वहां करा सकते हैं। तीसरा, जितनी उर्वरक कंपनियां वो भी मिट्टी की जांच जो कराती है, बीज कंपनियां भी कुछ है जो कराती है, तो उनके लिए जो पीएम केएस के हैं वहां आप संपर्क कर सकते हैं, अपना नमूना दे सकते हैं। चंबल फर्टिलाइजर की भी हमारी दो प्रयोगशाला है, हम साल में लगभग 70,000 सैंपल जो है अपने चेक करते हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं उसमें कोई हम चार्ज नहीं लेते। सैंपल वहां तक पहुंचना चाहिए, पहुंचने के दो तरीके हैं, एक तो या तो आप सीधे भेज दें, कुरियर से भेज दें, डाक से भेज दें, या आप जो पीएम केएस के हैं और वहां पर अगर हमारे उर्वरक आते हैं तो वहां पर हमारे क्षेत्र के काम करने वाले अधिकारी जाते हैं, फील्ड अफसर जाते हैं, वो आपके यहाँ अगर वो नमूने इकट्ठे तो वहां से वो नमूना भेजेंगे, मिट्टी की जांच होगी और रिपोर्ट आपके एड्रेस पे भी आ जाएगी और हमारे आदमी के पास भी है।
1: यदि कोई कोरियर से भेजना चाहे तो मिट्टी कितनी होनी
2: हाँ,
1: चाहिए, चम्मच, कटोरी?
2: मिट्टी जो जो है लगभग 400 ग्राम आप लें, गीली ना हो, और उसके अंदर सूचना पत्र होना बहुत जरूरी है। सूचना पत्र मतलब आपकी पूरी जानकारी, आपकी खेत की पूरी जानकारी और कौन कौन सी फसलें आप उसमें लेंगे
1: लेते हैं
2: वो
1: वो जानकारी। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी किसानों तक, और किसानों से अब अनुरोध है कि वो लोग अपने
2: जी
1: फसलों को ज्यादा अच्छी बनाने के लिए अपनी मिट्टी का परीक्षण जरूर
2: जरूर
1: करवाएं
2: करें।
1: और संतुलित पोषण जरूर दें। तो अब संतुलित पोषण कैसे करें ये तो हम जान चुके हैं, संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान क्या है
2: हाँ जी
1: इसके बारे में अब हम जानना
2: बिल्कुल।
1: आपसे जानना
2: संतुलित
1: चाहेंगे।
2: पोषण देखें अगर हम, तो मुख्य रूप से हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इन चीजों की आवश्यकता होती है। तो इसके उर्वरक हमें मिलते हैं। नाइट्रोजन अगर अकेला चाहिए तो यूरिया नाम का एक हमारे पास उत्पाद आता है, वो आप ले सकते हैं। अगर तीनों चाहिए, जो कि शुरुआत में फसल के लगाए जाते हैं, तो उसके लिए एनपीके आ रहे हैं अलग अलग तरह के। उनमें तीनों पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन भी होता है, फास्फोरस भी होता है और पोटाश भी होता है। तो जो पौधे का शुरुआती विकास है उसके लिए वो बहुत ही
1: जरूर
2: लाभकारी होता है। कभी कभी कहते हैं कि लोग बोलते हैं कि हमें खास तरह का ही जो जो आपका खाद चाहिए, ऐसा ना देखें। खाद के अंदर क्या पोषक तत्व है उसके हिसाब से देखें कि अगर पोषक की जो मांग उस उर्वरक से पूरी हो रही है तो वो उर्वरक आप लें और अपनी फसल में आप उसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे कि सल्फर है, कैल्शियम है, बोरान है, मॉलिब्डेनम है, आयरन है, बहुत सारे। उनके लिए अलग अलग उत्पाद दुकानों पर उपलब्ध होते हैं, उस नाम से होते हैं। आप पूछ सकते हैं कि मुझे कैल्शियम की जो मेरे उसमें जो थोड़ी कमी है तो मुझे कौन सा उत्पाद है, तो वो दुकानदार आपको बताएगा। उस पर लिखा होगा कि भाई इसमें इतने परसेंट है, उसका रेट होगा, कैसे इस्तेमाल करना है। और उसमें कंपनी का भी एक टोल फ्री नंबर हो सकता है या उनके अधिकारी का, तो अगर कोई शंका है तो आप उनसे फोन करके पूछ सकते हैं। तो इस तरह से उनका देने का समय होता है, उसमें खेत की तैयारी के टाइम पर देना है। बहुत से उत्पाद ऐसे हैं जो मतलब पोषण है, जिसका आप स्प्रे कर सकते हैं। बहुत से ऐसे हैं कि आप जो है ये ड्रिप इरिगेशन है उससे कर सकते हैं। तो ये आप जब वो उत्पाद लेंगे तो उससे होगा। हमेशा ही एक स्थूल उर्वरक का देना उचित नहीं होता, एक अवस्था तक तो स्थूल उर्वरक काम करता है। उसके बाद फिर जब फसल 40 रोज से ऊपर की हो जाती है, उस समय पर आप अगर स्प्रे के द्वारा दें, क्योंकि फसल का उस समय पर काफी विकास हो चुका होता है, उसका हरा भाग काफी ऊपर होता है, तो आप जो उसमें जो भी स्प्रे करते हैं तो उसकी जो हरा भाग है या उसकी जो पत्तियां हैं उसके अंदर छिद्र होते हैं, उसको स्टोमेटा बोलते हैं। वो उसको सोखता है और वो अपने सिस्टम में उस पोषण को ले जाता है और वो उसको धीरे धीरे पुष्ट करता है। इसकी जगह अगर आप स्थूल उर्वरक देंगे वो अच्छे से पौधा नहीं ले पाता, क्योंकि उसकी इतनी अवस्था हो जाती है। फिर आप जब उसको फेंक के डालते हैं तो वो अगर जो पौधे के पत्ते के ऊपर गिरा तो, क्योंकि वो केमिकल है, तो वो नुकसान करेगा। और जो स्प्रे कर रहे हैं उसमें पानी की मात्रा इतनी है वो
1: नुकसान
2: नुकसान
1: नहीं
2: नहीं
1: करेगा।
2: करता।
1: संतुलित पोषण देने के लिए उपलब्ध आदान के बारे में तो आप लोगों ने सब जान लिया है। अब संतुलित पोषण करने से क्या लाभ होते हैं
2: जी जी
1: आपके खेत में, आपकी फसलों में क्या फर्क पड़ता है
2: जी
1: उसके बारे में हमारे श्रोताओं को
2: हाँ।
1: जानकारी दी।
2: संतुलित पोषण, जैसे कि बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर अगर आप लाभ समझे तो आप ये समझिए कि जितनी उपज आपको चाहिए उतनी मिलेगी। जैसे कि आप हाइब्रिड मक्का लेने जा रहे हैं, उसमें पर एकड़ आपको 25 क्विंटल उन्होंने कहा है कि इस बीज के हिसाब से हमें आपको यील्ड आएगी, उपज आएगी 25 क्विंटल एक एकड़ में, या 30 क्विंटल आएगी। अगर आपने संतुलित पोषण दिया, मतलब हर पोषण की जो मात्रा चाहिए उतनी दी, तो वो 25-30 क्विंटल संभव है उसमें। लेकिन अगर एक एक खास चीज आपने अधिक मात्रा में दे दी और कुछ चीजें छोड़ दी तो वो उतनी उपज आपको संभव नहीं। तो मतलब जो जो उसका पूरा पोटेंशियल है वो आपको जो नहीं मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई एक सब्जी आपको बनानी है, उसके लिए खास तरह की इंग्रेडिएंट चाहिए, हल्दी इतनी, काली मिर्च इतनी, लाल मिर्च इतनी, ये इतना, ये उतना, सारी चीजें आप ऐड करते हो सही और समान मात्रा में, तो उस सब्जी से जो उसका टेस्ट आना चाहिए या जो उससे उसको स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए वो होएगा। जैसे कुछ सब्जियां होती हैं उसमें अगर कोई वो खास चीज आपने नहीं डाली तो वो स्वास्थ्य के लिए उतनी फायदेमंद नहीं रहती। अब जैसे कि एक जो सब्जी होती है जिमीकंद होती है, उसको एक खास तरह से तैयार करना होता है। अगर वो विधि आपने नहीं अप्लाई तो वो न तो आपको स्वाद आएगा ना आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक। तो इसी तरह से है कि संतुलित पोषण में जितनी जरूरत और जैसे आपको देना है वो अगर आप देते हैं तो एक तो आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, उपज अच्छी मिलती है। दूसरा उसमें हर चीज दे रहे हैं तो किसी चीज पे आप ज्यादा खर्च करते हैं। जैसे कोई आदमी को बोल दो कि अगर तुम्हें स्वस्थ रहना है तो घी पिया करो, तो वो घी घी पिए जा रहा है तो बीमार हो जाएगा वो, और घी पे खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अब उसके साथ अगर वो सब्जी खाए तो सब्जी सस्ती भी आती है, लेकिन एक सही मिक्स बन जाएगा, संतुलन बन जाएगा। इसी तरह से पोषण के बारे में हमेशा ये ध्यान रखें, जो चीज जितनी जरूरत है उतना अगर आप देते हैं तो उसके आपके खर्चे कम होते हैं, फसल स्वस्थ होती है, उपज अच्छी मिलती है, और जो उससे उत्पादन आपको मिल रहा है, जो उपज आपको मिल रही है, चाहे वो सब्जी ले रहे हैं आप, चाहे आप अनाज ले रहे हैं, उसकी पौष्टिकता और उसकी जो क्वालिटी चाहिए, जैसे मान के चले सरसों है, सरसों की फसल आप ले रहे हैं, सरसों में हमें सल्फर चाहिए। सल्फर से क्या होता है, प्रोटीन बनती है और ऑयल की जो जो जो जो उसके अंदर तेल के कंटेंट है वो बढ़ते हैं, और उसका जो स्वाद है उसमें जो एक तीखापन होता है वो उससे आता है सल्फर से। आप जो सब चीजें आपने डाली लेकिन सल्फर छोड़ दी, अगर खेत में सल्फर अच्छी मात्रा में है तो ठीक है अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर उसकी कमी हो गई है, लगातार आप सरसों उगाते आ रहे हैं, तो क्वालिटी में आपको फर्क आएगा। जैसे मैं एक बार जो बंगाल गया था तो वहां के लोग सरसों का तेल बहुत खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल, मस्ट मस्ट मस्टर्ड ऑयल उनका एक जो है अपना स्लोगन है। तो उनसे मैंने पूछा कि आप जो कहाँ की सरसों जो पसंद करते हैं, उन्होंने कहा राजस्थान की, मैं हमारे यूपी में और हरियाणा में बहुत होती है, तो बोले नहीं राजस्थान की जो है उसमें तीखापन ज्यादा, पंजनसी बहुत है, तो वहाँ उसकी जो क्वालिटी है सल्फर वहाँ होगा उस हिसाब से उसके अंदर पंजनसी आती है। तो संतुलित पोषण से हमें अनेक लाभ होते हैं, और आज की तारीख में जो मतलब उपभोक्ता है वो हर चीज देखता है और समझता भी है, तो जहां समझ है तो वैसा आदमी पाने की चेष्टा करता है। तो हम संतुलित पोषण करेंगे तो हम एक अच्छी उपज लोगों तक दे पाएंगे, अच्छी क्वालिटी के साथ दे पाएंगे, और हम अच्छा लाभ ले पाएंगे।
1: तो अच्छा लाभ लेने के लिए सभी श्रोताओं से, सभी किसान भाइयों से हमारा यही कहना है कि जो भी फसल उगाएं, संतुलित फसल उगाएं, जिसमें सही पोषण हो, और सही पोषण रहे उसके लिए आप लोग अपने यहाँ की मिट्टी का परीक्षण कराएं। मिट्टी में जो कमी है उन कमियों को पूरा करने के लिए वो दवाएं, वो उर्वरक, उनका इस्तेमाल करें। तो आज के इस अंक में आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां दी चंबल फर्टिलाइजर्स के वरिष्ठ प्रबंधक डॉक्टर एके सिंह ने। और इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की हमको अनुमति दीजिए। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।

0: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
4: देखिए आर्चरीना, सरल भाषा में कहते हैं, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
3: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
4: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
3: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
3: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
4: बिल्कुल आर्जरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
3: दृष्टि चक्र वह कैसे?
4: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
3: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
4: देखिए आर्चरीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
3: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
5: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहां खून की जांच हुई, पता चला कि उसे अनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं जल्दी।
3: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
5: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
3: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
5: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
3: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
4: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए। उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
3: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
4: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
3: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
4: कई बातें देखी जाती हैं RJ, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
3: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
4: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
3: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
4: बिल्कुल सही कहा आपने।
3: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
4: आर्जेरीना IFA यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली, और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं, जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
3: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
4: बिल्कुल,
3: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
4: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
5: बिल्कुल सही, केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती। घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं।
3: किस तरह का भोजन करें?
5: घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खास तौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
3: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
5: बिल्कुल, गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
3: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
4: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
3: अच्छा?
4: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
3: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
4: बिल्कुल सही आर्जेरीना, और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है। नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
3: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
4: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जांच पर आधारित होता है।
5: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
3: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
5: बिल्कुल, अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA, MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
4: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
3: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसे पूछिए, क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
1: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA, MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगी परी आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
6: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
1: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम, एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार वुमेन स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
6: गर्भावस्था में एनीमिया के लिए जो जांचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
1: ठीक है मैम।
6: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
1: ऑलराइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
6: बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
1: ओके, ठीक है। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य, माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
6: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
1: ठीक है।
6: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
1: ठीक है।
6: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
1: ज्यादा है।
6: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
1: ओके।
6: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
1: ऑलराइट। अच्छा मैम, क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
6: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
6: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
1: हाँ जी, दालें भी, आई थिंक
6: दालें, दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
6: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है,
1: राइट,
6: हीम प्रोटीन होता है,
1: राइट,
6: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
1: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
6: बिल्कुल करना सारे चाहिए। और जितने सेब हैं,
1: हाँ जी, जो
6: अनार
1: हैं,
6: ओके, फ्रूट्स हैं,
1: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
6: बिल्कुल सही,
1: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर एनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
6: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
1: हाँ जी,
6: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
1: ओके,
6: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
1: ओके।
6: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सीजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है,
1: कम हो जाता है।
6: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस हैं, लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
4: ओह माय गॉड,
6: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
4: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
6: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मातृ की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
4: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इम्पोर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें।
6: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें, गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
4: ओके, दैट्स वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच, लवली टॉकिंग टू यू मैम हमारे साथ आने के लिए। गाइज आप कहीं मत जाइए, आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
7: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
8: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
9: Hey, you're tuned into FM Muradabad, 89.6 FM.
10: Bhai, isn't she your ex? What is she doing with that old model?
11: Deni pehni hai nu. Love dose ek wari fir.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आरजे राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं,

तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, कम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, OTP को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो, पैसे कट गए हो, OTP शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो, तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत, उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और UPI सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। OTP और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है, लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है, सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 MHz के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। आप सुन रहे हैं आपका नया कार्यक्रम सोच बदलो और मैं हूं आपकी दोस्त खुशी। आज का विषय शायद आपको सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करेगा। कभी आपके मन में किसी को देखकर ऐसा विचार आया है कि यार इसकी जिंदगी कितनी अच्छी है, इसकी नौकरी मुझसे अच्छी है, इसके नंबर मुझसे ज्यादा है, इसकी शादी हो गई, इसके पास अपना घर है, ये मुझसे ज्यादा सफल है। और फिर हम बिना जाने अपने जिंदगी को किसी और की जिंदगी से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल ये है कि क्या दूसरों से तुम्हें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है या अंदर ही अंदर मान दबाव पैदा कर देती है। तो मेरे साथ में रीना भी है यहाँ पर और रीना से भी कनेक्ट करते हैं। तो रीना बताइएगा आप क्या कहना चाहते हैं।
3: मैं आज रीना और आज इसी टॉपिक पर हम खुलकर बात करेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी यात्रा किसी की यात्रा से अलग है, इसीलिए आपकी रफ्तार भी अलग हो सकती है। तुलना होती क्यों है दोस्तों? तुलना कोई नई चीज नहीं है। बचपन में देखो शर्मा जी के बेटे के कितने नंबर आए हैं, स्कूल में उसने तुमसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, कॉलेज में उसकी नौकरी लग गई, तुम्हारी कब लगेगी? और बड़े होते होते तुलना बदल जाती, तनख्वाह, गाड़ी, घर, रहन सहन, शादी, बच्चे और आजकल सामाजिक माध्यमों पर दिखाई जाने वाली जिंदगी, मतलब जिंदगी के हर पड़ाव पर कोई ना कोई तुलना हमारा इंतजार कर रही होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, तुलना तब खतरनाक हो जाती है जब हम दूसरों की सफलता को अपनी असफलता समझने लगते हैं। किसी का आगे बढ़ना, आपका पीछे रहना, यानी कि ये मेहनत पर निर्भर करता है। आप जैसा मेहनत करेंगे आपको फल भी वैसा ही मिलेगा। इसीलिए मुझे तो ये लगता है श्रोताओं कि देखिए किसी से हमें ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जेलस फील नहीं होना चाहिए। उसको उसकी मेहनत का परिणाम मिल रहा है, आपको आपकी मेहनत का परिणाम मिलेगा। बेटर ये होगा कि आप दूसरों के बारे में कम सोचे, खुद के बारे में ज्यादा सोचे, खुद को ज्यादा ग्रो करें, खुद पर ज्यादा काम करें। जब आप खुद पर ज्यादा काम करेंगे तो शायद आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने के लिए लगा रहे ना, उससे ज्यादा समय आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप उससे भी ज्यादा ऊंची सफलता पर और ऊंची ऊंचाई पर जा सकते हैं। इसीलिए अपने आप से हमेशा मैं कहती हूँ कि वादा करिए, दूसरों के बारे में आप जितना सोचेंगे ना उतना ही आपको टेंशन होगा, डिप्रेस होंगे आप, बीमारियां बढ़ती जाएगी बॉडी में। इसलिए दूसरों के बारे में कम सोचिए, खुद के ऊपर ज्यादा काम करिए।
2: और श्रोताओं से मेरा सवाल भी है रीना, मैं अपने श्रोताओं से पूछना चाहती हूँ, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर अपनी तुलना दूसरों से करते हैं? काम और नौकरी, पैसा, सुंदरता, रिश्ते, रहन सहन या सफलता? मुझे संदेश जरूर भेजिएगा, हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। तुलना कब प्रेरणा बनती है? अब सवाल ये है कि क्या तुलना हमेशा गलत होती है? नहीं, अगर किसी को देखकर आपके मन में आए अगर ये कर सकता है तो मैं भी कोशिश कर सकती हूँ, तो ये तुलना नहीं प्रेरणा है। उसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, ये तुलना मानसिक दबाव बन जाती है। फर्क बहुत छोटा है लेकिन सोच बदल देता है। प्रेरणा कहती है मैं भी कोशिश करूंगी और तुलना कहती है मैं उसके जैसी क्यों नहीं। बस सोच का यही छोटा सा फर्क हमारी पूरी भावना बदल देता है। तो दोस्तों अभी और भी बहुत सारी बातें करेंगे लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: एक बार फिर से और कनेक्ट हो गए श्रोताओं आप सभी के बीच। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है और हम शो कर रहे हैं यानी कि सोच बदलो। मोस्टली आप सभी आनंद को सुनते हैं ना, कभी कभी मैं भी आ जाती हूँ उसके साथ, लेकिन आज मैं और खुशी आए हैं, यानी कि पहली बार ऐसा शो हो रहा है कि हम दो सोच बदलो में आ रहे हैं ना,
1: वरना हम अक्सर महिला मंच में ही सुनाई देते हैं।
0: हाँ, अरे हमने सोचा कि जब मौका मिल रहा है तो आ ही जाते हैं।
1: बिल्कुल, कोई भी चांस नहीं छोड़ना चाहिए।
0: हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक माध्यम और तुलना। अब सामाजिक माध्यमों की बात ना हो तो आज का विषय अधूरा है। मोबाइल खोलिए, किसी की घूमने की तस्वीरें, किसी की नई गाड़ी, किसी की शादी, किसी का सुंदर घर, और हम दूसरों की जिंदगी का सिर्फ अच्छा हिस्सा देखकर अपनी जिंदगी की तुलना करने लगे। तो श्रोताओं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती है, इसीलिए ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको दूसरों पर। और याद रखिए, सामाजिक माध्यमों पर हर किसी की कहानी नहीं दिखाई जाती, सिर्फ चुना हुआ हिस्सा दिखाई देता है। इसीलिए किसी के कुछ सेकंड की वीडियो देखकर अपनी पूरी जिंदगी को मत परखिए। आप नहीं जानते कि उस तस्वीर के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष है, और दूसरे लोग भी आपकी पूरी कहानी नहीं जानते। जैसा कि मैंने आप सभी को बताई है श्रोताओं, का चमकता चीज सोना नहीं होता है, वो छोटे छोटे क्लिप होते हैं। और आजकल एडिटिंग इतनी स्मार्ट हो गई है ना कि झुग्गी झोपड़ी वाले जो घर होते हैं ना, झोपड़ी वाले, उसको भी ऐसे महल की तरह एडिट कर देंगे ना, आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि वाकई में ये घर कैसा चमकता है, कि क्या चीज है क्या चीज नहीं। तो हमें इसीलिए वीडियो पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों, सही कह रही हूं मैं खुशी?
1: आपने जो कहा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, एक्चुअली दोस्तों देखिए, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सब सुपर फास्ट हो गए हैं आज के टाइम में। तो कुछ चीजें ऐसे भी हैं जो लाइक हमारी हम खुद अपनी लाइफ से ही ले लेते हैं एवरीवन, कि हम भी वो जिंदगी के ना उसी मोमेंट को कैप्चर करते हैं जो हैपनिंग वाले होते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो संघर्ष होता है, जो तकलीफें होती हैं, जो मेहनत होती है, हम कई बार उसको स्किप कर देते हैं, राइट ना?
0: बिल्कुल।
1: तो और इंसान उसी को देखकर खुश हो जाते हैं, अरे यार ये तो बहुत इजी है, हम भी कर सकते हैं।
0: हाँ, ऐसा नहीं होता है।
1: उसके पीछे बहुत मेहनत होती है।
0: अब तुम यही देख लो, पता क्या बोल देंगे, अरे शर्मा जी का लड़का, देखो उसकी नौकरी लग गई है। पर कोई ये नहीं कहता यार वो पढ़ा कैसे होगा,
1: स्टडी की है, रात दिन जाकर पढ़ाई की है।
0: हर कोई देता है तेरी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, लेकिन लाइफ के पीछे क्या खिचड़ी पकी है
1: वो हर कोई नहीं समझ पाता है। और मेरा एक सवाल भी है अपने श्रोताओं से, क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कम है? अगर हाँ या ना, मुझे संदेश करके जरूर बताइएगा, मुझे मैसेज जरूर भेजिएगा कि क्या कभी सामाजिक माध्यमों पर दूसरों की जिंदगी देखकर आपको लगा है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है, हाँ या ना में अपना मैसेज हमें जरूर पहुंचाइएगा एवरीवन। एंड अपनी कीमत किसी और की सफलता से तय मत कीजिए। दोस्तों, हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम किसी और की उपलब्धि देखकर अपनी कीमत तय करने लगते हैं, लेकिन आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आप कोई आपसे आगे है या पीछे। आपकी कीमत आपकी मेहनत, आपके संस्कार और आपकी इच्छाओं, आपकी अच्छाइयों और आपके संघर्ष से है। हो सकता है कोई आपसे पहले सफल हो गया हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई है। किसी की कहानी 10वां अध्याय चल रहा है और आपकी कहानी का 4वां, लेकिन किताब दोनों की अपनी अपनी है। अभी देखो बहुत सारी बातें बाकी हैं, अभी तो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपसे हम कनेक्ट कराने वाले हैं, रूबरू कराएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले एक प्यारा सा छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको भी अपनी लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए काम से। लेकिन हम काम नहीं ले रहे हैं, हम आपको एक म्यूजिकल ब्रेक सुनवा रहे हैं। प्यारा सा गाना भी तो होना चाहिए ना, जो माइंड को एकदम फ्रेश कर दे। चलिए सुनते हैं।

0: जी एक बार और आप सभी के साथ कनेक्ट हो गए श्रोता। बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है सोच बदलो शो में। और देखिए सोच बदलना आज के टाइम में बहुत जरूरी है क्योंकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है और आप सोच रहे हैं कि अभी भी हम पीछे हैं तो आप यहाँ पर गलत है। अब कल ही मैं एक अंकल से मिली जो कि लाइव बता रही हूँ मैं, उनका मोटिव है कि जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशन प्राप्त करे, आगे बढ़े, सबसे बातें करे। लेकिन एक जो उनकी सोच है, मतलब मैं सोचने पर मजबूर हो गई उनकी सोच पर, उनका कहना ये है कि 12वीं के बाद बच्चों की शादी कर देनी चाहिए, यानी कि लड़की की शादी कर देनी चाहिए। अब आप सोचिए कि तुम पढ़ाना भी चाहते हो और ये भी चाह रहे हो कि बच्चों की शादी यानी कि लड़की की शादी है वो 12वीं के बाद कर दे, और उनका ये भी कहना था कि शादी के बाद पढ़ लेगी। अब भैया हर फैमिली ऐसी नहीं होती कि पढ़ने शादी के बाद अलाउ कर दे कि पढ़ो। बहुत से ऐसे हो जाते कि घर के कामों में इतने बिजी हो जाते कि अपने बारे में आगे के बारे में सोच नहीं पाते हैं। इसीलिए जैसे जैसे दुनिया बढ़ती जा रही है आगे, आप भी अपना सोच बदलिए, बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़ाइए, क्योंकि लड़कियां आज के टाइम में हर क्षेत्र में आगे है, वो पीछे नहीं है किसी भी क्षेत्र में। बस अपनी सोच को बदलने की हमें जरूरत है। सो इसी सोच बदलो में अब हम बात कर रहे हैं परिवार की तुलना। अब एक ऐसी तुलना की बात करते हैं जिस सामना बहुत से लोग बचपन से ही करते हैं, परिवार में होने वाली तुलना। उसके बच्चों को देखो, उसकी बेटी कितना अच्छा कर रही है, उसका बेटा सरकारी नौकरी में है, तुम कब कुछ करोगे। कभी कभी ये बातें हमें आगे बढ़ने के लिए कही जाती है लेकिन सामने वाले के दिल पर बहुत दबाव डाल देती है। इसीलिए माता पिता और परिवार के सदस्यों से भी एक छोटी सी गुजारिश है, बच्चों की तुलना दूसरों से करने के बजाय उसकी आज की तुलना उसके कल के लिए कीजिए। कल से आज थोड़ा बेहतर हुआ, बस यही प्रगति है। इसीलिए कभी भी अपने बच्चों को ये मत कहिए कि उसके बच्चे को लो वो आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है। अरे हर बच्चे का जो मेंटेलिटी है वो अलग होता है। कोई बच्चा आपके जो बातें है उसको गहराई से लेकर डिप्रेस हो जाता है, जो कि वो जो कर भी रहा होता है ना वो भी नहीं कर पाता है। वो सोचने लग जाता है यार मैं अपने मन का करूँ या घर वालों के मन के करूँ। मुझे लगता है यहाँ पर बच्चों की बातें हमें सुननी चाहिए, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जिसमें वो आपका बेटा बेटर कर सकता था लेकिन आपकी बातें सुनकर उसने वो काम करा जो वो नहीं कर पाना चाहता था, लेकिन ना वो वहां करा ना यहाँ करा, तो इसमें लॉस आपका तो है ही, बच्चे का और भी ज्यादा है क्योंकि बच्चे के भविष्य अभी बहुत आगे पड़ी है। तो इसीलिए कभी भी बच्चों के ऊपर, कभी भी बच्चे के दिमाग के ऊपर ये तनाव मत डालिए उसके इतने मार्क्स आ गए हैं, वो आगे बढ़ रहा है, वो ये कर रहा है। बस अपन बच्चों की सुनिए और उसी के साथ आगे बढ़िए। जो उसकी सपना है, जो वो करना चाह रहा है, उसको अप्रिशिएट करिए, वो आगे बढ़ाइए। क्योंकि कहते हैं ना पूरी दुनिया भी खिलाफ हो लेकिन जब फैमिली साथ होती है ना तो पूरा कायनात भी ये क्यों ना हो पार लगी जाती है। नहीं है तो आपका साथ होना बहुत जरूरी है, मोटिवेट करना आपका बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों के साथ रहिए, मोटिवेट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।
1: बिल्कुल रीना, बहुत अच्छा बोला है आपने कि पेरेंट्स अगर सपोर्ट करते हैं तो बच्चा वो भी कर पाता है जिसमें वो ना करने की हार मान लेता है। तो इसलिए फैमिली को हमेशा बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। और छोटी छोटी अगर वो चीजें अचीव कर रहे हैं, कुछ जीत हासिल कर रहे हैं, लाइक जैसे किसी गेम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या फिर उनके मार्क्स अच्छे आए, उन्होंने छोटे छोटे घर में भी अगर आपकी काम में हेल्प की है तो उसके लिए भी आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए ताकि आगे चलकर वो और भी अच्छा करें। क्यों? और दोस्तों अभी नेक्स्ट हमारा जो मतलब सेगमेंट है वो भी हम आपसे अभी कनेक्ट करने वाले हैं, बातचीत करने वाले हैं, खुद से तुलना करना सीखिए। दोस्तों आप सोच बदलो में एक आसान सा मंत्र याद रखिए, दूसरों से कम तुलना, खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरों से तुलना करने की बजाय खुद से पूछिए, क्या मैं कल से आज बेहतर हूँ? क्या मैंने आज कुछ नया सीखा? क्या मैंने अपनी किसी बुरी आदत को सुधारने की कोशिश की? क्या मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंची हूँ? अगर जवाब हाँ है तो पूरा विश्वास रखिए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको पूरी दुनिया से दौड़ नहीं लगानी है, आपको बस अपनी यात्रा जारी रखनी है, आपको अपनी जर्नी कंटिन्यू रखनी है। तो चलिए दोस्तों इस शो को थोड़ा और मजेदार बनाते हैं एंड मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दोस्तों, एक ऐसी कौन सी चीज है जिसे लेकर आपने कभी खुद की तुलना दूसरों से की है? सुंदरता, पैसा, नौकरी, शादी, रहन सहन, स्वास्थ्य या कोई टैलेंट? नाम बताने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्ची बात मेरे साथ साझा कीजिएगा। और साथ में भी बात याद रखिए, आज अगर आपको अपने छोटे वाले रूप से एक बात कहनी हो तो क्या कहेंगे, बताइएगा जरूर। चलो अभी लेते हैं एक प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आएंगे, फिर और भी बातें करनी है जो आप तक शायद आपकी जिंदगी को और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना दें।

0: दोस्तों देखिए हम अपने वादे के अनुसार लौटकर आ चुके हैं आप ही के अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। शो का नाम है सोच बदलो और दोस्तों तुलना से बाहर कैसे निकलें ये हम आपको बताने वाले हैं। अब थोड़ी काम की बातें भी कर लें कि दोस्तों अगर आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो कुछ छोटी छोटी आदतें अपनाइए। पहली बात, सामाजिक माध्यमों पर से थोड़ा कम कीजिए, दूसरों की बातें अपनी उपलब्धियों की एक सूची बनाइए। तीसरी बात, हर दिन एक छोटा लक्ष्य पूरा कीजिए। और चौथी बात, किसी और की सफलता देखकर जलने की बजाय खुद से पूछिए मैं इससे क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। और पांचवी बात और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी का सम्मान कीजिए, अपनी जर्नी की रिस्पेक्ट कीजिए। प्रगति भी प्रगति होती है एवरीवन, जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहते हैं तो वो भी एक जर्नी होती है बड़ी खूबसूरत सी। कहते हैं ना कि मंजिल से ज्यादा सफर खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि जब सफर खूबसूरत होगा ना तो मंजिल भी यकीन मानिए बहुत ब्यूटीफुल होगी।
1: अब मैं एक मजेदार बात करने वाली हूँ आप सभी के साथ। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की खूबसूरती सिर्फ इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम सामने वाले की जिंदगी देखने में बहुत व्यस्त होते हैं। आपके पास जो है शायद किसी और का सपना हो, आपका परिवार, आपका घर, आपका काम, आपका हुनर, आपके अपने लोग, या फिर एक बस शांत सुबह। हर चीज को सफलता के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का समय अलग है और हर किसी की मंजिल भी अलग हो सकती है। इसीलिए जो आप सोच रहे हैं, क्या पता उसका सपना हो, वो करना चाह रहा हो और आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आप अपने सोच पर ये बात हाँ मत होने दीजिए कि वो क्या सोच रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आप खुद को बदलिए और खुद को ऐसा बदलिए कि सामने वाला कहे वो जले ना, बस उसके दिमाग में इतना सोच आ जाए कि ये आगे बढ़ सकता है, भाई ये ऐसा बढ़ सकता है तो मैं भी इसे प्रेरणा ले लेता हूँ कि भैया तूने कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
0: एक लाइन मुझे याद आ रही है बड़ी खूबसूरत सी है कि जब बदलते हैं नजरें तब बदल जाते हैं नजारे। जब बदल
1: कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया।
0: एक लाइन मुझे याद आ रही है बड़ी खूबसूरत सी है कि जब बदलते हैं नजरें तब बदल जाते हैं नजारे। जब बदलता है नजरिया तब बदल जाते हैं नजारे। जिंदगी में मानो तो सुखी सुख है, न मानो तो जिंदगी है दुख का दरिया।
1: ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और श्रोताओ एक और कहावत, दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख तो जरूर आता है।
0: ये सर्कल चलता रहता है जिंदगी में, आप भी घूमते रहिए, आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए, जो होगा बेस्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी है नेहा शर्मा की। नेहा एक साधारण सी लड़की थी, पढ़ाई में ठीक ठाक, घर में कामों में मदद करने वाली और अपने छोटे छोटे सपनों के साथ खुश रहने वाली। लेकिन नेहा की एक आदत थी, वह हर समय अपनी तुलना किसी न किसी से करती रहती थी। उसकी एक सहेली थी रिया। रिया की नौकरी न से पहले लग गई। नेहा ने सोचा देखो रिया मुझसे आगे निकल गई। समय बाद रिया ने नई गाड़ी खरीद ली। नेहा ने फिर अपने मन में कहा मेरे पास तो अभी पुरानी स्कूटी ही है। फिर रिया की शादी हो गई। अब नेहा को लगने लगा उसकी जिंदगी तो पूरी तरह सवर गई है और मैं अभी तक वही खड़ी हूँ। धीरे धीरे नेहा अपनी जिंदगी की खुशियाँ भूलने लगी। वह सुबह उठती तो मोबाइल देखती, दूसरों की तस्वीरें देखती, किसी की नौकरी, किसी का घर, किसी की जर्नी, किसी की शादी, और फिर अपना जीवन देखकर उदास हो जाती। एक दिन नेहा अपनी माँ के साथ बैठी। माँ ने पूछा बेटा आजकल तुम बड़ी चुप चुप सी रहती हो, क्यों? नेहा ने कहा माँ लगता है सब लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उन्होंने नेहा से कहा बेटा तुम हर दिन दूसरों की जिंदगी का हिसाब रखती हो, कभी अपनी जिंदगी का हिसाब भी लगाया है? नेहा चुप हो गई। माँ ने आगे कहा तुमने पिछले साल अपनी पढ़ाई पूरी की, अपने छोटे भाई की पढ़ाई में मदद की, पापा के इलाज के समय घर संभाला, अपनी पहली नौकरी के लिए कितनी मेहनत की और सबसे बड़ी बात तुमने मुश्किल समय में भी हार नहीं मानी। फिर माँ ने मुस्कुराकर कहा दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो, हो सकता है जिस जिंदगी को तुम कम समझ रही हो कोई और उस जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रहा हो। ये बात नेहा के दिल में उतर गई। उस रात उसने पहली बार मोबाइल एक तरफ रखा और कागज पर लिखा मैं दूसरों से नहीं कल वाली नेहा से मुलाकात करूंगी। उसने अपनी छोटी छोटी उपलब्धियां, अचीवमेंट्स नोट करनी शुरू कर दिए। अगले दिन अपनी पुरानी किताब निकाली, एक नया कौशल, एक नई स्किल सीखने का फैसला किया। अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया और सबसे जरूरी उसने दूसरों की जिंदगी को देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद कर दिया। कुछ महीनों बाद नेहा की जिंदगी अचानक बिल्कुल नहीं बदल गई थी, लेकिन उसकी सोच बदल गई थी। और दोस्तों, कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए हालात बदलना जरूरी नहीं होता, बस अपना नजरिया बदलना पड़ता है। नेहा की कहानी हमें यही सिखाती है, किसी और की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा मत रोकिए, किसी और की सफलता देखकर खुद को असफल मत समझिए। और अगर तुलना करनी ही है तो आज अपनी तुलना कल वाली अपनी तस्वीर से कीजिए, क्योंकि असली जीत तब है जब आप कह सकें, हाँ मैं कल से थोड़ी बेहतर हूँ। यही है आज की सोच बदलो की असली सोच। दोस्तों, आज की सोच बदलो से जाते जाते बस एक बात अपने साथ लेकर जाइएगा, दूसरों की रफ्तार देखकर अपनी यात्रा पर शक मत कीजिए। किसी की सफलता आपकी असफलता नहीं, किसी की खूबसूरत तस्वीर आपकी जिंदगी को कम खूबसूरत नहीं बनाती, और किसी का आपसे पहले मंजिल तक पहुंच जाना आपके अंदर से पहुंचने का परिणाम नहीं है। बस अपना रास्ता देखिए, अपनी मेहनत देखिए, अपनी प्रगति देखिए। कल अगर आप आज से एक कदम भी आगे बढ़े तो आप जीत रहे हैं। और आज की सोच बदलो का सबसे बड़ा संदेश, दूसरों से मुकाबला करना बंद कीजिए, अपने कल से मुकाबला कीजिए, क्योंकि असली मुकाबला दुनिया से नहीं आपके कल वाले रूप से है। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी, मिलते हैं अगले सोच बदलो में एक नई सोच और एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और हाँ, अपनी जिंदगी को किसी और की जिंदगी से मत तोलिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी की नकल नहीं, आपकी अपनी बिल्कुल अनोखी कहानी है। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
3: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशल

0: टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
1: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पीस मेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। मूवी किफायती रेट्स पर, स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276-111-01।
0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। आपके शहर का सामुदायिक रेडियो आनंद के साथ हैं आप और प्रोग्राम का नाम है हेलो डॉक्टर। और हमारे साथ कोई ना कोई विशेषज्ञ, कोई ना कोई एक्सपर्ट मौजूद होते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आकाश सिंघल, जो श्री साई हॉस्पिटल में है, इस वक्त वहाँ पर वर्किंग है। अब सर का वेलकम करेंगे और उनसे बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। आज हमने उनको क्यों आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में और हमारे इस प्रोग्राम में हेलो डॉक्टर में, तो वो तो हम आकाश जी से ही जानेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में, जोरदार तालियों के साथ वेलकम टू एफएम मुरादाबाद। हाउ आर यू, कैसे हैं आप, प्लीज बताएं आकाश जी।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म।
0: थैंक यू सर,
4: दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
0: ओह वाओ, लवली, कैसा लग रहा है? पहले तो मैं यही पूछूंगा।
4: इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। थोड़ा सा है कि नाउ आई कैन शेयर माई थॉट्स विद द पीपल, ठीक है। आपके चैनल से काफी लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन दे पाऊंगा, जो जो चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि एवरी पेरेंट शुड नो।
0: क्या बात है।
4: तो पहले तो मैं बताता हूँ, मेरा नाम डॉक्टर आकाश सिंघल है, जैसे कि आपने सबको बताया है।
0: जी जी, प्लीज।
4: मैंने MBBS किया है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: Beautiful.
4: फिर MD पीडियाट्रिक्स किया है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली से।
0: Wow.
4: उसके बाद मैंने किया है DM नियोनेटोलॉजी एम्स न्यू दिल्ली से।
0: क्या बात है।
4: अब लोग सोचते हैं ये DM नियोनेटोलॉजी है क्या।
0: जी,
4: तो मैं बताना चाहूंगा कि DM नियोनेटोलॉजी बच्चों की सुपर स्पेशलिटी है।
0: हाँ जी।
4: इसमें हम बर्थ से 1 मंथ तक के बच्चों को देखते हैं। अब आजकल प्रीमेच्योरिटी, लो बर्थ वेट, मतलब समय से पहले बच्चे डिलीवर हो रहे हैं, कम वजन के साथ बच्चे डिलीवर होते हैं, तो इसकी एक सुपर स्पेशलिटी है। ऑल दो हम सारे ही पेडियाट्रिशियंस अपने ही कोर्स में न्यूबॉर्न बच्चे देखते हैं, बट सुपर स्पेशलिटी की जहां बात आती है, तो वी आर एक्सक्लूसिवली लुकिंग आफ्टर न्यूबॉर्न फॉर द लास्ट 3 ईयर्स।
0: हाँ जी।
4: तो इसमें एक्सपर्टीज बढ़ता है और विद टाइम नॉलेज भी होती है। एंड रही बात मेरे बारे में, तो मैंने दिल्ली एम्स से किया है, तो वो एक हायर रेफरल सेंटर है, तो वहाँ पे हाई रिस्क केसेस ही मोस्टली होते हैं।
0: Alright.
4: तो हमारी एक्सपर्टीज उसी में ज्यादा होती है। सो समय से पहले डिलीवर हो गए हैं, खून बदलना पड़ा है किसी बच्चे का, बच्चा पैदा होने के बाद नहीं रोया है, ये सब केसेस।
0: बहुत ही अच्छा परिचय सर ने दिया है, तो ऑडियंस अब आप दिल थाम के बैठिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। आज हेलो डॉक्टर के प्रोग्राम में डॉक्टर आकाश सिंघल जी मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने आप को जो है आपके साथ इंट्रोड्यूस किया। सो डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि जो नवजात शिशु है उसकी देखभाल में मतलब किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए हमें जब न्यू बॉर्न बेबी होता है।
4: जब बेबी डिलीवर होता है, एक्चुअली कॉमन चीजें कुछ मिथ्स हैं जो अगर बेबी नॉर्मल है, हेल्दी है, तो क्या करते हैं फैमिलीज, कभी कभी कुछ बुट्टी पिलाने लगते हैं।
0: जी जी।
4: कोई कोई अम्बिलिकल कॉर्ड जो बच्चे की नाल होती है उस पर पाउडर या तेल लगाने लगते
0: जी
4: हैं।
0: जी जी जी।
4: एक बहुत बड़ा मिथ है कि धूप दिखाएंगे तो पीलिया कम हो जाएगा, जॉन्डिस कम हो जाएगा।
0: जी जी जी।
4: ये कॉमन चीजें हैं। कुछ लोग गाय का दूध, भैंस का दूध, मतलब डिफरेंट ये सब चीजें ट्राई करते हैं, ये चीजें नहीं होती, होनी चाहिए। ये सब चीजें बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ाती हैं। तो कुछ जैसे कि जैसे अगर बेबी हेल्दी है, मदर के पास है, तो उसे हमें हर से 2 से 3 घंटे में ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, ठीक है। अच्छे से साफ सफाई रखनी चाहिए। ये नहीं कि कभी कभी मैं देखता हूँ हॉस्पिटल में कि एक बेबी डिलीवर हुआ है, साथ में 6-7 रिश्तेदार हैं उसके साथ, तो हमें नहीं पता कि किसको क्या बीमारी है, कोई वायरल इन्फेक्शन है, कुछ है, तो वो बच्चे की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो वो बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच कर लेते हैं और फिर बच्चों की उनकी दिक्कत बढ़ जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर बेबी डिलीवर है तो पूरी साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, हाथ धोके ही बच्चे को टच करें, इन सब चीजों का ध्यान दें।
0: ओके, सो डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से आपने बताया। और कई बार ऐसा होता है कि जन्म के तुरंत बाद, जैसे कहते हैं कि बच्चे को माँ का दूध देना बहुत जरूरी होता है, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, जन्म के तुरंत बाद बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए?
4: हाँ डेफिनेटली यस। अगर मदर हेल्दी है मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी है
0: हाँ
4: तो हम प्रैक्टिस करते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट इन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग विद इन वन आवर ऑफ बर्थ। इसका मतलब है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर होता है उसे मां के पेट के ऊपर रख देते हैं।
0: दिस इज कंगारू मदर केयर आई थिंक
4: सॉर्ट ऑफ इट्स अ डिफरेंट थिंग।
0: ऑलराइट
4: कंगारू मदर केयर मोस्टली प्रीटम बच्चों के लिए होती है जो कम वजन के बच्चे होते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी
4: ठीक है। इन एवरी बेबी डिलीवरी के बाद क्या होता है अंदर जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसका तापमान मेंटेन रहता है। बाहर आने के बाद ठंडा होने का रिस्क रहता है
0: जी।
4: तो बच्चों के लिए ठंडा होना काफी हानिकारक होता है। तो यही कहा जाता है कि जैसे ही बच्चा डिलीवर हुआ है तो उसको माँ के पेट के ऊपर रखें और वहीं पे ही इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करें। नॉर्मल डिलीवरी में ये पॉसिबल होता है। कुछ मुश्किलें आती हैं जब बच्चा ऑपरेशन से सीजरियन डिलीवरी से होता है उसमें इमीडिएटली पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कुछ जगह। अगर हम चाहें तो हम कोशिश कर सकते हैं ठीक है। बट ब्रेस्ट फीडिंग इज बेस्ट मेथड ऑफ फीडिंग फॉर द बेबी।
0: ओके डॉक्टर साहब एक सवाल रहेगा जो नवजात शिशु होते हैं उनको मतलब कितनी बार वो दूध पीते हैं या उन्हें कितनी बार दूध पिलाना चाहिए इसके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: बेबी को 2 to 3 hourly इनिशियली 2 to 3 hourly हम बोलते हैं। जैसे अगर बच्चे शुरू में कि दो से तीन घंटे में आप फीड कराएं कुछ चीजें होती हैं जैसे मदर्स को नहीं जो फर्स्ट टाइम मदर्स बने
0: हाँ जी, हाँ जी,
4: उनको नहीं पता
0: नहीं
4: होता
0: पता
4: है वो
0: होता
4: क्या
0: है।
4: करती हैं एक कॉन्सेप्ट होता है फोर मिल्क और हैंड मिल्क मतलब शुरू का दूध और बाद का दूध
0: जी।
4: तो हम की कहते हैं कि एक बार अगर मदर फीड करा रही है तो वो सफिशियंट टाइम के लिए फीड कराएं जिससे बच्चे को पूरे एक तरफ से पूरा दूध मिले।
0: ओके
4: क्योंकि क्या होता है अगर बच्चा सिर्फ शुरू का दूध पीता है तो उसमें सिर्फ उसकी थर्स्ट मतलब कि उसकी प्यास बुझती है उसका पेट नहीं भरता है ना ही वजन बढ़ता है। जो बाद का दूध होता है वो जो गाढ़ा होता है जिसको हम हैंड मिल्क बोलते हैं
0: हाँ जी,
4: उसमें
0: हाँ
4: हमारे फैट्स होते हैं बाकी चीजें होती हैं तो जिससे उसका पेट भी भरता है और उसका वजन बढ़ता है। तो कुछ मदर्स अगर एक बार में दोनों तरफ से फीड करा रही हैं तो सिर्फ फोर मिल्क दे रही हैं तो बच्चे का वजन नहीं बढ़ेगा पेट नहीं भरेगा बच्चा क्रैंकी रहेगा। और जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम प्रैक्टिस करते हैं फीडिंग ऑन डिमांड मतलब बच्चा जब मांग रहा है दूध हमें उसको फीड कराना है। फीड कराने के बाद हमें ध्यान रखना है कि हमें हर बार डकार दिलानी है। फीड कराने के बाद बर्फ कराना मतलब डकार दिलाना बेहद जरूरी होता है। तुरंत लेटाना उसको अच्छे से बर्फ करा के तभी लेटाना।
0: बहुत ही बढ़िया आप सुन रहे प्रोग्राम हेलो डॉक्टर मेरा नाम आनंद है और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ श्री साई हॉस्पिटल से डॉक्टर आकाश सिंगल जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कई बार ऐसा होता है कि जो नवजात शिशु होते हैं वो कई बार रोने लगते हैं तो ऐसे में जो समझ नहीं आता है ना तो मम्मी को समझ आता है ना पापा को समझ आता है तो बच्चा अगर ज्यादा रोता है तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए।
4: अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है तो कुछ बच्चे तो उसके पास ओनली वे ऑफ एक्सप्रेशन इज रोना। अगर उसको कोई भी दिक्कत होगी वो सिर्फ रोएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल
4: है ना
0: बिल्कुल।
4: वो कॉमन चीजें होती हैं सबसे पहले
0: मतलब कोई रीजन कोई कारण मतलब जिससे पता
4: तो हम थोड़ा सा सबसे पहले ट्राई करते हैं कि फीड करा के देखते हैं। मोस्टली बच्चों में क्या होता है वो भूखे होते हैं इस वजह से वो रो रहे होते हैं। हमने फीड करा के शांत हो जाते हैं इट्स गुड। कुछ कुछ बच्चों में क्या होता है अगर वो फीड भी नहीं कर रहे होते हैं तो एक नोज ब्लॉक बहुत कॉमन चीज होती है। मतलब मैंने जितने भी मैं पेशेंट्स देखता हूँ तो वन ऑफ द नेक्स्ट पेशेंट सब में किसी न किसी को नोज ब्लॉक बहुत कॉमन होता है। सिंपल अब बेबी की नोज गंदी है वो क्लीन तो कर पाएगा नहीं तो उसके लिए है कि हम कुछ मेडिकेशन या फिर नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स होती हैं उसको हम डालते हैं बेबी की नोज क्लियर हो जाती है तो वो इजिली फीड कर पाते हैं शांत हो जाती है ठीक है। कुछ बच्चे लाइक अगर हमें देखना है कि अगर एक्सेसिवली क्राई कर रहा है तो उसमें डायपर तो वेट नहीं है। कॉमन चीजें हमें देखनी है। कभी कभी हम मिस कर देते हैं कि बच्चे का डायपर गीला है वो उसको इरिटेट कर रहा होता है और बच्चा रो रहा होता है।
0: बिल्कुल बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब आपने बताया। नवजात में जो बुखार है वो कितना खतरनाक होता है छोटे बच्चों में
4: ज्यादा खतरनाक पहले कहें तो हमें उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने की इतनी कैपेसिटी नहीं होती तो इसलिए ही आप देखेंगे कि कहीं पे भी आपने अगर नर्सरी देखी होगी तो उसमें हर बच्चा यूजुअली वार्मर के नीचे लेटा होता है मतलब कि उसको कॉन्स्टेंटली हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं ठीक है जो इसलिए उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता है
0: ठीक है बहुत
4: उनमें ठंडे होने का रिस्क ज्यादा होता
0: जी,
4: है ठीक है। तो हमें मैं यही बोलता हूँ सब पेरेंट्स को कि कि जितने आप कपड़े पहन रहे हैं उससे एक लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखें, बच्चों को कवर करके रखें। पेरेंट्स का सवाल होता है कि सर एसी चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, अब इतनी गर्मी है। मैं यही बोलता हूँ कि ठीक है आप एसी चला सकते हैं, बट टेम्परेचर आप रूम का 25-27 डिग्री मेंटेन करके रखो, डायरेक्टली पंखे के नीचे नहीं लेटाओ बच्चों को, बच्चों को अपने से लेयर एक्स्ट्रा पहना के रखो, ठीक है। और दूसरा चीज आती है, बच्चे का टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से चेक करने की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथ से भी छू के बच्चे के हाथों पैर देख सकते हैं कि अगर वो ठंडे हैं तो हम एक्स्ट्रा कवर पहना रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चा बहुत ज्यादा पसीने आ रहे हैं कुछ है तो हमें कपड़े कम कर देने हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, जो जन्म लेते हैं बच्चे उन्हें जन्म की कितनी देर बाद उनको नहलाना चाहिए और उनको कब नहलाना चाहिए? बेसिकली नहीं पता होता है, जो न्यू पेरेंट्स होते हैं तो आजकल लाइफस्टाइल इतना बिजी है, सुपर फास्ट है भाई, बहुत सारी चीजों से जो पेरेंट्स नहीं होते हैं रूबरू, तो मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ तो डॉक्टर साहब,
4: अगर बेबी का वेट 2 kg से ज्यादा है
0: जी,
4: मतलब यूजुअली हमारा 2 kg से ज्यादा था मतलब ऑलमोस्ट पूरे समय पे पैदा हुआ है,
0: हाँ जी हाँ जी,
4: ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जब बच्चे की जो कॉर्ड होती है अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम आम भाषा में बच्चे की नाल बोलते हैं या नाभि बोलते हैं,
0: हाँ जी हाँ जी,
4: जब वो अलग हो जाती है उसके बाद ही बच्चे को नहलाना चाहिए, ठीक है। और अगर किसी बच्चा जो समय से पहले पैदा हुआ है, वजन कम है जिनका, जैसे 1.5 kg मतलब 1.5 किलो 1.25 किलो इस टाइप के वजन है, जितना भी है, तो जब बच्चे का वजन 2 किलो या उससे ज्यादा हो जाए हमें उसके बाद नहलाना चाहिए बच्चों को।
0: छोटे बच्चों के लिए, जो छोटे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनके लिए टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है, कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार पेरेंट्स लगवाने से डरते हैं आज भी ग्रामीण इलाकों में कि बच्चे को बुखार आ जाएगा, बच्चा रोने लगेगा, तो ये बहुत सारे ना लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, टीकाकरण नहीं करवाते हैं, तो ये कितना जरूरी है डॉक्टर साहब?
4: टीकाकरण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों में, क्योंकि हम इससे कई बीमारियों से बचा सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट में भी काफी सारी वैक्सीन आती है, तो हर वैक्सीन के साथ साइड इफेक्ट होते हैं, बट वैक्सीन से होने वाले फायदे कई ज्यादा हैं उन साइड इफेक्ट से। तो मैं यही कहूंगा सारे पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को सारे ही टीके लगवाएं जितने अवेलेबल हैं, उनसे एटलीस्ट बीमारियां या तो नहीं होंगी, चांसेस कम हो जाएंगे या सीवियरिटी कम हो जाएगी बीमारी की।
0: दोस्तों आप सुन रहे हैं हेलो डॉक्टर प्रोग्राम, मेरा नाम आनंद है और ये है आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आज डॉक्टर आकाश सिंघल जी हमारे साथ मौजूद है श्री साई हॉस्पिटल से, और आज हम न्यू बॉर्न के ऊपर ढेर सारी बात करें, नवजात शिशुओं को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है, जो नवजात का वजन होता है वो कितना सामान्य माना जाता है?
4: नॉर्मली कहें तो हम 2.5 केजी के अराउंड एक एवरेज बर्थ वेट होता है, ठीक है, उससे कम है अगर हम उनको लो बर्थ वेट बोलते हैं, मतलब जन्म का वजन कम है। बट जैसे जैसे वजन कम होने के कई कारण हो सकते हैं, या तो बच्चा पहले डिलीवर हो गया है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन है, मतलब उसका गर्भ के अंदर वजन ठीक से ही बढ़ा है, तो वो एक अलग चीज होती है। वजन अगर जैसे जैसे बच्चा समय से पहले होगा तो उसका स्वाभाविक है वजन भी कम होगा, तो इसके साथ सारी चीजें हमारे रिस्क बढ़ते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं न्यू बॉर्न प्री टर्म या फिर हमारे लो बर्थ या वेरी लो बर्थ 1500 ग्राम से कम वाले बच्चों में काफी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं, क्योंकि सारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स इमेच्योर है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही समझाता हूँ कि उसका अगर आप ब्रेन देखें तो ब्रेन की वेसल्स हैं वो कमजोर हैं, उनमें अगर कोई भी प्रेशर चेंज होगा तो उनमें रप्चर का रिस्क रहेगा, ब्रेन हेमरेज का रिस्क रहता है। बच्चे के लंग्स ठीक से डेवलप नहीं हुए हैं अगर, तो उनमें छोटी मशीन, जैसे हम आम भाषा में छोटी मशीन कहते हैं, जो सीपैप होता है या फिर वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है, और अगर बच्चे की गट भी हमारे अगर समय से पहले है तो वो भी कमजोर होती है, तो बच्चे कुछ बच्चे प्रीटम बच्चे या हमारे जो कम वजन वाले बच्चे हैं फीड यानी कि दूध पचाने में भी दिक्कतें हैं, ठीक है, और उनमें इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति भी कम होती है। तो ये सारी कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो समय से पहले जन्म हुए बच्चे या फिर जो काफी मतलब हमारे 1500 ग्राम 1600 ग्राम वाले ये जो बच्चे होते हैं इनमें देखी जाती है। इन बच्चों को आईसीयू की बेहद जरूरत होती है, यहाँ पे हम इनको मिनिमल हैंडलिंग अगर नहीं होती है मतलब कम से कम डिस्टर्ब करें बच्चों को, सारा काम बच्चों का क्लस्टर केयर की सारा काम जो भी करना है, डायपर चेंज करना है, फीड देनी है, ये सब हम एक साथ करें, जितना कम हम इनको हैंडल करेंगे जितनी पूरी कोशिश रहनी चाहिए कि हम इनको इन यूटर एनवायरमेंट जो कि गर्भ के अंदर का वातावरण होता है वो हमें प्रोवाइड करने की, जिससे इनकी ग्रोथ अच्छी होती है।
0: डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप आए हमारे स्टूडियो और आपने हमारे तमाम सुनने वालों को बहुत बेहतरीन जानकारी दी है और मुझे पूरी उम्मीद है ये जानकारी कहीं ना कहीं जो न्यू पेरेंट्स बनने वाले हैं उनके लिए भी बहुत कमाल की होगी और जो लोग बन चुके हैं उनके लिए भी कमाल की होगी। सो थैंक यू सो मच, वेल आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, हम आगे भी आपको आमंत्रित करते रहेंगे और आप प्लीज आते रहिएगा श्योर। और मैं जाने से पहले आपसे एक संदेश लेना चाहूंगा जो तमाम लोग आपको सुन रहे हैं, स्पेशली मॉम डैड जो अभी न्यू बनने वाले हैं और जो बन गए उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जाते जाते?
4: मैं बताना चाहूंगा कि

0: अस्पताल में दिखाना है। और एक और एडवाइस पेरेंट्स के लिए कि मदर्स को अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है बच्चे की केयर करते टाइम, क्योंकि अगर मदर की हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मदर का मिल्क आउटपुट कम होगा, वो बेबी का ठीक से ध्यान नहीं रख पाएंगी तो वो ठीक नहीं है। तो मदर्स को भी अपना ध्यान रखें। और एडवाइस रहेगी पेरेंट्स के लिए कि आजकल इंटरनेट के जमाने में सिर्फ इंटरनेट पे ही भरोसा ना करें,
1: क्योंकि
0: अगर कोई भी दिक्कत लगती है आप अपने नजदीकी डॉक्टर से डिस्कस करें और अपनी उनके ओपिनियन को ही माने, क्योंकि नेट पे तो अगर खोलेंगे तो कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद डरेंगे ही और कोई फायदा नहीं होगा। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और उनकी एडवाइस को माने।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर आकाश जी, आप आए, बहुत बहुत थैंक यू। और एफएम मुरादाबाद आरजे आनंद आपका शुक्रिया करता है, उम्मीद करता हूँ हम आगे भी ऐसे मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू। सुनते रहिए आप एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई सीरीज में किसी और नए एक्सपर्ट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपकी दोस्त प्राची। और आज हम बात करेंगे हमारे मुरादाबाद की महान क्रांतिकारी संत सूफी अम्बा प्रसाद के बारे में। दोस्तों, कई बार इतिहास की किताबों में कुछ नाम बड़ी अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में बस तो जाते हैं लेकिन किताबों के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक ऐसी कहानी जिसमें ना तलवारों की चमक है ना युद्ध के मैदान का शोर, लेकिन फिर भी इस कहानी में इतना साहस है कि अंग्रेजी हुकूमत तक डर गई थी। यह कहानी है मुरादाबाद की धरती पर जन्मे महान क्रांतिकारी और पत्रकार सूफी अम्बा प्रसाद की। दोस्तों, साल था 1858। 1857 की क्रांति का तूफान तो अभी अभी गुजरा ही था, देश का माहौल बदल चुका था, अंग्रेज पहले से ज्यादा सतर्क हो गए थे और भारतीयों के मन में आजादी की चिंगारी पहले से ज्यादा तेज जल रही थी। इसी दौर में मुरादाबाद की धरती पर एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया, किसे पता था कि यह बच्चा बड़ा होकर अंग्रेजी साम्राज्य की नींद उड़ा देगा। कहते हैं कि बचपन से ही अम्बा प्रसाद का स्वभाव अलग था, उन्हें अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं था। जब कोई गलत बात होती तो वे सवाल जरूर पूछते और शायद यही सवाल पूछने की आदत उनकी आगे चलकर सबसे बड़ी ताकत बनी। समय बीतता गया, बच्चा जवान हुआ, लेकिन उसने नौकरी, आराम और सुरक्षित जीवन का रास्ता नहीं चुना, उसने चुना संघर्ष का रास्ता। और दोस्तों, यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें इतिहास की महान क्रांतिकारियों की कतार में खड़ा कर दिया। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण से युवक ने अपनी कलम हथियार बनाया और अंग्रेजों के खिलाफ ऐसा संघर्ष छेड़ा कि उसकी गूंज देश की सीमाओं के पार सुनाई दी। लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक खूबसूरत संगीत। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति और आज हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद की धरती पर जन्मे उस क्रांतिकारी की जिसने बिना बंदूक उठाए अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। पिछले लिंक में हमने जाना कि कैसे एक जिज्ञासु और साहसी बालक बड़ा होकर देशभक्ति के रास्ते पर चल पड़ा। अब कहानी आगे बढ़ती है। दोस्तों, उस दौर में अंग्रेजों के पास सेना थी, ताकत थी,

0: कानून थे और सत्ता थी, लेकिन एक चीज थी जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे और वह थी जागरूक जनता। जी हाँ दोस्तों, जागरूक जनता, क्योंकि जो जनता जाग जाती है उसे लंबे समय तक गुलाम नहीं बनाया जा सकता। सूफी अंबा प्रसाद ने इसी बात को समझ लिया था। उन्होंने सोचा कि अगर लोगों के दिलों में आजादी की लौ जलानी है तो उन्हें सच बताना होगा, और सच बताने के लिए उन्होंने चुना पत्रकारिता का रास्ता। आज हम अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं और अपनी बात खुलकर कह सकते हैं, लेकिन उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक पंक्ति लिखना भी बहुत बड़ा जोखिम था। फिर भी सूफी अंबा प्रसाद पीछे नहीं हटे, उन्होंने लेख लिखने शुरू किए, ऐसे लेख जो लोगों को सच में सोचने पर मजबूर कर देते थे, ऐसे लेख जो बताते थे कि गुलामी केवल शरीर की नहीं होती, विचारों की भी होती है। और धीरे धीरे उनकी लेखनी लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। लोग उनके विचार पढ़ते, उन्हें सुनते और अपने भीतर बदलाव महसूस करते। लेकिन दोस्तों, जहां जनता उन्हें पसंद करने लगी थी, वहीं अंग्रेजी सरकार बेचैन हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आने लगा था कि यह व्यक्ति लोगों के दिलों में सवाल पैदा कर रहा है। और सवाल पूछने वाला समाज कभी भी लंबे समय तक दबाया नहीं जा सकता। कहते हैं सूफी अंबा प्रसाद अपने लेखों में सच्चाई को बहुत बेबाकी से लिखा करते थे। वे किसी से डरकर लिखने वालों में से नहीं थे और उनकी कलम बिकती नहीं थी, झुकती भी नहीं थी और कभी रुकती भी नहीं थी। यही वजह थी कि अंग्रेज अधिकारियों की नजर अब उन पर टिक चुकी थी, उनके लेखों पर निगरानी रखी जाने लगी, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। लेकिन शायद अंग्रेज ये नहीं जानते थे कि जिन लोगों के दिलों में देश बसता है उन्हें डराकर चुप नहीं कराया जा सकता। दोस्तों, इतिहास हमें बताता है कि हर क्रांति की शुरुआत किसी न किसी विचार से होती है, और सूफी अंबा प्रसाद उन्हीं विचारों के योद्धा थे। वे लोगों से कहते थे कि आजादी केवल सपना नहीं है, अगर हम एकजुट हो जाएं तो यह हकीकत बन सकती है। उनकी बातें युवाओं के दिलों तक पहुंचने लगी। छात्र, बुद्धिजीवी और जागरूक नागरिक उनके विचारों से प्रभावित होने लगे। लेकिन अब संघर्ष का रास्ता और कठिन होने वाला था, क्योंकि अंग्रेजी सरकार ने तय कर लिया था कि इस आवाज को किसी भी कीमत पर दबाना है। आगे की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सूफी अंबा प्रसाद को जेलों, मुकदमों और सरकारी दमन का सामना करना पड़ा, और कैसे हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बना दिया। लेकिन फिलहाल सोचिएगा जरूर, क्या एक कलम सचमुच किसी साम्राज्य को चुनौती दे सकती है? इतिहास में आपको इसका जवाब मिलेगा हाँ, और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण है सूफी अंबा प्रसाद। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची और आप सुन रहे हैं हमारी विशेष प्रस्तुति। चलिए अब सुनते हैं एक शानदार गीत, और गीत के बाद कहानी का अगला अध्याय लेकर हम फिर लौटेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। पिछले लिंक में हमने जाना कि कैसे उनकी कलम लोगों के दिलों में आजादी की लौ जला रही थी, और इसी सरकार उनकी बढ़ती लोकप्रियता से परेशान हो चुकी थी। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां एक इंसानों के विचारों की अगली परीक्षा शुरू होती है। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब भी किसी ने सच बोला है तो सत्ता ने उसे रोकने की कोशिश की है। सूफी अंबा प्रसाद के साथ भी यही हुआ। उनके लेख, उनके भाषण और उनकी बेबाक सोच अंग्रेजी हुकूमत को चुभने लगी। अंग्रेज अधिकारियों को लगने लगा था कि अगर इस व्यक्ति को नहीं रोका गया तो यह हजारों लोगों को जागृत कर देगा। और फिर शुरू हुआ दबाव, पूछताछ, निगरानी और मुकदमों का सिलसिला। लेकिन सोचिए, जिस इंसान ने देश की आजादी को अपना लक्ष्य बना लिया हो, क्या उसी जेल की सलाखें डरा सकती थी? बिल्कुल नहीं। सूफी अंबर प्रसाद ने हर मुश्किल का सामना डट कर किया। उनके लिए जेल कोई हार नहीं थी, वह थे उनके संघर्षों का एक नया अध्याय थी। कहते हैं कि कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की गई, कई बार दबाव डाला गया कि वे अपने विचार बदल लें, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में बता दिया कि सच्चाई का रास्ता सच्चाई को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, यह बात हमें समझाती है, बहादुरी केवल युद्ध के मैदान में नहीं दिखाई जाती। कभी कभी बहादुरी का मतलब होता है अकेले खड़े रहना जब पूरी दुनिया आपको झुकाने की कोशिश कर रही हो। सूफी अंबा प्रसाद ने यही किया। उन्होंने अपने विचारों को कभी नहीं बेचा, उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, और यही वजह थी कि लोग उन्हें केवल पत्रकार नहीं बल्कि एक सच्चा देशभक्त मानने लगे। धीरे धीरे उनकी पहचान पूरे उत्तर भारत में फैलने लगी। लोग उनके लेखों का इंतजार करते, युवा उनके विचारों से प्रेरणा लेते, और अंग्रेजी सरकारों की चिंता बढ़ती जाती। दोस्तों, किसी भी साम्राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा हथियार नहीं होता, सबसे बड़ा खतरा होता है जागरूक नागरिक, क्योंकि जागरूक लोग सवाल पूछते हैं और सवाल ही बदलाव की शुरुआत करते हैं। सूफी अंबा प्रसाद ने लोगों को यही ताकत दी, उन्होंने उन्हें सोचने की ताकत दी, उन्होंने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया, और शायद यही कारण था कि अंग्रेज उन्हें एक साधारण लेखक नहीं बल्कि एक खतरनाक क्रांतिकारी मानते थे। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई। अब उनका संघर्ष भारत की सीमाओं से बाहर जाने वाला था। आने वाले समय में परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। लेकिन क्या वे चुप बैठे? क्या उन्होंने संघर्ष छोड़ दिया? बिल्कुल नहीं। उनकी लड़ाई अब और बड़े स्तर पर लड़ी जाने वाली थी। अगले लिंक में हम जानेंगे कि कैसे सूफी अंबा प्रसाद ने विदेशी धरती पर रहकर भी भारत की आजादी के लिए मशाल को जलाए रखा, और कैसे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने लगा। फिलहाल एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रही हूँ। अगर आपके सामने सच बोलने और सुरक्षित रहने में से एक विकल्प चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? सोचिएगा जरूर। मैं हूँ आपकी अपनी दोस्त प्राची, और आप सुन रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति। अब वक्त है एक शानदार गीत का, और गीत के बाद लौटेंगे और सूफी अंबा प्रसाद की जिंदगी के सबसे रोमांचक अध्याय के बारे में भी हम बात करेंगे।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में, और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी को बताया कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं, और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले यह बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, कौन बोल रहा है? मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ। राजेश कुमार, आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है।
2: क्या?
1: मैंने तो कुछ नहीं किया साहब। आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
2: मैं क्या करूँ साहब?
1: आपकी जाँच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
2: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
1: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट, ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोता, और डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें। उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहे, जागरूक रहे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
4: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
5: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
4: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और साथियों आज सुन पाप का अपना पसंदीदा कार्यक्रम, कार्यक्रम का नाम है महिला मंच। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आए तो अपने सपनों से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों आज की हमारी प्रेरणादायक शख्सियत है सुधा चंद्र, एक बेहतरीन शास्त्रीय नृत्यांगना, प्रतिभाशाली अभिनेत्री, हौसले की मिसाल। उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके भविष्य को पूरी तरह बदल दिया, लेकिन उन्होंने अपनी पहचान को उस मुश्किल तक सीमित नहीं होने दिया। आज हम उनकी जिंदगी के उन 25वें पड़ाव को जानेंगे जो हमें कॉन्फिडेंस, धैर्य और लगातार कोशिश करने की प्रेरणा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सुधा चंद्र जी की इंस्पिरेशनल जर्नी। हाय रीना, हाउ आर यू, कैसे हैं आप?
7: मैं बहुत बढ़िया हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो?
6: आई एम गॉर्जियस। तो आगे आप क्या कहना चाहती हैं सुधा मैम के बारे में?
7: किसी भी इंसान की कहानी समझने के लिए उसके शुरुआती जीवन को जानना जरूरी होता है। सुधा चंद्र का जन्म यानी की 1965 में मुंबई में हुआ था। उनका परिवार तमिल जन्मभूमि से। बचपन से ही सुधा का झुकाव कला और नृत्य की तरफ था। धीरे धीरे नृत्य करके जीवन का एक अहम हिस्सा बना लिया। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह लड़की एक दिन अपनी जिंदगी के संघर्ष को पार करके लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी। महिला मंच से आज की सीख है, बच्चों की रुचि को पहचानिए और उसे अपनी प्रतिभा निखारने का मौका दीजिए। सुधा चंद्र की जिंदगी में नृत्य सिर्फ एक शौक नहीं था बल्कि उनके व्यक्तित्व का अहम हिस्सा था। उन्होंने कम उम्र में ही शास्त्रीय नृत्य का अभ्यास शुरू किया था और भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा को निखारा। दोस्तों किसी भी कला में महारत हासिल करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, उसके साथ चली अनुशासन, धैर्य और लगातार अभ्यास, यही गुण सुधा की यात्रा में भी नजर आते हैं। महिला मंच की सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आपके अंदर भी कोई ना कोई खास हुनर जरूर है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने और समय देने की। याद रखिए आपका हुनर आपकी पहचान बन सकता है।
6: परिवार के साथ और सपनों की उड़ान। दोस्तों जब किसी के सपनों को परिवार का साथ मिलता है ना तो उसका कॉन्फिडेंस और मजबूत हो जाता है। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में भी उनके माता पिता और परिवार का सहयोग अहम रहा। उनकी नृत्य यात्रा में परिवार ने उनका साथ दिया और मुश्किल समय में भी उन्हें आगे बढ़ने की ताकत मिली। अक्सर महिलाएं परिवार के हर सदस्य के सपने पूरे करने में जुटी रहती हैं, लेकिन परिवार की भी जिम्मेदारियां हैं कि वह महिलाओं के सपनों को समझें, उनका सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें। आज का सवाल हमारे श्रोताओं से है, क्या आपके घर में भी हर सदस्य को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलता है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। दोस्तों वर्ष 1981 में सुधा चंद्र जी की जिंदगी में एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। तमिलनाडु में यात्रा के दौरान हुए हादसे में उनके दाएं पैर में गंभीर चोट आई। बाद में संक्रमण के कारण डॉक्टरों को उनका दाहिना पैर काटना पड़ा। उस समय सुधा जी की उम्र बहुत कम थी। उनके सामने भविष्य को लेकर आए कई सवाल थे। नृत्य जो उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, अब उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका था। लेकिन दोस्तों, जीवन की कोई एक घटना हमारी पूरी पहचान तय नहीं करती। मुश्किल समय में खुद को संभालना और आगे की राह तलाशना भी बहुत बड़ी हिम्मत की बात है।
7: सुधा चंद्र के जिंदगी में दुर्घटना के बाद का समय बेहद चुनौतीपूर्ण था। जिस नृत्य के लिए उन्होंने मेहनत की थी, उसके भविष्य को लेकर अनिश्चितता सामने आई। लेकिन ऐसे समय में परिवार का सहयोग, उनका पूरा सपना और आगे बढ़ने की इच्छा उनके लिए महत्वपूर्ण बने। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में हमें तुरंत जवाब नहीं मिलता, यह भी समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। ऐसे में खुद को थोड़ा समय देना, अपनों से बात करना और छोटी उम्मीदों को थामे रखना बहुत जरूरी है। महिला मंच की तरफ से एक प्यारी सी बात, मुश्किल दौर आपकी जिंदगी का हिस्सा हो सकता है, पूरी कहानी नहीं। अब हम बात करते हैं जयपुर फुट से मिली नई राह। सुधा चंद्र की वापसी की कहानी में जयपुर फुट की अहम भूमिका रही। यह कृत्रिम पैर उन्होंने दोबारा चलने और आगे चलकर नृत्य का अभ्यास शुरू करने में मददगार बना। यहाँ हमें एक और जरूरी बात समझानी चाहिए यहाँ एक और जरूरी बात हमें समझनी चाहिए किसी इंसान की उपलब्धि में उसकी अपनी मेहनत के साथ साथ सही चिकित्सा सहायता और सहयोगी तकनीकी और सहयोग देने वाले लोगों का भी योगदान होता है। सुधा ने उपलब्ध सहायता को अपनी नई शुरुआत का माध्यम बनाया। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़कर रास्ता तलाशा। आज की सीख है, जब जिंदगी में कोई रास्ता बंद होता दिखाई दे तो उपलब्ध नए विकल्पों को समझिए। कभी कभी वही विकल्प नई संभावनाओं का दरवाजा खोल देता है।
6: दोस्तों, सुधा चंद्र के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वह दोबारा भरतनाट्यम कर पाएंगी। सिर्फ चलना सीखना और शास्त्रीय नृत्य करना दो अलग अलग चुनौतियाँ थी। नृत्य में ताल लय संतुलन लाभ और पैरों की बारीकी गतिविधियों का खास महत्व होता है। सुधा जी के लिए ये एक नई शुरुआत थी जिसमें धैर्य और लगातार अभ्यास की जरूरत थी। लेकिन उन्होंने अपनी कला से रिश्ता नहीं तोड़ा। उनके सफर से हमें समझ आता है कि किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी कभी पुराने तरीके छोड़कर नए तरीके सीखने पड़ते हैं। महिलाओं, हमारी विमेंस याद रखिएगा, नई शुरुआत करने के लिए हर बार सब कुछ पहले जैसा होना जरूरी नहीं होता। सपना देखना खूबसूरत होता है, लेकिन उस सपने के लिए दोबारा मेहनत शुरू करना असली चुनौती होता है। सुधा चंद्र जी के कृत्रिम पैर की मदद से नृत्य का अभ्यास फिर से शुरू किया गया। उन्होंने अपनी कला के लिए नई सिरे से मेहनत करनी पड़ी। ये आसान या तुरंत पूरा होने वाला सफर नहीं था। उनकी कहानी हमें बताती है कि कमबैक सिर्फ एक शानदार दिन का नाम नहीं है, उसके पीछे रोज की कोशिश, सीखने की इच्छा और धैर्य छिपा होता है। अगर आप भी किसी पुराने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो खुद से पूछिए, आज मैं उसके लिए एक छोटा सा कदम क्या उठा सकती हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप वो स्टेप जरूर लेंगे जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने का अवसर देता है।
7: दोस्तों, कभी भी कला को सीखने में गुरु का मार्गदर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। सुधा चंद्र की नृत्य यात्रा में उनके नृत्य गुरु का योगदान भी अहम था। कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन हमें अपनी क्षमताओं को नए नजरिए से देखने में मदद कर सकता है। जब हम किसी काम को अकेले असंभव समझने लगते हैं, तब अनुभवी व्यक्ति हमें नए तरीके सिखा सकता है। यह बात महिलाओं के जीवन में भी लागू होती है, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई कला सीखने में संकोच मत कीजिए। याद रखिए, मदद लेना कमजोरी नहीं है, सही मार्गदर्शन के साथ मेहनत करना समझदारी है। और साथ ही साथ सुधा चंद्र के नृत्य में वापसी के लिए लंबा अभ्यास करना पड़ा। उनके जीवन के इस दौरान को समझने के लिए हमें यह याद रखना चाहिए कि बड़ी उपलब्धियां अक्सर एक दिन में नहीं मिलती। हर दिन की मेहनत शायद दूसरों को दिखाई ना दे, लेकिन वही धीरे धीरे हमारी क्षमता को मजबूत बनाती है। महिला मंच की उन सभी महिलाओं से कहना चाहूंगी जो नई पढ़ाई शुरू करना चाहती हैं, अपना काम शुरू करना चाहती हैं या किसी हुनर को सीखना चाहती है, खुद से तुरंत परफेक्ट होने की उम्मीद मत रखिए। अपने प्रयास को समय दीजिए। लगातार सीखना और जरूरत के अनुसार तरीका बदलना भी सफलता का हिस्सा होता है। और इसी के साथ हम लेंगे यहाँ पर एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद हम आप सभी के साथ कनेक्ट होते हैं और करेंगे ढेर सारी बातें। बस आप यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए महिला मंच शो में और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।

0: तो दोस्तों अभी आपने सुना ये अमेजिंग ट्रैक और आज हम बात कर रहे हैं सुधा चंद्र जी की कहानी की एंड उनके जीवन की। और दोस्तों सुधा चंद्र जी की कहानी का एक बेहद अहम पड़ाव आया वर्ष 1984 में, जब उन्होंने दो बार मंच पर भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। कल्पना कीजिए एक ऐसी कलाकारी जो दुर्घटना के बाद अपने भविष्य को लेकर अनुशिचिता से गुजरी, उसने फिर से अभ्यास किया और दर्शकों के सामने अपनी कला प्रस्तुत की। ये सिर्फ नृत्य की वापसी नहीं थी बल्कि उनकी मेहनत और लगन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। उनकी यात्रा हमें बताती है कि किसी कठिन दौर के बाद अपनी पसंद की चीज की ओर लौटना भी एक बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों आपके जीवन में कौन सा सपना है जिसे आप दोबारा मौका देना चाहते हैं? आज उस सपने के बारे में सोचकर जरूर हमें बताइएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि इंसान को कभी डर या परेशानी महसूस ही ना हो। आत्मविश्वास का अर्थ है कि हम अपनी परिस्थितियों को समझते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें। सुधा चंद्र जी की जिंदगी में हमें यही बात दिखाई देती है कि उन्होंने एक बड़ी चुनौती के बाद अपनी कला को फिर से अपनाया और नृत्य की दुनिया में अपनी पहचान बनाई। महिलाओं को अक्सर दूसरों की राय, आलोचना और अपेक्षाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर फैसले में दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करते रहना जरूरी नहीं है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, सही जानकारी जुटाइए और सोच समझकर कदम उठाइए। आपका आत्मविश्वास आपकी आगे की यात्रा को मजबूत बना सकता है।
1: सुधा चंद्र की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक रही कि उनकी कहानी पर फिल्म बनाई गई। सुधा चंद्र की जिंदगी इतनी प्रेरणादायक रही कि उनकी कहानी पर फिल्म भी बनाई गई। तेलुगु फिल्म मयूरी वर्ष 1984 में आई और उनकी जीवन यात्रा से प्रेरित थी। बाद में हिंदी दर्शकों के लिए नाचे मयूरी नाम से भी यह कहानी सामने आई। इस फिल्म ने बहुत से लोगों तक उनकी मेहनत और नृत्य में वापसी की कहानी पहुंचाई। कला की यही खूबसूरती है, एक इंसान की निजी अनुभव भी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आपकी जिंदगी में भी कोई अनुभव, कोई सीख या कोई छोटी उपलब्धि ऐसी हो सकती है जो किसी दूसरे इंसान को हिम्मत दे। अपने अनुभव को साझा करने से मत झिझकिए। और सुधा चंद्र की कहानी सिर्फ एक कलाकार की वापसी तक सीमित नहीं रही, उनके जीवन यात्रा पर आधारित फिल्म मयूरी को भी पहचान मिली और सुधा को इस फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में विशेष उल्लेख यानी स्पेशल मेंशन प्राप्त हुआ। यही उपलब्धि दिखाती है कि किसी कठिन अनुभव को कला और मेहनत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिए, पुरस्कार मिलना उपलब्धि का एक हिस्सा है, उसके पीछे जो तैयारी, समर्पण और लगातार काम करने की आदत होती है वह भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आज की सीख है, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए। पहचान मिलने में समय लग सकता है, लेकिन सीखने और बेहतर बनने की प्रक्रिया जारी रखिए।
0: तो दोस्तों सुधा चंद्र जी की प्रतिभा सिर्फ शास्त्रीय नृत्य तक सीमित नहीं रही है, उन्होंने अभिनय की दुनिया में भी अपनी पहचान बनाई और हिंदी तथा दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। भारत में उन्होंने टेलीविजन पर भी कई यादगार भूमिकाएं निभाई। दर्शकों ने उन्हें अलग अलग किरदारों में देखा है और उनकी अभिनय क्षमता को पहचाना। उनकी यात्रा से एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है, हमारी एक पहचान हो सकती है लेकिन हमारी क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा व्यापक हो सकती हैं। अगर आप कोई नया हुनर सीखना चाहती हैं या अपने काम के क्षेत्र में बदलाव करना चाहती हैं, तो अपनी रुचि को जानने का मौका खुद को दीजिए। नई दिशा चुनना भी आगे बढ़ने का एक तरीका है। और दोस्तों सुधा चंद्र जी ने टेलीविजन की दुनिया में भी अपनी खास जगह बनाई। उन्होंने कई धारावाहिकों में काम किया और अलग अलग तरह के किरदार निभाए। कहीं किसी रोज और नागिन जैसे धारावाहिकों में उनके अभिनय को दर्शकों ने याद रखा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि कलाकार समय के साथ अपनी प्रतिभा को अलग अलग माध्यमों में इस्तेमाल कर सकता है। नृत्य से शुरुआत करने वाली सुधा ने अभिनय में भी अपनी अलग पहचान बनाई। महिला मंच की तरफ से सभी महिलाओं के लिए संदेश है, आपका पहला काम या पहला अवसर ही आपकी पूरी क्षमता की सीमा नहीं है। सीखते रहिए, नए अवसरों को पहचानिए और अपनी प्रतिभा को विकसित प्रेरित करती रहिए। जब कोई इंसान कुछ अलग करता है ना दोस्तों, तो उसे हर बार तारीफ ही मिले ये जरूरी नहीं, कभी कभी आलोचनाएं भी सुननी पड़ती हैं। सुधा चंद्र जी की यात्रा हमें ये सोचने का मौका देती है कि अपनी पहचान बनाने के लिए सिर्फ दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं कि हर आलोचना को गलत मान लिया जाए। अच्छी सलाह से सीखना चाहिए, लेकिन निराश करने वाली

0: इससे हमें सीख मिलती है कि सफलता की राह में सहयोग को पहचानना और उसके लिए आभार व्यक्त करना जरूरी है। महिलाएं अक्सर परिवार में बहुत बहुत कुछ करती हैं, लेकिन उसकी मेहनत को शब्दों में सराहना भी जरूरी है। अगर आपके घर में कोई महिला रोज आपकी मदद करती है तो आप उसे धन्यवाद जरूर कहिए। कभी कभी सम्मान को दो शब्द किसी का पूरा दिन खूबसूरत बना देती हैं। सुधा चंद्र की जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू सिर्फ उनकी प्रसिद्धि नहीं है, उनकी कहानी उन लोगों तक की पहुंच है जो किसी कठिन परिस्थितियों के बाद अपने सपनों को लेकर अनिश्चित महसूस करते हैं। उन्होंने दिखाया कि शारीरिक चुनौती आने के बाद भी कला और प्रतिभा के लिए नए रास्ते खोजे जा सकते हैं। इसके लिए मेहनत के साथ उचित सहायता और अवसर भी जरूरी है। यही कहानी हमें किसी से अपनी तुलना करने के लिए नहीं बल्कि अपनी परिस्थितियों में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेने के लिए सुननी चाहिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी की सफलता की नकल करने के बजाय अपनी रुचि, जरूरत और क्षमता के अनुसार अपना रास्ता बनाइए। यही असली मोटिवेशन है। और इसी के साथ हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक और फिर लौट कर आते हैं।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है? शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
5: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
4: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90-276-111-01।
6: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 और मैं

0: दोस्तों देखिए, आपने सुना ये खूबसूरत सा गाना और हम लौट कर आ चुके हैं। खुशी एंड रीना आपके साथ हैं, आपकी दोपहर को खूबसूरत तो बना ही रहे हैं। लेकिन साथियों देखिए, कुछ प्रेरणादायक स्टोरीज कहानियाँ होती है ना, जो हमें लाइफ में आगे कहीं ना कहीं मोटिवेट करती है। और आज ऐसी ही कहानी हम आपको सुना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नृत्यांगना है, अभिनेत्री है, सुधा चंद्र जी की कहानी से महिलाओं के लिए खास सीख मिलती है। अपने जीवन की परिस्थितियों को समझिए, लेकिन अपने सपनों के बारे में सोचना बंद मत कीजिए। हो सकता है आपके सामने परिवार की जिम्मेदारियां हो, पढ़ाई में रुकावट हो, आर्थिक चुनौतियां हो, या खुद पर भरोसा कम हो गया हो। हर परिस्थिति का समाधान अलग होगा और जरूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता लेना भी जरूरी है। लेकिन अपनी इच्छाओं को हमेशा के लिए अनदेखा कर देना ही एकमात्र विकल्प नहीं है। छोटे कदम से शुरुआत कीजिए, किसी कोर्स के बारे में जानिए, अपने हुनर निखारिए या अपने लक्ष्य के लिए योजना बनाइए। आपको पूरी मंजिल आज ही तय नहीं करनी है, पहला कदम भी मायने रखता है। आप आगे स्टेप तो बढ़ाइए, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। एक दिन में तो सारे काम नहीं हो जाने हैं, टाइम लगता है। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहिए और यकीन मानिए, जब आपको खुद पर भरोसा होगा ना और आप अपनी मेहनत को पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, तो आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। और एक महिला की पहचान सिर्फ उसके रिश्तों से नहीं होती, वह अपनी रुचियों, विचारों, हुनर और उपलब्धियों से भी अपनी अलग पहचान बना सकती है। सुधा चंद्र को लोग एक नृत्यांगना और अभिनेत्री के रूप में जानते हैं। उनकी यात्रा बताती है कि अपनी प्रतिभा को विकसित करने से इंसान अपने जीवन में एक नए अवसर बना सकता है। परिवार और रिश्ते महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने लिए सीखने और आगे बढ़ने का निकालना भी जरूरी है। महिला मंच पर आज मैं हर श्रोता से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। आपकी ऐसी कौन सी इच्छा है जिसे आप काफी समय से पूरा करना चाहती हैं? हो सकता है आज उसे फिर से याद करना ही आपकी नई शुरुआत बन जाए।
1: नई शुरुआत करने के लिए कोई एक तय उम्र नहीं होती। किसी के लिए यह शुरुआत बचपन में होती है, किसी के लिए युवावस्था में और किसी के लिए जीवन के बाद पड़ाव पर। सुधा चंद्र की कहानी हमें यह समझाने में मदद करती है कि परिस्थितियों में बदलाव आने के बाद भी नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं। अगर आप सिलाई सीखना चाहती हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहती हैं, कोई छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं या अपनी पसंद की कला को समय देना चाहती है, तो अपनी परिस्थितियों के अनुसार शुरुआत कीजिए। हर महिला की जिम्मेदारियां और अवसर अलग होते हैं, इसीलिए खुद की तुलना दूसरों से करने के बजाय अपनी प्रगति पर ध्यान दीजिए। सीखने का जज्बा आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। अब हम जानेंगे सुधा चंद्र की इंस्पिरेशनल जर्नी से आज हम 5 बातें सीख सकते। अपने हुनर को पहचानिए, मुश्किल समय में सहयोग लेने से मत डरिए, अपने लक्ष्य के लिए धैर्य और लगातार अभ्यास जारी रखिए, दूसरों की आलोचना को अपनी पूरी पहचान मत बनने दीजिए, परिस्थितियां बदले तो नए रास्ते तलाशने के लिए तैयार रहिए। याद रखिए, मोटिवेशनल सिर्फ अच्छी बातें सुनने से नहीं आता। जब हम उन बातों को अपने जीवन में छोटे छोटे कदमों के रूप में अपनाते हैं, तब बदलाव की शुरुआत होती है। तो आज आप कौन सा एक कदम उठाने वाली हैं? खुद से ये सवाल जरूर पूछिए।
0: तो दोस्तों, महिला मंच में हमने सुधा चंद्र जी की जिंदगी के कई पड़ावों को जाना। उनका नृत्य के प्रति प्रेम, कठिन समय, जयपुर फुट की मदद से अभ्यास की वापसी और एक सफल अभिनेत्री के रूप में उनकी पहचान। उनकी कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि हर मुश्किल आसानी से दूर हो जाएगी, बल्कि ये याद दिलाती है कि चुनौतियों के बीच भी सहायता, मेहनत और नए रास्तों की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश की जा सकती है। और मेरे प्यारे श्रोताओं, हो सकता है कि आपकी जिंदगी की कहानी कभी किसी किताब में ना लिखी गई हो, लेकिन आपकी मेहनत और आपके अनुभव भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं फिर मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और श्रोताओं, खुशी को दीजिए जाने की अनुमति। नमस्कार।
2: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून आर्जेरीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता हो और समय की बात करूं तो 3:00 हमारे पास यानी कि 14 मिनट हो चुके हैं और आप सभी आर्जेरीना के साथ कनेक्ट हो गए हैं। हेलो फरमाइश शो में और आप सभी से विनम्र विनती है, देखिए आप सबसे बार बार बोलना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता कि जिस आपने इस वीक कॉल किया है मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, तो आप सब प्लीज दूसरों को भी मौका दीजिए ताकि वो भी अपनी फरमाइश पूरी कर सके। क्योंकि ऐसा होता है ना सर कि देखिए आप बहुत बार कॉल करते हैं और आपका कॉल अटेंड नहीं हो पाता है, तो उनको जरा मौका दीजिए, उनकी भी फरमाइश बहुत अच्छी है। तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने आप सभी ने इस वीक कॉल किया है थोड़ा सा आप शांति पेशेंस रखिए, आपको भी मंडे ट्यूजडे में आपको नंबर मिलेगा। बाकी जिनको नहीं नंबर मिला उनको मौका दीजिए कॉल करने के लिए और आप अपना शो एंजॉय कर सकते हैं। जो भी गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल हम बैठे हैं यहाँ पर आपके गाने प्ले करने के लिए, बेफिक्र होकर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, फर्स्ट कॉलर, तो आइए उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी
1: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम।
0: जी गुड आफ्टरनून, बताइए कैसे हैं
1: आप?
0: जी सर बताइए, और सब बढ़िया है फैमिली में?
1: हाँ मैम सब बढ़िया है, बैठे हैं हवा में बैठे, ठंडी हवा चल रही है।
0: अच्छा ठंडी ठंडी, कल बारिश का असर दिखा रहा है क्या?
1: हाँ, कल बारिश बहुत तेज हुई थी मगर ज्यादा देर नहीं हुई थी, हुई बहुत तेज थी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप सर?
1: शेरपुर मासी।
0: अच्छा अच्छा, ये किधर पड़ता है सर?
1: ये मुरादाबाद से 25।
0: अच्छा 25 किलोमीटर। जी तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मूवी का नाम है चीता और फिल्म का नाम वो गाना है बिन तेरा सजना सवरना।
0: चीता, ये तेरा सजना सवरना, ठीक है सर? हेलो,
1: हाँ ये
0: ठीक है सर।
1: नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रहा है तो आवाज कट रही होगी।
0: ओके ओके,
1: आपकी आवाज क्लियर आ रही।
0: हाँ जी हाँ जी, चलिए सर मैं आपको ये गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: ओके मैम, थैंक यू।
0: ओके तो चलिए श्रोताओं, ये वाला हम गाना एंजॉय करते हैं और बाकी आपसे यही कहना चाहेंगे कि कॉल करते रहिए और जिन्होंने मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे कॉल करा है कृपया करके दूसरों को भी मौका दीजिए।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है। फरमाइश शो में आप आर्जोरीना के साथ कनेक्ट है और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। और फिलहाल इसी गाने के साथ मेरे साथ अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी में हैं तो हमने कहा देखिए आपसे हम ज्यादा नहीं करवाएंगे, बस आपको हम यूं ही कॉल पे अटेंड लाइव ले लेते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप?
0: नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं।
1: जी अल्लाह करम, सब ठीक है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, अच्छा ही रहना चाहिए। बस आप ये बताइए कि नाम क्या है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं मुरादाबाद, मेरा नाम आसिम।
0: ओके, तो क्या करते हैं सर आप वैसे।
1: ऐसे काम है, थोड़ा तो पासपोर्ट नेम का करवा
0: अच्छा, तो बताइए सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: कब हम जमा होंगे, जाने
0: जब हम
1: कहाँ होंगे।
0: घर होएंगे सर घर होंगे या फिर जॉब के चक्कर में अपने घर से बेघर होंगे
1: लोगों की मोहब्बतें बिछड़ी हुई होंगी उनको याद आ जाएगी गाना सुन के।
0: जो घर से दूर रहते हैं उनको भी याद ही आ जाएंगे शायद
1: नहीं, मोहब्बत तो ये नहीं है कि हाँ एक से होता है, हर किसी से इंसान मोहब्बत करता है, कोई ना कोई रीजन रहता है किसी ना किसी के साथ।
0: जी, बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने, रीजन तो रहता ही रहता ही है।
1: ठीक है मैम, आप गाना सुनवाती है।
0: ठीक है सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है सर, कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: तो चलिए श्रोताओं, गाना सुनते हैं। जब हम जवां होंगे, जाने कहाँ होंगे, ये वाला हम गाना सुनते हैं। और बाकी आपसे कहते रहेंगे कि कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896 8296।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: सारा काम हो गया, बाद में पता चला सब।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
3: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स।
6: हाय दीनानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट टू शेरवानी।

0: जी गर्ल्ड वाली आफ्टरनून है आज रीना के साथ कनेक्ट श्रोता और समय की बात करूं तो 3:56 हो चुके हैं और आप आज रीना के साथ फरमाइश शो में कनेक्ट हैं और आप सभी से यही कहेंगे कि कॉल करते रहिए। नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करके आप अपना फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे साथ जो अगले कॉलर कनेक्ट होते हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो,
1: हेलो। नमस्कार।
0: नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: अरे साहब, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं और अब ये गाना जो पुराने वक्त जो ओल्ड इज गोल्ड जो गाने होते हैं ना, इसमें कसीब इसकी होती है कि आदमी खुश हो जाता है।
0: ये तो है सर, लेकिन आप अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए, डबल आवाज आ रही है।
1: अच्छा ठीक है,

0: ये
1: अच्छा
0: दादा
1: अच्छा
0: जी खुशी का ये इसी पर जो आपने प्रभाव दिया था इसी फिल्म में गाला था वो आप जाते तो बता तो वो आपने प्ले भी करा वो गाना भी इसी फिल्म में ही है।
1: सर, गाना तो मैं प्ले करती हूँ, रह गया होगा सर
0: नहीं आप
1: किसी।
0: जाते वो फिल्म इसमें थी राजेंद्र कुमार और प्रभा देवी ये गाना उसमें बहुत भी थे आप
1: अच्छा, तो बताइए
0: थोड़ा
1: सर।
0: सा
1: ठीक है, कौन सा गाना सुनेंगे?
0: वाला गाना जो क्या मिल गया जी क्या खो गया मोहब्बत गिराओ में दिल खो गया जी
1: ठीक है
0: हम
1: जी,
0: खो गए जी तू खो गए ये वाला गाना है। थैंक
1: चलिए यही गाना हम आपको सुनवाते हैं। ठीक है,
0: यू
1: चलिए सर, चलिए, क्या मिल गया क्या खो गया, ये वाला हम आपको गाना सुनवाते हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, बड़ा ही खूबसूरत गाना। फिलहाल आपसे भी यही कहना, बस तो जो सुनने में अच्छा लगे आप बिल्कुल उस गाने को हमारे साथ यानी कि फरमाइश कर सकते हैं और आप अपने गाने सुन सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 9823789689 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना इंजॉय कर सकते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM. सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग। यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। फरमाइश शो में आप कनेक्टिव श्रोताओ, और समय की बात करूँ तो 4:07 हो चुके हैं, यानी दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है। और आपने क्या करना है, हमें कॉल करते रहना है। नंबर है 9823789698 पर। जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल आप सुन सकते हैं कॉल करके। तो चलिए, ये वाला हम आपको गाना सुनवाते हैं जो कि बेहद झकास और बहुत ही फैंटास्टिक वाला ये गाना है। और लेकिन गाना एक मेरे पसंद का था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, हम अपने श्रोताओं को नाराज नहीं कर सकते, पहले कॉल ही अटेंड कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो।
2: हेलो,
0: सर, मेरी आवाज़ मुझे आ रही है तो वो रेडियो बंद
2: मैंने
0: कर लीजिए।
2: वॉल्यूम बंद कर दिया।
0: जी जी
2: आ रही
0: जी
2: आवाज?
0: नमस्कार सर,
2: नमस्कार।
0: बताइए क्या नाम है आपका?
2: मेरा मोरे हुसैन नाम है।
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद। मुरादाबाद में कहाँ से सर? मुरादाबाद तो बहुत बड़ा है।
2: अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर से। मैं
0: अच्छा जी, तो बताइए कौन सा गाना सुनेंगे आप?
2: गाना प्रेम रोग का है, ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा।
0: अच्छा, ये गलिये ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। लेकिन
2: हाँ,
0: सर दोबारा क्यों नहीं आना चाहिए बताइए? हर कोई अपने घर जाता
2: दोबारा नहीं
0: है
2: आना चाहिए।
0: क्योंकि अपने घर से बाहर जाता है, घर से दोबारा तो आ ही जाता है वापस।
2: नहीं, जो हम बता रहे हैं वो गाना आया ना इसमें, गाने में।
0: जी, ये तो गाना ही है, लेकिन सर जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपने वो आंसर नहीं दिया ना।
2: अंतर को फैमिली बैठी है ना साथ में, इसलिए नहीं दे पा रहे
0: नहीं,
2: आपको।
0: सर आंसर मेरा यही था कि जैसे मैंने बोला कि गलियों में क्यों नहीं आ सकते, तो आपको बोला सर हम जिस घर से बाहर जाते कमाने के लिए गलियां, तो अपनी जो गली होती है कुछ कभी छूट नहीं सकती है वो।
2: हाँ,
0: ये आंसर था सर हमारा।
2: अच्छा,
0: हाँ, ज्यादा नहीं सोचना है सर, दिमाग पे जोर नहीं डालना है चलिए, किसी के साथ आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
2: ये शुएब अख्तर हैं और जय सर हैं और एक नदीम खान है
0: ठीक है जी,
2: और हाँ,
0: चलिए इन्हीं के साथ आपको ये हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
2: ओके।
0: ओके जी, ओके। तो चलिए श्रोताओ, गाना सुनते हैं झकास वाला, और उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ आप सभी के साथ। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुना।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा आपने गाना एंजॉय किया है लता मंगेशकर जी की आवाज में। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना मत दोबारा, जिनके जिनकी शादी होने वाली है ना, ये गाना सुनकर वाकई में इमोशनल

0: हो जाएंगी, क्योंकि ये जो गाना है ना बिल्कुल अटैच कर जाता है इंसान को, जो इंसान ना भी रोए ना उसको भी रोना आ जाता है ऐसे ऐसे गाने सुनकर। मतलब वही है ना, एक बेटी जिस घर में पैदा होती है उस घर को, यानी कि 30 साल, 30+ एज होने के बाद, 25+ एज होने के बाद उस घर को छोड़कर दूसरे घर जाना ही पड़ता है, फिर उस घर को अपनाना पड़ता है। कितना डिफिकल्ट होता है ये परंपरा, मतलब समझ नहीं आता ये परंपरा बनाए तो बनाए किसने, कि बेटी को अपने पिता के घर छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है। बहुत हार्ट टचिंग वाला ये सिचुएशन, वो समय होता है, और वो वही समझ सकती, लड़की समझ सकती है और पेरेंट्स ही समझ सकते हैं इस सिचुएशन को। तो चलिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। फरमाइशों में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट हैं। समय की बात करूँ तो 3:18 हो चुके हैं। हेलो
1: हेलो हेलो
0: सर, रेडियो के वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: जी मैम,
0: जी बताइए, क्या नाम है?
1: मैम नमस्कार।
0: नमस्कार सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं रोहित चौधरी बोल रहा हूँ,
0: हाँ जी, कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मुरादाबाद, नया मुरादाबाद सेक्टर 5B से, शिवाजी
0: ओके सर,
1: पार्क।
0: हाँ जी हाँ जी, तो बताइए सर कौन सा गाना आपको सुनना है?
1: सर बॉर्डर फिल्म का गाना सुनवा दो,
0: हाँ, बॉर्डर फिल्म का कौन सा गाना सुनना है सर आपको?
1: संदेश से आते हैं।
0: संदेश से आते हैं,
1: हाँ जी
0: ठीक है सर, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
1: हाँ जी मैम, हमारे घर में मतलब हमारी बीवी है नेहा, दो बच्चियां हैं चार्वी और नव्या, एक भतीजा है विराज, भाई है दो, कमलजीत चौधरी, मनवी चौधरी, और उनकी बीवी है खुशी चौधरी और रश्मि चौधरी, मम्मी पापा,
0: ठीक है, ठीक
1: इन
0: है
1: सभी के
0: सर,
1: साथ और दोस्तों के साथ, सभी के साथ सुनना जाए।
0: चलिए सर, ये हम सभी के
1: मैं
0: साथ
1: पहली बार कॉल लगी है, मतलब खुशी हो रही है आपसे बात करके, थोड़ा नर्वस भी फील हो रहा है।
0: नहीं सर, देखिए जैसे आप है वैसे हम है, इसमें नर्वस
1: हाँ
0: होने
1: नहीं,
0: वाले
1: वो सही है, लेकिन ऐसा लगता है मतलब बार बार कॉल लगा रहे, कॉल नहीं लग रही है, और पहली बार कॉल लग गई तो मतलब इस वजह से मतलब थोड़ी खुशी भी हो रही है।
0: वही
1: हाँ
0: ना, खुशी के मारे ना बोला नहीं जाता ना सर कभी कभी,
1: जी हाँ जी, मैं
0: तो
1: नागरी में गया था, गाड़ी से, अभी गाड़ी लेकर था तो गाड़ी से ही कॉल लगाई थी मैंने आपको,
0: अच्छा
1: आपने
0: अच्छा
1: यहाँ आ गया।
0: तो आप पहली बार मतलब कॉल किया आपने,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: चलिए बहुत अच्छी बात है सर
1: हमारा हमारा
0: आपसे
1: मैम मोमबत्ती का काम है, एक्सपोर्ट होती है, वो बाहर जाती है, वो
0: अच्छा, मोमबत्ती
1: काम
0: की काम
1: करते
0: है
1: हैं।
0: आप,
1: हाँ जी
0: ओके। तो सर क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब
1: जी
0: दिवाली पर घर घर मोमबत्ती पहुंचाना है या फिर स्टूडियो ही पहुंचाना है?
1: नहीं स्टूडियो पहुंचाएंगे फिलहाल तो
0: क्योंकि हमें जो सुन रहे हैं वो भी आप तक कनेक्ट हो, तो बताइए कैसे कनेक्ट हो सकते हैं ताकि दिवाली के मौके पर आपके पास ग्राहक आ सके।
1: मैम, हमारा मतलब लोकल का आइटम नहीं रहता,
0: अच्छा,
1: ये बाहर
0: लोकल का
1: जाता
0: नहीं
1: है
0: रहता है,
1: सब।
0: बाहर का रहता है,
1: हाँ जी हाँ जी, एक्सपोर्ट होता है बाहर के लिए।
0: ओके ओके ओके, चलिए तो बहुत अच्छी बात है सर, आपका काम यूं ही बना रहे,
1: हाँ जी मैम,
0: और
1: आपका
0: कॉल
1: भी
0: करते
1: हमारा
0: रहिए
1: बहुत
0: सर।
1: धन्यवाद है जी मैम। दोबारा कॉल कब लगा सकते हैं, जैसे आप बोल रही थी जो भी दिवाली पर
0: वन
1: बात
0: वीक के
1: करना।
0: बाद, जैसे आपने आज सैटरडे में करा सर,
1: हाँ जी हाँ जी
0: अगली बार अगर आप मंडे ट्यूसडे वेनसडे में करते तो आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 वीक के बाद ही कॉल करना है, मतलब 7 डेज के बाद कॉल करना है,
1: जी
0: बस इतना ही ध्यान रखना है सर, और कुछ नहीं है।
1: जी मैम,
0: चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं,
1: नमस्कार
0: ठीक है? जी
1: जी।
0: नमस्कार, तो चलिए हम ये गाना सुनते हैं रोहित जी की फरमाइश पर, और आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए जो भी आप गाना सुनना चाहते हैं बिल्कुल डेफिनेटली आप गाना सुन सकते हैं हमारे पास कॉल करके, लेकिन उसके लिए 1 वीक का जो टाइम पीरियड है वो रखा जाता है, उसके बाद आप आराम से कॉल करके गाना सुन सकते हैं।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
2: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
4: हाय दयानंद जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
5: वो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है। आफ्टर ऑल उनका कहना है, दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
6: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
5: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
7: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ। हेलो फरमाइश शो में आप कनेक्ट है और समय की बात करूँ तो 3:32 हो चुके हैं, 4:32 हो चुके हैं। भैया एक घंटा मैं पहले पहुँच गई थी, यानी कि दोबारा मैं 3 बजाने वाली थी, लेकिन कभी कभी हो जाता है ना कि बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी गलतियाँ चलती रहती। फिलहाल समय 4:32 हो चुके हैं और आपने क्या करना है, अभी हमारे पास समय है तो आप हमें आराम से कॉल कर सकते हैं। नंबर है 9837896896 पर कॉल करके अपना हमारा फेवरेट वाला गाना एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। भैया इन्होंने तो कॉल ही कट कर दियो है। अब क्या ही कर सकते हैं, कॉल कट कर दिया इन्होंने, लेकिन इन्होंने जो गाना बताया था वो हम कोशिश करते हैं प्ले कर ही देते हैं। हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
8: मैं कमल सैनी बोल रहा हूँ
7: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं?
8: दिल्ली रोड गाना।
7: अच्छा जी, क्या कौन सा गाना सुन रहे हैं?
8: तेरी रब ने बना दी जोड़ी।
7: क्या काम करते हैं सर आप?
8: खेती का काम।
7: अच्छा, खेती का काम करते हैं आप।
8: तुरई भर रहे हैं खेत में।
7: तुरई
8: पैकिंग कर रहे हैं।
7: अच्छा अच्छा, पैकिंग कर रहे तू रही।
8: आजादपुर जाऊंगी।
7: अच्छा अच्छा, आजादपुर जाती है आपके यहाँ से।
8: हाँ।
7: बहुत अच्छी बात है सर, कभी स्टूडियो लेकर आ जाइए आप।
8: क्यों नहीं
7: सर, मैं छोटी मोटी मजाक कर लेती हूँ।
8: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
7: बताइए किसी का नाम लेना चाहेंगे आप? लाइव है सर आप।
8: नाम ये सुमित है, विवेक है, बॉबी है, अनमोल है।
7: अच्छा अच्छा जी, चलिए इन सभी के साथ आपको हम गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर? चलिए तो गाना सुनते हैं, रब ने बना दी जोड़ी, ये वाला गाना एंजॉय करते हैं और उसके बाद लौट कर आएंगे हम और कॉल करते रहिए। अभी मोहम्मद रफी और आशा भोसले जी की आवाज में बड़ा ही खूबसूरत गाना।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार वाला आपने गाना एंजॉय किया है। तेरी रब ने बना दी जोड़ी, कुछ गाने ना वाकई में जिंदगी से हम रिलेट कर पाते हैं। कुछ तो भगवान बनाकर जोड़ी भेजते हैं और कुछ हम अपनी जोड़ी ढूंढ लेते हैं, है ना। तो हमारे साथ हम अपने अपने अगले कॉलर से बात करेंगे, और लेकिन उससे पहले समय की बात करूँ तो 4:40 हो चुके हैं और आप फरमाइशों में आज रीना के साथ कनेक्ट है। तो चलिए हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार
0: जी।
1: नमस्कार नमस्कार, राधे श्याम टेलर का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार सर। सर सांस वास लेते हैं या नहीं लेते हैं?
1: लेते हैं ना
0: मुझे तो लगा कि
1: सर
0: भूल जाते हैं आप।
1: नहीं, वो आवाज ही मेरी फर्स्ट है ना, वो तो फिर मतलब शुरू में कहते हैं अपन 3 बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार,
0: 108 बार।
1: फिर इसके बाद में अपन बोलते हैं आराम से धीरे धीरे में, है
0: अच्छा।
1: ना।
0: सर राम राम 2 बार क्यों बोला जाता है फिर?
1: क्योंकि राम राम भी अच्छा शब्द है ना।
0: नहीं, सर 2 बार मिलकर होते हैं 108 बार।
1: अच्छा, 2 बार मिलकर 108 बार होते हैं।
0: जैसे
1: वाह,
0: आप
1: हमने
0: क ख ग लिखा होता है ना, तो
1: तो
0: र जिस नंबर पे आता है वो वाला नंबर कैलकुलेट करिएगा,
1: जी
0: और आ जो आता है वो वाला नंबर कैलकुलेट करिएगा, और म आता है ना वो
1: हाँ।
0: वाला नंबर कैलकुलेट करिएगा आप। तो मिलकर होते हैं 108, 2 बार आप दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो।
1: क्या बात है, ये भी जानकारी आपने अच्छी दी हमें। मैं तो समझ रहा था कि 4 अक्षर होते हुए, लेकिन आपने तो 108 अक्षर बता दी।
0: नहीं, राम
1: अच्छा,
0: राम आप जोड़ेंगे तो 108 हो जाते हैं वो।
1: राम राम जोड़ेंगे तो 108 हो जाता है।
0: हाँ, लेकिन आपको ये कैपिटल वाला ढूंढना पड़ेगा, जैसे क ख ग र कहाँ पे किस नंबर पे आता है, आ किस नंबर पे आता है, म किस नंबर पे आता है, फिर उनको 2 बार जोड़ना है आपने।
1: सही है।
0: इसीलिए 2 बार राम राम बोला जाता है, वरना 1 बार बोलते राम।
1: हाँ तो फिर चलो आप भी बोल
0: कितना
1: देते हैं
0: थोड़ा अजीब
1: राम राम। चलो इस बार हम भी बोल देते हैं राम राम राम राम राम राम,
0: जी राम राम।
1: है ना।
0: बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं शामगढ़ से राधे श्याम टेलर बात कर रहा हूँ।
0: जी टेलर जी हैं आप?
1: जी
0: तो ये तो नहीं सर पैंट का पजामा बना देते, पजामे का पैंट बना देते हैं?
1: नहीं, वो तो कपड़ा कुछ होता है ना, पैजामे का अलग होता है,
0: तो
1: पेंट
0: किसी
1: का
0: और में से
1: अलग
0: काट के
1: होता
0: लगा देते
1: क्योंकि
0: भले ही
1: हाँ बोले। हाँ
0: जो पजामे का कलर व्हाइट हो, लेकिन जेब को किसी और कलर का लगा देते हैं ना।
1: नहीं, व्हाइट में व्हाइट ही लगाते हैं ना, और कलर का थोड़ी लगाते हैं, नहीं तो ग्राहक अपने जूते की भेजा
0: चलिए फिर तो बहुत अच्छी बात है।
1: क्योंकि वो क्या होता है कि जिसके ने सफारी भी बनाते हैं हम, है ना, और फिर पेंट शर्ट इसके अलावा कुर्ता पजामा सब बना लेते हैं, और ग्राहक तो स्पेशल आते हैं दूर दूर से सिलवाने के लिए हमारे पास।
0: वही बात है,
1: हाँ
0: सिर्फ एक नंबर का काम करना चाहिए, फैंटास्टिक वाला।
1: जी, और हमारी दुकान पे और मैं काम करता हूँ ना, हमेशा 1 नंबर ही करता हूँ, 2 नंबर का काम बिल्कुल भी नहीं होता
0: चलिए बहुत अच्छी
1: है।
0: बात है सर। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: जी मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम है नगीना,
0: और गाना कौन सा
1: और
0: है?
1: आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। ये
0: किसकी याद आती है
1: गाना
0: सर
1: सुन
0: आपको?
1: आती है ना, आपकी आती है और गाने की यही आती है, याद तो आती है, जब भी तो फोन लगाते हैं ना हम, हेलो फरमाइश कार्यक्रम
0: अच्छा जी, अच्छा। चलिए हम ये गाना आपको सुनवाते हैं, ठीक है?
1: जी।
0: तो चलिए श्रोताओं, हम गाना सुनते हैं, आजकल तेरी याद और आती नहीं। तो ये वाला हम गाना सुनेंगे, और आप भी हमें कॉल करते रहिए। फिलहाल गाना सुनने से पहले कुछ कमर्शियल एड ब्रेक।
2: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM.
3: श्री साई हॉस्पिटल में अनुभवी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शाहीन द्वारा संपूर्ण महिला स्वास्थ्य मेडिकल सेवाएं उपलब्ध हैं। आधुनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सुरक्षित सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी की विशेष देखभाल, बच्चेदानी से जुड़ी हर प्रकार की सर्जरी, माँ और शिशु की सुरक्षित देखभाल के लिए नवजात शिशु विशेषज्ञ भी उपलब्ध है। साथ ही क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस की सुविधा और न्यूनेटल वेंटिलेटर के साथ संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7060002430।
4: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: वाकई में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है मोहम्मद अजीज जी की आवाज़ में। ये खूबसूरत गाना कि आजकल कुछ याद आता ही नहीं है। और आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। फिलहाल गुड इवनिंग वाला समय है और समय की बात की जाए तो 4:52 हो चुके हैं। तो अपने अगले कॉलर से हम बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार जी,
1: नमस्कार मैम।
0: बताइए क्या नाम है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं सर?
1: मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, काशीराम नगर।
0: ओके सर, तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती छूट जाएंगे,
0: हाँ जी,
1: ना झटको जुल्फ से पानी ये मोती छूट जाएंगे, है
0: ओके, किसी का नाम लेना चाहते
1: ना?
0: हैं सर?
1: नहीं, मैं किसी का नाम लेने जाता ना देता।
0: अच्छा, चलिए, अकेले ही, अकेले नहीं सर, हम सभी हैं और सभी रेडियो सुनने वालों के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? जी जी जी जी जी चलिए, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है? तो भाई आराम से कॉल करिए और कनेक्ट हो जाइए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। फिलहाल देखेंगे लास्ट लकी कॉलर हमारे साथ कौन कनेक्ट होते हैं।
2: न झटको जुल्फ से।

0: Hey, you're tuning to FM Moradabad 89.6 FM.
1: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
2: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट्स खनास लेगेसी सिंस 1970।
1: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: डिसाइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और वेलकम बैक है श्रोताओं, और फिर से हम आप सभी के बीच लेकर आ गए एक नई जानकारी जो आप सभी तक ना कोशिश करते हैं यानी कि पहुंचती रहनी चाहिए। तो अब हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, यानी कि न्यायपालिका का सम्मान और उनके आदरों का पालन करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अनुरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट है। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। पहले तो सर आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बता दीजिए।
6: देखिए मैं बाय प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। मेरा नाम अनिरुद्ध अरोरा एडवोकेट है, और जो है हम बेसिकली जो समाज में किसी के साथ शोषण होता है या किसी को सताया जाता है, अगर हमें भी कुछ लगता है डेली लाइफ में, तो हम लोग उसको हेल्प करते हैं, उसको लीगल गाइडेंस देते हैं हम लोग। और मैं समझता हूँ कि सबको अपने कानूनी जितने अधिकार है उसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डेली रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत देख रहे होते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
6: तो सबसे
5: सही।
6: बड़ी चीज है ये, इग्नोर करने से ही क्राइम पनपता है और बढ़ता है।
5: सही
6: का, तो पहले लेवल पे ही अगर हम उसको रोक लेते हैं तो एक हम आगे आने वाले बहुत बड़े किसी क्राइम से या किसी घटना से बच सकते हैं।
5: बिल्कुल सर, तो अब तो हमारे श्रोता भी आपके बारे में रूबरू हो चुके हैं।
6: श्रोताओं से ही बात करना अच्छा लगता है मुझे, और मैं उन्हीं के लिए आता हूँ आपके।
5: बिल्कुल बिल्कुल सही सर, और कोशिश करते हैं कि उनके तक अच्छी अच्छी जानकारियाँ पहुँचती रहे,
6: उनको अच्छी अच्छी मिलनी चाहिए जिससे वो अपने कानूनी अधिकारों को जान पाए।
5: बिल्कुल सर, तो हम शुरुआत करते हैं, यानी कि पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले बताइए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है।
6: ये आमतौर पे हम लोग बहुत सुनते हैं इस वर्ड को कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। अब अधिकतर आपने देखा होगा कि भाई कोर्ट का आदेश जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, लोग बोल देते हैं, लेकिन होता क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? तो ये सबसे बड़ी चीज, देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेकिन इसका जो मतलब है वो बहुत मीनिंगफुल मतलब है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है यानी अदालत की अवमानना करना। अब जब जो अदालत ने जो बात कह दी है आप उस चीज को नहीं मान रहे, उस ऑर्डर को नहीं मान रहे हो, अदालत का आप अपमान कर रहे हो, तो उसको हम कंटेम्प्ट की श्रेणी में मानते हैं। आप कोई न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालते हैं या अदालत के आदेश का आप पालन नहीं करते हैं, तो उसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बोला जाता है। और भारत में इससे संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि अगर कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है और आप उसको नहीं मानते हो, तो आप कोर्ट का अपमान कर रहे हो, तो उसका जो है कोर्ट आपको पनिशमेंट भी देती है।
5: शो आगे बढ़ते हैं, यानी कि म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो हमारा अगला क्वेश्चन होगा सर, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने टाइप के होते हैं?
6: देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक सिविल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट का कंटेम्प्ट होता है। तो अदालत की अवमानना, अगर सिविल कोर्ट सिविल कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं, तो कोई व्यक्ति अगर अदालत के आदेश या फैसले का पालन नहीं करता है तो उसको जो है सिविल कंटेम्प्ट की श्रेणी में लाते हैं। उसमें सिविल में ये होता है कि अदालत उसको सिर्फ फाइन से ही छोड़ देती है, कई बार ऐसा देखा गया है। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट जो होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट में अगर कोई अदालत का अपमान करता है या न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो कोर्ट को इतनी ज्यादा पावर भी होती है, हालांकि पावर सिविल में भी होती है, तो लेकिन क्योंकि क्रिमिनल कंटेम्प्ट है तो कोर्ट उस पर फाइन और सजा भी उसको दे सकती है,
5: सुना सकती है, बिल्कुल
6: हाँ, जेल भी भेज सकती है यहाँ तक।
5: अगर कोई व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो उसे क्या सजा हो सकती है?
6: देखिए अदालत की अवमानना करने पर जो दोषी होता है उसको अदालत के विवेक पे निर्भर करता है वैसे तो सजा, लेकिन वो 6 महीने तक की जेल या जुर्माना दोनों सुना सकती है। रिट होती है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो सकती है या हाई कोर्ट में दायर हो सकती है। एक प्रकार का रिट जो होती है, एक प्रकार का विशेष आदेश होती है जो अदालत किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने या किसी सरकारी संस्था को उसका कर्तव्य निभाने के लिए जारी कर सकती है। भारत में रिट जारी करने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम रिट्स की बात करते हैं तो ये विशेष तौर पर कई श्रेणी में मतलब आती है। अगर हम हाई कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट दाखिल कर सकते हैं।
5: सो इनके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं सर?
6: विशेष तौर पे पांच तरीके की रिट्स होती है। भारत में कुल जो पांच तरीके की रिट्स हमारी बताई गई है, इसमें मुख्यतः जो पांच रिट्स हैं उसका नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है इसमें हैबियस कॉर्पस, नाम नोट करिए हैबियस कॉर्पस। विशेष तौर पे अगर आप बच्चे एलएलबी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो उनको तो सब पता ही होगा, तो उनको तो इस समय पढ़ाई में भी वो लोग ये पढ़ते होंगे तो उनको सब पता होगी, सारी अच्छी नॉलेज होगी उनकी। और सेकंड हमारी आते हैं मैंडेमस, और थर्ड होती है प्रोहिबिशन, और फोर्थ रिट है हमारी सर्चुरारी, और फिफ्थ रिट है क्यू वारंटो।
5: तो इनके सर अलग अलग, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इनके अलग अलग टर्म्स होते होंगे।
6: हाँ, अलग अलग, हर रेट का अपना अलग महत्व है, अलग अलग चीज के लिए अलग जो लीगल रिलीफ होता है उसके लिए यूज करी जाती है। तो हैबियस कॉर्पस जो रेट होती है, मैं पहले उसके बारे में अपने जो श्रोता है उनको बताना चाहूंगा। विशेष तौर पर जो हैबियस कॉर्पस रेट होती है, ये रेट तब जारी करी जाती है यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रख लिया जाता है या उसका पता नहीं चल पाता है, तो अदालत आदेश देती है कि उस व्यक्ति को तुरंत न्यायालय के सामने पेश किया जाए। क्योंकि हैबियस कॉर्पस जो रिट डाली जाती है वो पिटीशनर की तरफ से इसलिए डाली जाती है कि उसका कोई नोन है, रिलेटिव है, और उसको शक होता है कि उसको पुलिस ने गलत तरीके से कहीं छुपा के रखा हुआ है या उसको पनिश कर रहे हैं जो, और कोर्ट के समक्ष नहीं ला रहे हैं। तो विशेष तौर पर हैबियस कॉर्पस रिट का मोस्टली ज्यादातर प्रयोग तब किया जाता है। सेकेंड जो रिट आती है हमारी मैंडमस रिट है, उसको हम उसका अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ये रिट तब जारी होती है जब कोई सरकारी अधिकारी या संस्था अपना कानूनी कर्तव्य नहीं कर रही होती पूरी। अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई अधिकारी है और वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है सही से, और उसकी जो है जो मैटर है उसको विलंबित कर रहा है या कोई और रीजन है, तो मैंडमस रिट उसी मैटर में डाली जाती है कि वो आदेश देता है, जो कोर्ट होती है वो मैंडमस रिट में आदेश देती है कि ये सरकारी अधिकारी या संस्था अपने कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वहां से वो रिलीफ के तौर पे उस रिट में वो हाईकोर्ट ऑर्डर करता है उसको।
5: ओके,
6: थर्ड जो रिट आती है उसकी हम बात करते हैं, उसको हम प्रोहिबिशन बोलते हैं। प्रोहिबिशन रिट किस लिए जारी कर दी जाती है मैं बताता हूँ आपको। प्रोहिबिशन रिट तब जारी होती है जब कोई निचली अदालत या ट्रिब्यूनल अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई कार्य करता है, और उस अधिकार क्षेत्र में अगर उसका राइट ही नहीं है उस ट्रिब्यूनल का या कोर्ट का, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हम प्रोहिबिशन रिट दाखिल कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है या सुप्रीम कोर्ट है उसमें हमें रिलीफ दे सकता है कि जो लोअर कोर्ट का आदेश है या ट्रिब्यूनल का आदेश है उसको वो रद्द भी कर सकता है या उस पे रोक भी लगा सकता है। तो बेसिकली ये कि अगर कोई भी अदालत अपनी पावर से बाहर जाके, अपनी जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई ऑर्डर सुनाता है, तो उसके अगेंस्ट में विशेष तौर पर इस रिट का प्रयोग होता है, प्रोहिबिशन। अच्छा, इसके बाद हम सर्चुरारी रिट की बात करते हैं। जो सर्चुरारी रिट आती है, ये उच्च न्यायालय किसी निचली अदालत के गलत फैसले को, आदेश को रद्द करना करने के लिए यूज करी जाती है। जैसे कोई लोअर कोर्ट ने कोई आदेश गलत दे दिया, कई बार होता है कि बुद्धि विवेक, प्रत्येक इंसान का माइंड अलग होता है। ऐसा नहीं है, कुछ गलतियां जजेस से भी हो जाती है। तो कुछ मैटर्स में हमने ऐसा भी देखा है कि निचली अदालत के गलत फैसले को या उसका फैसला गलत मानते हुए हाई कोर्ट में सर्चुरारी रिट अगर किसी ने फाइल करी है तो उसमें भी रिलीफ मिलते हुए हमने देखा है, और कोर्ट उस आदेश को रद्द भी कर सकती है। और सबसे लास्ट में जो रिट की हम बात करते हैं, क्यू वारंटो, ये जो रिट होती है तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति के किसी सरकारी पद पर बैठने की वैधता पर सवाल उठता है। अगर कोई अधिकारी किसी सीट पर बैठा हुआ है और उसको डाउट होता है व्यक्ति को कि ये सीट पर किस अधिकार से बैठा है, तो क्यू वारंटो में रिट फाइल करके वो हाई कोर्ट में वो कोर्ट से रिलीफ ले सकता है कि उसमें बैठने, अदालत उससे पूछ सकती है किस राइट से आप इस पद पे बैठे हुए हो, वो व्यक्ति उस सीट पे बैठने के लिए ऑथेंटिक है नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र है
5: या नहीं है।
6: हाँ, तो मुख्यतः ये पांच रेट होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग रिलीफ मांग सकते हैं।
5: अंत में सर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कानूनी अधिकारों के प्रति?
6: देखिए कानूनी अधिकार ये बहुत ही डीप जो चैप्टर है, हम भी डेली नए नए डिसीजंस, नए नए जजमेंट्स और डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की आती रहती हैं। लोअर कोर्ट से भी कई ऐसे जजमेंट्स आए कि वो बहुत ही हमें भी नए नए डायरेक्शन हमें और जजमेंट्स हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो ये इतना डीप जो सब्जेक्ट है कि कोई भी आपसे ये नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूँ।
5: परफेक्ट हूँ बिल्कुल।
6: तो इसमें आप जितना पढ़ेंगे, जितना आप स्टडी करेंगे, जितना नए नए करंट अफेयर्स को आप डेली न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, हाई कोर्ट्स के और लोअर कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के जजमेंट्स देखते भी रहते होंगे, आए दिन आते रहते हैं, तो आपको रोज पढ़ना है, रोज आपको नई नई चीजें सीखनी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और लीगल जानकारी भी होती है सबसे बड़ी चीज आपको, और आप अवेयर रहते हैं। तो मैं तो यही बोलूंगा कि एक बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट सब हम सारे सिटीजन्स को होनी चाहिए कि लीगल राइट्स
5: हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मैं आपके जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। मैंने वैसे आप पीएचडी के बारे में जानती हूँ कि आप पीएचडी होल्डर है, बट पीएचडी के बाद यानी कि एडवोकेट तक कैसे मतलब जर्नी रही आपकी?
6: मेरे को माना तो बाद ही एक यूनिवर्सिटी से मिली थी, और ये एक यूनिवर्सिटी फ्रांस की यूनिवर्सिटी थी, तो मेरे वर्क के लिए, सोशल वर्क के लिए मेरे को ऑनरिस कॉज में माना तो बाद ही मिली हुई
7: है। वैसे
6: एक क्वालिफिकेशन मैंने एमकॉम किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है और एलएलबी मेरा है, और आई एम परसुइंग एलएलएम।
5: एलएलएम तो इसकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही?
6: देखिए बाकी सब तो ठीक है, मेरा वो बेसिक जो है मेरा खुद का ड्रीम था, मुझे एमकॉम करना है, उसके बाद मेरे को एमबीए करना है, लेकिन एलएलबी के पीछे का जो ट्रूथ है वो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा।
5: हाँ सर वही मैं भी जानना चाहती हूँ कि पीएचडी के बाद
6: बड़ी इंटरेस्टिंग है। किसी टाइम पे मेरे अगेंस्ट में, किसी ने मेरी फैमिली के अगेंस्ट में एक फेक कंप्लेंट करी थी।
5: ओके।
6: और वो फेक कंप्लेंट मुझे इतना हर्ट हुई कि मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही अपने बिल्कुल एथिक्स पे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे झूठे मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी, और मैंने उस कंप्लेंट के अगेंस्ट में खुद ही सारे फैक्ट्स जुटाए, खुद ही फाइट करा। फिर जब मेरे को, मैंने लीगल नॉलेज को गेन किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने खुद ही उस कंप्लेंट को हैंडल किया, तो मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा इस लीगल जो मैटर्स हैं, मेरे को थोड़ा नॉलेज हुई, तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको एज ए प्रोफेशन बनाऊं। मैं इसको
5: बिल्कुल, क्या बात,
6: क्योंकि इतना अच्छा प्रोफेशन है और आप इतना चीजों को डीप में जानते हो, अपने लीगल आप राइट्स को जानते हो, तो बस मेरा मन करा कि नहीं मैं भी कुछ समाज के लिए करूं। आज को मेरे ऊपर अगर किसी ने एलिगेशन फेक लगाया है तो दूसरे समाज में बहुत सारे मैटर्स ऐसे होते हैं कि लोगों को फेक एलिगेशन लोग लगा देते हैं और वो उससे बच नहीं पाते हैं क्योंकि उनको राइट्स नहीं पता होते अपने।
5: बिल्कुल।
6: तो उस राइट्स को क्यों ना मैं लोगों को पढ़ाऊं, लोगों को बताऊं आपके लीगल राइट्स क्या है, और मैंने खुद भी उसे अपनी लाइफ में लेके आया। तो ये इसके बाद ही मैंने सोचा कि नहीं मैं लोगों की समाज में सेवा करूंगा, मैं एज एन एडवोकेट भी अपने आप को सोसाइटी में,
5: क्या बात है, इन्होंने दूसरों से मदद लेने की बजाय इन्होंने कहा कि मैं खुद इस लायक बनूं कि अपना मतलब जो हमारी गलत इन्फॉर्मेशन जो भी लगाया गया है वो मैं खुद सॉर्ट आउट करूं।
6: बस तो एक छोटा सा स्टेप आपकी लाइफ बदल देता है, तो कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है, तो वही शुरुआत मैंने भी करी थी।
5: और कहते हैं ना सर, एक अच्छी अचीवमेंट के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप किसी फील्ड में हो और आप काम कर रहे हो तो उसमें सक्सेस आपको मिली जाती है,
6: मिलती है, और आप अगर दूसरे की हेल्प करोगे तो ऊपर वाला आपका खुद ही आपकी हेल्प करता है।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, सही।
6: तो मैं अगर किसी का माध्यम बन रहा हूँ किसी की हेल्प करने के लिए, तो ये मेरे को ऊपर वाले ने जो है मेरे को एक जो अपॉर्चुनिटी दी है तो उसको मुझे करना भी चाहिए।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, थैंक यू सर कि आपके बारे में, आपकी मतलब जो आपने बताया कंटम ऑफ कोर्ट के बारे में, आपके जर्नी के बारे में, तो बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे, बहुत श्रोता होंगे जो कभी कभी ये होता है कि सर हम किसी चीज की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमें उसमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम ना वहाँ हार मान लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अनिरुद्ध सर से हमें मतलब एक फीड मिल गया है कि भाई जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल
6: बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। तो जो है आप अगर जिंदगी से हार के बैठ जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। और जिंदगी वो एक गाना ना, जीवन चलने का नाम, चलते रहना है सुबह शाम।
5: बिल्कुल,
6: तो बस यही लाइफ है
5: सर। किताबें कितनी भी दगाबाज क्यों ना हो लेकिन कामयाब करके ही छोड़ती है।
6: किताबें ही आपकी।
5: बिल्कुल बिल्कुल सर, सच कहा आपने।
8: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट, दुबई प्रॉपर्टी अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद,

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? यू आर लिस्निंग टू एफ एम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूँ भाई, ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है। तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है, उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
1: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
0: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
1: हाँ हाँ,
0: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
1: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
0: जी,
1: जहाँ हम ढेर सारी बातें करते हैं
0: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूँ। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं जिसका नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
0: चलिए, बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
2: हाँ, तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
0: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
2: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
0: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
2: देखिए, आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
2: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
0: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
2: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं, और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
0: बहुत जरूरी है।
2: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
0: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
2: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
0: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है, और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
2: ये टॉपिक इतना डीप में कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ, तो नोबडी इज परफेक्ट।
0: आई थिंक
2: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और हमारे मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
0: क्या बात है।
2: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
0: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है।
2: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
0: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो वो और मजा आता है।
2: देखिए, फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके, है ना, उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है, तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
0: किसी बंदे को, हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है,
2: कहीं ना कहीं
0: में चल रही है,
2: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना, आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
1: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके, लिटिगेशन, ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
2: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
0: ओके,
2: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चला होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
0: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
2: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
0: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
2: PIL
0: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
2: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
0: लिटिगेशन के बारे में बात।
2: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
0: ठीक है,
2: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
0: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
2: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
0: करेक्ट,
2: उसको बैठ के
0: समझौता किया जाए, बेसिकली
2: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए।
0: मतलब दोनों पार्टी के बीच,
2: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं। आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
0: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
1: जी। हाँ,
0: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
2: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
0: हाँ, ठीक है,
2: सुनी होगी ना?
0: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
2: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
0: करेक्ट
2: है ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका होती
0: है।
2: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए ये फाइल नहीं कर सकता,
0: ठीक है,
2: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
0: ओके,
2: ठीक है,
0: अच्छा,
2: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
0: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
2: बिल्कुल,
0: तो वो पब्लिक
2: की बात होनी चाहिए।
0: करेक्ट।
2: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
0: दिस इज द पब्लिक प्लेस,
2: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या है, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
0: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
2: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
0: पब्लिक के लिए
2: होनी चाहिए जी। सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
0: राइट,
2: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की, ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं, तो आप उसके खिलाफ भी आप PIL ला सकते हैं।
0: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
2: है, बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके, सार्वजनिक,
0: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें, मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका PIL क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
2: मैं वही बता रहा हूँ, PIL जो याचिका होती है, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
0: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
2: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है, तो उसको लेके ही हम पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
1: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
2: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है, लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
0: ठीक है,
2: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते। उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है, वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। सर, अच्छा ये बताइए, पीआईएल और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
2: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं, ठीक है, वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
0: ठीक है,
2: लेकिन पीआईएल सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए, या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता पीआईएल नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
1: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
2: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेंस्ट आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानवाधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो, तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूं पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से ये
2: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र की अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
0: करेक्ट, अरावली। हाँ,
2: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे, कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। बहुत उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरमेंट को हार्म हो रहा था, उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
0: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी के साथ। सर, आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
2: देखिए, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने सुप्रीम कोर्ट में
0: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो हम दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
2: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म।
0: सर मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है। पब्लिक इंटरेस्ट
2: लिटिगेशन,
0: यार पब्लिक सीखने को मिली है।
2: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो,
0: जी जी सर,
2: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
0: ओके okay.
2: ठीक है.
0: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं. और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था. और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछने की PIL का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए. हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करना
1: गूगल करके निकाल लेंगे तो मैं.
0: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ. जितना दिमाग तू चलाती है इतने हमारे लिसनर भी चला लेते हैं. बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट. हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे. हाँ प्लीज.
1: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या PIL के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
2: यस बिल्कुल कराई जा सकती है. अगर जनहित याचिका PIL के माध्यम से हम सरकारी नीतियों और योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में PIL दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं. यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें.
1: क्या बात
0: okay.
1: है.
0: So, अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए. तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए PIL कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए सर.
2: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो PIL का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है. आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है. डिजिटल जो निगरानी है आजकल, लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है.
0: एब्सोल्युटली 100%
2: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर PIL नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है. और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी PIL के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और PIL भी दाखिल हुई है. तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए, जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है. तो इसको लेके भी कई PILs जो है दाखिल करी थी और PIL दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए. तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है.
0: 100% राइट. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच. अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में PIL से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें.
2: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले. अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक PIL आपने देखी होगी अभी, जैसे चुनाव पारदर्शिता से.
0: ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
2: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही.
0: करेक्ट करेक्ट वही ना,
2: तो कहीं ना कहीं एलिगेशन
0: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना.
2: हाँ
0: इस पे हम बात कर रहे हैं अभी,
2: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ PIL डेफिनेटली
0: रहती
2: है, बिल्कुल उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं.
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
2: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके. लेकिन कई बार ऐसा होता है, देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है. तो उसको लेके जो है कई एक NGOs हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, NGOs हैं, एडवोकेट्स हैं, वो लोग अपनी PIL या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर PIL दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है. और PIL के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है.
0: ऑल राइट, सर थैंक यू वेरी मच. लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया और ये जो आपका PIL का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ. एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में. एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है. सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे. एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना. और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को FM मुरादाबाद 89.6 FM जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
2: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी FM मुरादाबाद 89.6 है,
0: जी जी
2: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
0: भी अपने ऐड कीजिए,
2: अपने घर वालों को भी सुनाइए FM.
0: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला. और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास
2: अच्छा,
0: के लोग
2: हैं. एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा मैं.
0: जी सर,
2: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है.
0: हम अपने समुदाय की बात करते हैं
2: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है. जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं.
0: गॉट इट सर. और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज और ये आम जनता की आवाज, इसीलिए आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग.
1: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है जिसके बारे में पता भी नहीं.
0: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा. आज का तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया. और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने दुरंदर होते हैं आप लोग. मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है. मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
1: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे. मतलब इन्होंने
0: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी. लेकिन सर बहुत अच्छा लगा और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था. तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का. सर बहुत बहुत थैंक यू आप आए. एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे. तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए. नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा. सी तू अपना सायोनारा करेगी या नहीं है ये बता अभी.
1: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
0: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना.
1: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
0: वो मुझे नहीं पता. फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन. इट्स नॉट रेसिपी शो.
1: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं श्रोताओं आप सभी से, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. अभी के लिए बाय-बाय, टाटा, टेक केयर. अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रोक मचाते रहिए
0: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए. और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो. तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना. बाय बाय, नमस्कार.
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
4: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
5: हाँ है ना, श्रीहरि डॉट इन. यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज. तो आज ही विजिट करें श्रीहरि डॉट इन पर जाकर.
6: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है.
7: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
6: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा.
7: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद.
8: कॉल 7500153841.

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
2: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
1: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
2: अरे नहीं,
3: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
2: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड क्वाइन जीतने का मौका भी है।
1: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता चैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
4: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना, और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स, जहाँ हाथों की कला, हुनर और मेहनत मिलकर खूबसूरत हस्तशिल्प को जन्म देती है। आखिरकार एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, कारीगरों के हुनर को बाजार तक पहुँचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और बदलते समय के साथ हस्तशिल्प की दुनिया कैसे बदल रही है, और SKI हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हमारे खास मेहमान, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप पहले भी हमारे साथ रूबरू हो चुके हैं, तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पहली बात तो आपके बारे में।
5: मेरा नाम राजेश खन्ना है और मैं पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ साथ की मुरादाबाद से कितना ज्यादा एक्सपोर्ट और लोकल में माल जाता है, वो सब हमारे कॉरुगेटेड बॉक्स में ही जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार इस फील्ड में कदम रखूं, तो ब्रास के लिए मैंने एक आइडिया मेरे मन में आया, मैंने एक शोरूम की स्थापना करने का मन बनाया। अब मैं एक नया वेंचर जो है स्टार्ट करने आ रहा हूँ 12 अक्टूबर।
4: तो सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने इसकी शुरुआत कैसे करी, मतलब कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि हैंडीक्राफ्ट हमें शुरू करना है।
5: मुरादा, हम मंडी चौक के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर घर घर में पीतल का काम होता है, तो मेरे पिताजी ने भी 1970 में ब्रास का काम स्टार्ट किया था। हम बहुत छोटे थे, 4 साल का हुआ करता था, मेरे सामने पेटी में रख के, पहले कॉरुगेटेड बॉक्स तो कम होते थे, पेटी में माल जाता था, क्योंकि सरकार ने बाद में लकड़ी के लिए मना कर दिया, तो बाद में कॉरुगेशन का निर्माण हुआ, उसमें कॉरुगेशन में जाने लगा। तो हमने ब्रास काम बचपन से देखा, तो मेरी एक इच्छा थी, जो मेरा घर में काम चला 10 साल, उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊँ।
4: सर, SKI क्राफ्ट की शुरुआत आपने कैसे करी?
5: देखिए, ब्रास का जो इतिहास है मुराद में, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लगभग 450 साल पुराना है। 450 साल पहले शाहजहां के पुत्र मुराद ने जो ये शहर बसाया मुरादाबाद, इसकी खास बात ये थी कि ये रामगंगा किनारे जो रेत है बहुत बारीक है, जो ढलाई के काम में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है, उस वजह से यहाँ पर ढलाई का काम स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे ये काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो आइडिया जो है मेरे मन में था कि ये क्यों ना विरासत वाला काम स्टार्ट किया जाए, उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शोरूम के रूप में देना चाह रहे हैं, जो अब तक माल मुरादाबाद से बाहर के मार्केट में बिक रहा था, अब वो सीधे मुरादाबाद के लोगों को मिले शोरूम के माध्यम से।
4: तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 तारीख को ही SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत यानी कि ओपनिंग आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो कुछ तो

0: आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि 12 तारीख को ही हमें ओपनिंग करना है।
1: मैम 12 तारीख को सेकंड नवरात्र है और जो नारी शक्ति के लिए नवरात्र की पूजा होती है, ये काम जो है मैंने अपनी मैडम नेहा खन्ना के नाम से स्टार्ट किया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन उनके नाम से ही है। उनका मन था कि मैं कुछ करूं, तो उन्हें मुरादाबाद के इस काम में जो है इंटरेस्ट था और काफी उन्होंने जो है मेरे को सहयोग भी किया है, तो उस वजह से मैंने नवरात्र में ये काम चालू किया।
0: सर, दिवाली और दूसरे त्योहारों में लोग घर को सजाने के लिए कुछ यूनिक ढूंढते हैं, तो SKI हैंडीक्राफ्ट्स में ऐसा क्या खास मिलेगा जो घर की सजावट को एक अलग ही लुक दे सकते हैं? मतलब क्या एक अलग यूनिक है आपके पास प्रोडक्ट?
1: एक तो मैम हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, वैसे तो सारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में यूनिक ही होता है क्योंकि हाथ से बना हुआ किसी कारीगर के हाथ के द्वारा बना होता है। हमने कुछ ब्रास के ऐसे आइटम सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है तो उसमें पीतल के करुए हम दे रहे हैं, कॉपर के कुछ ऐसे यूटेंसिल हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और चूंकि चांदी महंगी हो गई है तो चांदी की उर्ली रखना संभव नहीं है आज की तारीख में, तो ब्रास पे अगर हम चांदी की पॉलिश करके रखते हैं तो सेम चांदी की उर्ली से ज्यादा अच्छी ये हमारी ब्रास की लगती है। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर ऐसे आइटम है जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे।
0: SKI हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट से क्या अलग बनाता है जो लोग आप तक कनेक्ट हुए?
1: SKI हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना एक विरासत को आगे लेके आया, जैसे कांसा है, अभी जो है काफी हद तक कांसा मार्केट से गायब हो चुका है। अगर हम ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट जरूर रख रहे हैं कि वो महंगा भले ही हो मतलब अपने कॉस्ट के हिसाब से, बट बेनिफिशियल है, तो वो जो है मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल आज की तारीख में।
0: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट होती है उसमें मेहनत कितना लगता है? क्योंकि हर काम में मेहनत बहुत मायने रखता है और देखा जाए तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, आजकल हर कोई यही सोचता है कि ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है ना उसकी बात ही अलग होती है, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
1: उसके पीछे का प्रोसेस जो है केवल डेडिकेशन है। कोई भी आप देखिए कोई भी चीज बनाते हैं हाथ से तो उसमें कितना टाइम लगता है, उससे आपकी ना एक मन की भावना आस्था जुड़ जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट भी सेम ऐसी चीज है कि कोई चीज आपने ब्रास की या किसी भी चीज की देखिए कि मेरी नानी या मेरी दादी का ये बर्तन यूज होता था या ये फूलदान यूज होता था, तो आपके उसे आपकी आस्था जुड़ जाती है, तो यही सब चीजें जो है हैंडीक्राफ्ट को विशेष बनाती है।
0: सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ आपके बेटे हैं और आपके दोस्त हैं, तो क्या ये भी आपके साथ ही आपके काम में हेल्प करते हैं? तो आप इनके बारे में खुद ही बता दीजिए, फिर इनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आराम से शांत बैठे हुए हैं कि हमारे पास नंबर नहीं आएगी, लेकिन आने वाली आपके पास भी नंबर, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप। तो सर, आप पहले इनके बारे में बताइए।
1: हाँ, ये दोनों मेरे साथ एसोसिएट हैं और मेरे इस वर्क में मेरे को हेल्प करते हैं और इनकी स्टडी भी बिजनेस की है, तो उस पे ही वर्क ये आगे बढ़ा रहे हैं अपना।
0: तो आर्यन जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपके फादर साहब ने बताया कि उनके फादर साहब भी पीतल का ही काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने फादर के साथ ही काम करूंगा और अपने जो हमारा बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इसको और ग्रो अप करना चाहिए? क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अलग है, तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि बस पापा के साथ ही काम करेंगे और इसी बिजनेस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं?
2: हाँ, काफी टाइम से जब हम ऑलरेडी कॉरोगेटेड बॉक्स का काम हो रहा है, तो जब सैंपलिंग होती थी तो उस हिसाब जब मैं देखता था कि अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं, तो मैंने लोकल मार्केट में देखा तो वो डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वो सब डिजाइन बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे, तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना शोरूम लेके आ रहे हैं जहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स होंगे और फिनिश होगी वो हम मुरादाबाद के लोगों को देना चाहेंगे।
0: तो आपके यहाँ ट्रेडिशनल डिजाइन और मॉडल डिजाइन भी इनको मिल सकता है, कुछ क्या अलग है आपके पास?
2: हाँ, एक काफी बेहतरीन कॉम्बो है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल में ब्रास का, मॉडर्न में EPNS का, और बाकी काफी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जब मार्केट में रिसर्च करी इस बारे में तो हमें बहुत जगह जा जाकर हमने बहुत लिमिटेड डिजाइन को फाइनलाइज करके अपने शोरूम में लेके आए हम, और आपको वही सब देखने को मिलेगा 12 तारीख को SK हैंडीक्राफ्ट के शोरूम दिल्ली रोड।
0: तो आर्यन जी, हमारा अगला क्वेश्चन है, SKI हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, किसको और कैसे ग्रो अप करवाना है?
2: SK हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम के साथ साथ हम ऑनलाइन भी एंट्री ले रहे हैं, और पहले तो हम मुरादाबाद के लोगों को केटर करेंगे, पहले मुरादाबाद के लोगों को सर्व करेंगे, उसके बाद हम पूरे डोमेस्टिक पूरे पैन इंडिया हम अपना ब्रांड को लेके जाएंगे आने वाले समय में।
0: तो राजेश जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, हैंडीक्राफ्ट की चीजें मशीन मेड प्रोडक्ट से अलग होती है, एक ग्राहक SKI से कोई प्रोडक्ट खरीदते समय कैसे समझ सकता है कि यह एक हैंडमेड आर्ट प्राइस खरीद रहे हैं?
1: हमारे पास जो है सर्टिफिकेट भी है, और हमारे पे गुरु हैं श्री चिरंजी लाल यादव जी, जिन्होंने अभी भारत का एक बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सम्मान पाया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उनके द्वारा कुछ निर्मित चीजें हम जो है अपने शोरूम में रखने की हमारी बात चल रही है, जो 100% हैंडीक्राफ्ट है। इसके अलावा हम जो है जो भी प्रोडक्ट रहे उनमें मात्र 20-30% ही जो है मशीन मेड है, बाकी 70% उस प्रोडक्ट पे हाथ से काम हुआ हुआ है। हमारे गुरु जी श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्म विभूषण अवार्ड जो मुरादाबाद के 100% हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला है, वो हमारे मुरादाबाद की एक तरह से गौरव की बात है। तो उसी गौरव को हम कायम रखते हुए हम 100% जो हैंडीक्राफ्ट से हैंडमेड आइटम है वो रखेंगे, और जो भी हमारे आइटम होंगे वो केवल 20-30% ही जो है मशीन मेड होंगे, बाकी उसमें 70% काम हाथ से या हैंडमेड से ही किया गया हुआ हो।
0: तो सर मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई ग्राहक पहली बार SKI हैंडीक्राफ्ट में आए तो आप चाहेंगे कि वह सिर्फ शॉपिंग करने ना जाए बल्कि यहाँ से भारतीय कला और कारीगरों के हुनर की कौन सी याद लेकर जाए?
1: इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मुरादाबाद को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये SKI हैंडीक्राफ्ट का जो शोरूम है वो एक तरह से एग्जीबिशन है जो एक आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आप लोग आइए, यहाँ पर अनुभव कीजिए कि जो है हैंडीक्राफ्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं मुरादाबाद में, और हम फर्नीचर में, हम टेबल वेयर में या शो पीस में कितने भी आइटम जो मुरादाबाद में बनते हैं उसके हम कुछ कुछ जो है सैंपल हम यहाँ रखेंगे और पूरे मुरादाबाद को अनुभव कराएंगे एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से कि हैंडीक्राफ्ट में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं।
0: सर हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि 12 अक्टूबर को SKI हैंडीक्राफ्ट की ओपनिंग है, तो आपके पास ऐसा एक खास कोई अलग क्या यूनिक प्रोडक्ट है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हुए और क्यों कनेक्ट हुए? कुछ तो आपके पास खास होगा ना, तो आप बताइए कि जो सोचे कि हम इस ओपनिंग में नहीं गए तो बहुत सी चीजें हमने मिस कर दी, तो ऐसा क्या खास है?
1: हम जो है जो हमारे 12 अक्टूबर के इनॉग्रेशन में सम्मिलित होगा उसको हम जो है अपने लिगेसी में शामिल करेंगे और स्पेशल ऑफर उनको जो है हम पेशकश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर आते हैं तो उन्हें नया कुछ एग्जीबिशन के टाइप का देखने को मिलेगा, कल को वो कुछ और भी जो है अपने विचार हमें बता के नए डेवलपमेंट हमसे करवा सकते।
0: तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो लोकेशन क्या है?
1: बहुत सिंपल लोकेशन है, मुरादाबाद आपके गागन पुल दिल्ली से रोड से लेकर और प्रेम मंडल तक सिचुएटेड है, उसी बीच में सारा मुरादाबाद जो है आता है। हमारा जो है मेन रोड NH 24 पर कुंदन पेट्रोल पंप के पीछे जूडियो के सामने, और उसकी लोकेशन यूनियन बैंक के सामने है, और बहुत इजी अप्रोच है। आप NH 24 पे आप किसी से पता कीजिए, कुंदन पेट्रोल पंप कोई भी बता देगा।
0: तो एक मैसेज जो आप देना चाहे सभी को?
1: मेरा मैसेज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए आय का साधन जो है व्यवस्थित कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा जीवन शैली, और अपने मुरादाबाद को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो अपनी विरासत को हमें संभालना पड़ेगा, और लोगों को एक साथ मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इसमें कोई भी हम इस तरह की जो है भावना न लाएं कि हम ये हैं हम वो हैं, हम केवल मुरादाबादी हैं और अपने मुरादाबाद को प्रमोट।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन, स्काई हैंडीक्राफ्ट, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

0: मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। आज का हमारा शो ये बेहद खास होने वाला है, यानी कि लीगल टॉक्स, जहाँ हम बात करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट के बारे में, यानी सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी कानून। चाहे आप बाइक चलाते हो, कार चलाते हो या पैदल सड़क पार करते हो, ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या बिना हेट बाइक चलाने पर सिर्फ चलान होता है या और भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? ओवर स्पीड, शराब पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर कानून क्या कहता है? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी। तो सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रेडियो में। आप बताइए कि रेडियो में आकर आपको कैसा लगता है?
1: देखिए, मैं हर वीकेंड वेट करता हूँ कि कब आपका शो आए और मेरे को आप इन्वाइट करो यहाँ पे, और मैं जो हूँ अपने प्यारे जो लिसनर्स है कम्युनिटी रेडियो के, हमारे लिसनर्स है, उनसे मैं बात कर पाऊँ, उनको अवेयर कर पाऊँ, उनकी परेशानियों को दूर कर पाऊँ।
0: श्रोता तो हमारा इंतजार ही करते रहते हैं,
1: हम वेट करते हैं उनका कि हमारी उनसे कब मुलाकात होगी। और जो है, मैं भी बड़ा बेताब रहता हूँ कि मैं अपने लिसनर्स के जो उनके डाउट्स हैं या उनकी कोई लीगल अवेयरनेस है या उनको कोई भी लीगल हेल्प चाहिए तो उसको मैं गाइड कर पाऊँ उनको।
0: तो श्रोताओं, हम बातें करते रहेंगे, बस आपने कहीं नहीं जाना है, रेडियो की सुई बिल्कुल नहीं घुमानी है, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रहने, क्योंकि शो होने वाला है बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही खास, जिसमें आपको तरह तरह की जानकारियां मिलती रहती है। और मुझे लगता है कि हर चीज के बारे में जानकारियां हमें लेना हमारे लिए ही अच्छा है। कभी कभी किसी चीज के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके खिलाफ हम नहीं बोल पाते क्योंकि हम डरते हैं, और जब आपको पूरी जानकारी होगी तो आप आसानी से कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो सर, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट क्या है?
1: देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट भारत का एक वह कानून है जो सड़क पर चलने वाले सभी मोटर वाहनों, ड्राइवर, वाहन मालिक, लाइसेंस पंजीकरण, बीमा, सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक नियम और दुर्घटना से जुड़े जो भी अधिकार हैं, जो भी दायित्व को नियंत्रित करता है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना होता है और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित कराना होता है।
0: क्या हर वाहन चालक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है?
1: हाँ, बिना वह ड्राइविंग लाइसेंस के सार्वजनिक सड़क पर वाहन चलाना कानून का उल्लंघन है, और वाहन आपको डीएल तभी मिलता है जब आपको वाहन चलाना आता हो प्रॉपर, ठीक है, और बिना डीएल के अगर आप वाहन चलाते हैं तो गैर कानूनी है। तो लिहाजा जो है, अगर इसके लिए जो प्रावधान है, जुर्माना भी हो सकता है और कार्रवाई के तौर पे आपको सजा भी हो सकती है। तो आप कभी भी अगर कोई वाहन चलाते हैं तो वाहन के लिए आपको डीएल बनाना अनिवार्य है। आप पहले प्रॉपर परिवहन आरटीओ विभाग जाएं, वहाँ पे प्रॉपर आप अपने डीएल के लिए लाइसेंस के लिए आवेदन करें, डीएल बनवाएं, उसके बाद ही आप सड़क पे वाहन लेके आए। अधिकतर मैंने देखा आज की डेट में बच्चे स्कूल जाते हैं तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको स्कूटी दे देते हैं ऐसी।
0: हाँ, वही,
1: वो गलत है, वो इलीगल है। अगर आप बच्चा स्कूटी चलाते हुए किसी को हिट कर देता है या तो उसको भी चोट लग सकती है और सामने वालों को भी चोट लग सकती है, तो ये अपराध है।
0: लाइसेंस बनवाने के लिए सर एज लिमिट क्या होती है?
1: 18+ होनी चाहिए।
0: अच्छा, 18+ होना चाहिए,
1: बालिग होना चाहिए एटलीस्ट।
0: ओके, लेकिन तो आजकल अगर जेंजी की बात करूं तो वो 16-17 की एज में सड़कों पर ऐसे
1: इलीगल है, वो पेरेंट्स दे देते हैं, गलत है वो, तो आप ऐसे जो है बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के आप व्हीकल नहीं चला सकते।
0: क्या वाहन चलाते समय कौन कौन से दस्तावेज साथ होना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले तो आपका डीएल होना चाहिए जो आपको इशू किया गया है, वो गवर्नमेंट आईडी होती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आप रोड पे अपना व्हीकल लेके नहीं जा सकते। फिर जो आप वाहन चला रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट,
0: हाँ,
1: वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, उसको हम आरसी बोलते हैं। प्रॉपर जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं उसका इंश्योरेंस होना चाहिए,
0: चाहे वो स्कूटी हो, बाइक हो,
1: हाँ,
0: गाड़ी हो,
1: हाँ, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए,
0: पॉल्यूशन
1: पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन उसका डॉक्यूमेंट, पॉल्यूशन चेक होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आप व्हीकल चला रहे हो, ठीक है। और आवश्यकता होने पे अगर कोई परमिट की, कोई हैवी आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको किसी स्टेट का परमिट है तो परमिट भी आपके पास में होना चाहिए। इन सबकी डिजिटल कॉपी मान्य है, ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनली अपने पास में रखना है। डिजिटल कॉपी भी मान्य हो सकती है यदि कानून के अनुसार स्वीकार है वो चीजें, तो आप उसकी डिजिटल कॉपी भी आप रख सकते हैं।
0: तो सर जैसे आपने बोला कि कॉपी होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो चाहे स्कूटी चला रहे हो बाइक चला रहे हो, मतलब अपने साथ रखना,
1: सारा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी भी अपने मोबाइल पे रख सकते हैं, उसको आप दिखा सकते हैं।
0: अच्छा, फोन में भी है,
1: फोन में भी चल सकती है, गवर्नमेंट ने आप उसको वैलिड कर दिया, पहले नहीं था, तो अब आप अपनी डिजिटल कॉपी भी माने हैं। अगर कोई आप ट्रैफिक पे जा रहे हैं या आप स्कूटी से जा रहे हैं या कार से जा रहे हैं और वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है या चेकिंग हो रही है और वो आपसे कोई वैलिड आईडी मांगते हैं, आपका डीएल है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है या इंश्योरेंस है, तो आप उसको मोबाइल पे भी दिखा सकते हो। उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन है, वो प्रॉपर चेक कर लेंगे कि ये डुप्लीकेट तो नहीं है। अगर वो चीज ऑथेंटिक है, सही है, तो आपको जाने देंगे। वो
0: मान लीजिए सर कोई मेरा ही गाड़ी है, वो कोई और लेके जा रहा है, तो
1: वो गलत है, कायदे में तो आपको गाड़ी नहीं देनी चाहिए अपनी। लेकिन अगर आपने गाड़ी दे भी दी है तो उस गाड़ी के पेपर उसको दें, आप पोल्यूशन का सर्टिफिकेट दें, इंश्योरेंस की कॉपी दें, और जिसको आपने गाड़ी दी है उसका डीएल बना होना चाहिए।
0: अच्छा, उसका भी बना होना चाहिए,
1: उसका भी डीएल होना चाहिए। अगर आपने डीएल उसका नहीं बना हुआ है, पेपर आपके पूरे हैं, डीएल आपका है और गाड़ी दूसरा चला रहा है जिसके पास डीएल
0: नहीं है,
1: तो

0: भी गैर कानूनी है।
1: तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है सर, वो आजकल हर कोई भूल जाता है। क्या हेलमेट पहनना केवल चालक के लिए जरूरी है?
0: देखिए, अगर मैं अपने शहर की बात करूं तो यहाँ आप देखते ही हैं कि लोग जो है हेलमेट नहीं लगाना
1: नहीं
0: चाहते,
1: लगा चाहते।
0: तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है, और जो है इससे आपकी सुरक्षा भी होती है, प्लस आप जो है दोपहिया वाहन चलाते वक्त जो है चालक और पीछे व्यक्ति बैठा हो दोनों जो है हेलमेट पहनने रहते तो सुरक्षा की दृष्टि से भी और ये एक कानून की निगाह से भी मैंडेटरी है, तो आगे आज आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। तो कई परिस्थितियों में जो है कई बार ऐसा हो जाता कि हमने देखा कि अक्सर छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, हल्की सी टक्कर लग गई और डिसबैलेंस होकर गाड़ी गिर जाती है, तो क्या होता है सर पे बहुत ज्यादा गंभीर चोट लग जाती है उसकी वजह से, तो उसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो कानून के हिसाब से भी हेलमेट आपको लगाना चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी हेलमेट जरूर लगाना चाहिए आपको।
1: बहुत से देखा होगा सर आपने बोलते कि अरे 2 मिनट का तो काम ही है, यही जाना है, 2 कदम पर ही जाना है।
0: 2 मिनट का काम होता है लेकिन अगर ज्यादा कोई मिसहैपनिंग हो गई 2 मिनट के अंदर ही तो आप क्या करेंगे।
1: करेक्ट। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, सीट बेल्ट का क्या महत्व है?
0: सीट बेल्ट की भी यही मैंने प्रॉब्लम देखी है, लोग पता नहीं सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाते हैं।
1: एक तो बोल देते हैं हमने खाना खा लिया पेट में दर्द हो जाएगा अगर उसको पहन लेंगे तो
0: सीट बेल्ट
1: दबने लग जाएगा।
0: कानून के हिसाब से मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको सीट बेल्ट जरूर लगानी चाहिए, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो उस पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है, वो कानूनन अपराध की मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वो जो है अपराध माना जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि अगर सीट बेल्ट दुर्घटना के समय कोई दुर्घटना हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई होती तो कई ज्यादा गंभीर चोट आ जाती है, उससे क्या होता है कि जो है कई कैजुअलिटी डेथ तक हो जाती है। तो सीट बेल्ट अगर आप गाड़ी में लगा के ड्राइव कर रहे हैं और कोई मिसहैपनिंग होती है कुछ होती है तो हो सकता है साधारण चोट ही लगे, ज्यादा आपको चोट ना लगे और आपकी लाइफ बच जाए, तो सीट बेल्ट आपको कानून की दृष्टि से भी लगानी चाहिए और सुरक्षा की दृष्टि से भी लगानी चाहिए।
1: उसके साथ वाला जो बैठा होता है उसके लिए
0: अनिवार्य है, सीट बेल्ट सबके लिए अनिवार्य है तो लगानी चाहिए आपको।
1: सर कभी कभी जैसे कि मैंने ही देखा है कि वो सोचते हैं कि सामने पुलिस वाले तो है नहीं, सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्या ही हो जाएगा।
0: देखिए आप ये सोचिए कि भाई ठीक है मेरे को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी है तो आपको आदत डालनी पड़ेगी, है ना। तो आप ये सोचोगे से मुझे चालान से बचने के लिए हेलमेट पहनना है या चालान से बचने के लिए मुझे सीट बेल्ट पहननी है तो ये गलत है, इसको आप प्रैक्टिस में लाइए।
1: ओके।
0: जैसे आप डेली प्रैक्टिस में लाते हैं ना, आप सुबह ब्रश करते हैं, नहाते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये भी प्रैक्टिस में लाइए कि मुझे जब जाना है तो पहले मुझे गाड़ी खोलनी है, फिर उसमें प्रॉपर बैठ के मुझे सीट बेल्ट लगानी है, तब मुझे आगे ड्राइव करना।
1: आजकल तो कैमरे भी लगा दिए गए हैं ना कि सीधा पकड़े जाओ।
0: हाँ, वो जो ई चालान होते हैं वो आजकल ट्रैफिक पुलिस जो है वो ई चालान से भी अगर आपने गाड़ी में देखा कि आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो आपकी पिक्चर उसमें कैप्चर हो जाएगी, आपका चालान कट जाएगा उसमें,
1: यानी कि पॉकेट मनी कब उड़ जाएंगे।
0: टू व्हीलर पे भी ऐसी हो गया है कि आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपकी गाड़ी का नंबर ट्रेस हो गया, चालान कट जाएगा आपका उसमें।
1: ओके।
0: तो आप ये मत सोचिए कि मुझे चालान बचाने के लिए चीजें करनी है, आप ये सोचिए मुझे सुरक्षा की दृष्टि से भी करनी है।
1: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, शराब पीकर वाहन चलाने पर क्या परिणाम हो सकता है?
0: देखिए शराब पीकर तो वाहन चलाना ही नहीं चाहिए, ये गंभीर अपराध है, इसके कारण कई एक्सीडेंट्स भी देखे होंगे आपने, अधिकतर सुना होगा कि भाई वो कोई कैजुअल्टी हो गई तो पता चला कि ड्रिंक कर रखी थी उसने, शराब पी रखी थी, इसके कारण भारी अगर आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो बहुत हैवी पेनल्टी के साथ आपकी गाड़ी भी सीज हो सकती है, ठीक है, आपका व्हीकल भी सीज कर सकते हैं पुलिस वाले, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, प्लस आपको जेल भी हो सकती है, कारावास भी भेज सकते हैं वो, और प्लस आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है।
1: यदि सड़क दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए?
0: देखिए अगर सड़क दुर्घटना हो जाती है तो घायल व्यक्ति को आप कोशिश करिए कि सबसे पहले जो है अगर कोई पास में कोई पुलिस वाला दिख रहा है आपको तो आप उसकी उससे आप मदद मांग सकते हैं, एम्बुलेंस और पुलिस को आप सूचना भी दे सकते हैं, 112 नंबर पे आप कॉल करके पुलिस को भी बुला के सूचना दे सकते हैं। यदि संभव हो तो प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करें, कोई जैसे कोई ऑटो वाला जा रहा है उससे थोड़ी सी हेल्प मांग लीजिए, कोशिश करिए कि अगर वो बच सकता है तो उसे तत्काल हॉस्पिटल ले जाएं।
1: पर सर आजकल ये हो गया ना कि कोई किसी का हेल्प नहीं करता, उसके मन में एक ही डर होता है कि कहीं मैं ना फंस जाऊं।
0: देखिए ऐसा होता है कि जब एक एक्सीडेंट होता है अधिकतर भी हमने देखा तो पहले तो था कि पुलिस थोड़ा सा पूछताछ करती थी कि भाई कब हुआ क्या हुआ, लेकिन अब जो है हमारे हाई कोर्ट्स की और सुप्रीम कोर्ट्स की भी डायरेक्शंस आई हैं, अगर कोई घायल है या कोई दुर्घटना में घायल हुआ है तो ये तत्काल उसको मदद देनी है, पुलिस भी इसमें सहयोग करती है और आपसे कुछ नहीं उसमें पूछा जाता है, आपसे कुछ कोई भी उसमें पूछताछ नहीं होती है, कुछ नहीं होती है। आप अगर उसकी मदद करते हैं तो बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है। आप सोचिए आपने एक व्यक्ति के प्राण बचाए, तो अब जो है बहुत लोगों में चेंजेस आए हैं, लोग मदद भी करते हैं एक दूसरे की। तो आप ये सोचिए कि अगर किसी की कोई दुर्घटना हुई है, किसी को कोई इंजरी हुई है, तत्काल उसको नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे तो शायद वो उसके घर वाले आपको दुआएं देंगे अगर उसकी जान बच जाएगी, और आप किसी व्यक्ति के प्राण बचा पाएंगे। क्योंकि अगर एक्सीडेंट के केसेस में अगर आप वक्त पे किसी को फर्स्ट एड दिला देते हैं, ट्रीटमेंट दिला देते हैं, तो उसकी लाइफ बच सकती है।
1: थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है?
0: देखिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बोलते हैं यदि आपके वाहन से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन या उसकी संपत्ति को नुकसान हो गया, तो थर्ड पार्टी जो होती है इंश्योरेंस उस नुकसान की भरपाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो आपको नहीं देना पड़ता, जो आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराया है वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्लेम देती है। ये होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस।
1: यदि वाहन का बीमा नहीं हो तो क्या होगा?
0: देखिए, बिना वाहन के वैध बीमे के आप वाहन आपका सीज भी हो सकता है, ठीक है, और ये कानून का उल्लंघन है, इसके लिए जो भी दंडात्मक कार्रवाई है और फाइन है, पेनल्टी, वो भी पड़ सकती है। तो लिहाजा जो है आप वाहन का इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए आपको, और रिन्यूअल है तो रिन्यूअल भी जरूर कराएं।
1: तो श्रोताओं, यहाँ पर हम लेंगे म्यूजिकल ब्रेक, और आप सभी को मैं हमेशा बोलती हूँ कि हेलमेट और सीट बेल्ट लगाना बहुत जरूरी है, और मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: क्या बात है श्रोताओ, आपने बहुत
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंकवेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: दुबई प्रॉपर्टी शो, जहां दुबई के बेहतरीन और प्रतिष्ठित डेवलपर्स की शानदार प्रॉपर्टीज एक ही जगह पर उपलब्ध होंगी। रियल विजन इंफ्रा और आविरा एस्टेट दुबई प्रॉपर्टी, अब आपके शहर में। मिलते हैं 9 और 10 अक्टूबर 2026 को होटल हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद में। समय सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। हॉलीडे रिजेंसी मुरादाबाद।
0: असली हीरो वो नहीं जो बिना हेलमेट तेज रफ्तार से बाइक चलाए, असली हीरो वो होता है जो हेलमेट पहनकर ट्रैफिक नियमों का पालन करे, सुरक्षित अपने घर पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा होता है। याद रखिए, हेलमेट और सीट बेल्ट सिर्फ चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए है। सड़क पर आपकी एक गलती किसी और की जिंदगी भी खतरे में डाल सकती है। तो जब भी आप घर से बाहर निकले, चाहे 2 कदम के लिए निकले, चाहे आपको लॉन्ग सफर पर जाना है, आपने हेलमेट और सीट बेल्ट तो जरूर लगानी है, क्योंकि ये नियम है और इसका पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसमें हमारी ही भलाई है, किसी और की नहीं है श्रोताओं। तो चलिए अब सर से बात करते हैं, जो ये सिलसिला है इसको जारी रखते हैं। तो सर, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो बहुत, मुझे लगता है कि इसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। आजकल के जो जेंजी है, या फिर किसी और को भी सोच लीजिए, उनको रहती भैया हमें ना लेट हो रहा है, हमें जल्दी पहुंचना है, ओवर स्पीड क्यों गंभीर मानी जाती है?
4: देखिए, ये बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। अधिकतर हम भी अगर रोड पे जाते हैं तो मैंने बहुत से लड़के ऐसे देखा है, एक तो वो ट्रिपलिंग करके गाड़ी चलाते हैं, ऐसे उल्टा सीधा
0: वेव में चलाते हैं,
4: और फिर आप सिटी के अंदर देखिए, वो इतनी हाई स्पीड में, ओवर स्पीड में वो गाड़ी चलाते हैं कि सामने अगर कोई आ जाए तो उसको भी चोट लगेगी और इनको भी चोट लगेगी,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
4: और उसमें किसी की जान भी जा सकती है। तो अधिक गति से वाहन चलाने पर अगर आप चलाओगे तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा, सबसे बड़ी चीज, अगर एकदम आपको ब्रेक मारने तो, और आप ब्रेक मारोगे भी तो गाड़ी स्किप हो जाएगी, आपकी फिसल सकती है। तो ये भी एक कानून, मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ये कानूनन अपराध है, उल्लंघन कानून का, तो इसपे भी फाइन हो सकता है और आपकी गाड़ी और आपका ड्राइविंग लाइसेंस दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं। तो ओवर स्पीड आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी गंतव्य तक जा रहे हैं तो आप ये सोचिए मुझे आराम से चलाना है, ड्राइविंग है ना, जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी है आपको, और जो है आप अपनी भी केयर करिए, सामने वाले की भी केयर करिए।
0: सर, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि वो बाइक भी चला रहे होते ना, तो एक बार हैंड फ्री होके चलाते
4: हैं। हाँ, तो वो सब चीजें गलत हैं। वो एक स्टंट जो ये आजकल देखते हैं, जो बच्चे स्टंट वगैरह दिखाते हैं, तो ये गलत है। और इस पे हमारी, मैं तो एक अपील करूंगा हमारी मुरादाबाद पुलिस से भी कि तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं वो, अगर कहीं भी देखते हैं, जो करते भी हैं वो लोग
0: स्टंट मारते
4: हैं। हाँ, ये गलत है। इससे कई सड़क पे बुजुर्ग बच्चे जाते हैं, उनको भी कई बार चोटिल होते हुए देखा गया है। तो निश्चित तौर पे ये गलत है और ये कानून का उल्लंघन है।
0: सो अगला भी क्वेश्चन सर बहुत इम्पोर्टेंट है, मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए वाहन चलाना कितना खतरनाक है?
4: देखिए, मोबाइल फोन पर अगर आप बात कर रहे हैं या कोई व्हाट्सएप पे कोई संदेश पढ़ रहे हैं, तो आप सोचिए आप मोबाइल पे देख रहे हैं और एक तरफ आप व्हीकल भी चला रहे हैं, तो सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे उससे आप अपने आप को बचा पाओगे, कैसे डिफेंस कर पाओगे? तो मोबाइल पे चलाने देखते हुए करते हुए कभी गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना, उससे एक्सीडेंट का खतरा पैदा हो, तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर इस पे भी जुर्माना है।
0: अच्छा, बहुत से सर ये कहते हैं कि अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से चला लेंगे, मैं फोन भी दोनों कर लेता हूँ।
4: इसपे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, अगर आप मोबाइल बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं तो इसपे भी आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है, आपकी गाड़ी का जो परमिट कैंसिल भी हो सकता है, आपके ऊपर जुर्माना भी पड़ सकता है। तो उस समय जो भी नियम अनुसार जो कार्रवाई होती है पुलिस करती है उसमें।
0: यदि ट्रैफिक पुलिस चालान काटे तो नागरिक क्या करे?
4: देखिए, ट्रैफिक पुलिस अगर चालान काट रही है तो आप पहले तो आपको शांत रहना है, कोई आपको एग्रेशन नहीं दिखाना है, ठीक है, कोई सोर्स लगाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रॉपर एक जेन्युइन उसे आप रीजन पूछिए कि आप मेरा चालान क्यों काट रहे हैं, क्या रीजन है। अगर आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट्स आप उसको दिखाइए, अगर आप अपनी जगह ठीक है, आप प्रॉपर गाड़ी सही से चला रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, वो जो कागज मांग रहे हैं आप उनको कागज अवेलेबल कराइए, और अगर आपको लगता है आपसे गलती हुई है तो आप कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए जो भी आपके ऊपर फाइन लगता है उसको आपको पे करना चाहिए।
0: ओके, मोटर दुर्घटना दावा अधिकार क्या है?
4: देखिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसे MACT बोलते हैं, MACT, ये एक न्यायिक मंच है जहाँ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या जो भी मृतक होते हैं, जो भी जिसकी डेथ हो जाती है, उसके परिजन जो होते हैं उनको मुआवजा मिल सकता है। उसमें आप क्लेम डालिए तो आपको क्लेम मिलता है उसमें।
0: सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर, दुर्घटना में मुआवजा किन लोगों को मिल सकता है?
4: देखिए, घायल व्यक्ति यदि कोई या कोई स्थायी विकलांगता से पीड़ित हो गया या व्यक्ति या दुर्घटना में मृत्यु होने पर कानूनी आश्रित जो भी होते हैं उसके, जो भी उसके ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार दावा कर सकते हैं, तो वो आपको कोर्ट में दावा करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्लेम मिलेगा।
0: सर, अगला क्वेश्चन भी हमारा बहुत ही शानदार है कि आज CCTV फुटेज और डैश कैम रिकॉर्ड साक्ष्य बन सकते
4: हैं? बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। आज की गाड़ियों में जो है, जो हमने देखा डैश कैम तो सारी गाड़ियों में मोस्टली आ रहा है, इतनी एडवांस हो गई है, क्योंकि अगर आप कहीं जा रहे हो, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो डैश कैम से कई ऐसी चीजें हमें सामने वाले की गलती पकड़ में आ जाती है। अगर दो गाड़ियों की टक्कर लगती है तो दोनों बोल देंगे कि भाई मेरी गलती नहीं थी, उसमें हम गलती कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो अगर आपकी गाड़ी पे डैश कैम लगा होता है तो डैश कैम क्या करता है, वो एक्चुअल जो आपकी जो जब आप ड्राइव कर रहे हो वो एक्चुअल सारी मूवमेंट्स को कैप्चर करता रहता है।
0: सर, डैश कैम है क्या?
4: डैश कैम एक तरीके का कैमरा होता है, CCTV कैमरा होता है, वो आपकी गाड़ी में लगा होता है, वो रिकॉर्ड करता है प्रॉपर,
0: मतलब वो जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है?
4: हाँ, पता क्या, वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है वो।
0: अच्छा,
4: वो गाड़ी में इनबिल्ट फीचर होता है। आजकल गाड़ियां ऐसी आ रही है उसमें डैश कैम लगा होता है, आप कहीं जा रहे हैं तो सामने से भी जो गाड़ी आ रही है उसको भी कैप्चर करता है, पीछे आपकी गाड़ी के वो भी कैप्चर होता है। तो अगर कोई भी मूवमेंट होता है ऐसा, तो डैश कैम के थ्रू वो एज एन एविडेंस बन सकता है कि भाई किसने टक्कर मारी थी, किसकी गलती है, वो ऑन द मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है। अगर कोर्ट में केस जाता है तो उसको हम वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हैं,
0: मतलब ऑटोमेटिक वो चालू हो जाता है जैसे
4: रिकॉर्डिंग, जैसे आपके CCTV कैमरे लगे होते हैं तो वैसे एक तरीके का गाड़ी में CCTV कैमरा लगा होता है, तो उसमें मेमोरी होती है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड करती रहती है, तो एज एन एविडेंस का काम करती है वो।
0: सड़क पर वाहन चलाते समय सबसे बड़ी कानूनी जिम्मेदारी क्या है?
4: देखिए, कानूनी जिम्मेदारी आपकी यही है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो एक वैलिड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, गाड़ी के प्रॉपर पेपर्स होने चाहिए, इंश्योरेंस पॉल्यूशन, और आप अपनी साइड पे ही चलें, कभी भी रॉन्ग साइड ना चलें और कभी भी ओवर स्पीडिंग ना करें, बस यही दो तीन चीजें हैं।
0: सर, जो आजकल की जेन जी आम नागरिक है और जो गर्ल्स है, विमेन है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
4: देखिए भाई, मैं तो यही बोलूंगा कि सड़क पर जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, आपको आराम से व्हीकल चलाना है, जिम्मेदारी दिखाइए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, नशे में वाहन ना चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित सफर ही सबसे बड़ी मंजिल है। और अगर उसके बाद भी आप मेरी बात नहीं मानते तो मुरादाबाद पुलिस आपकी सेवा में तत्पर है।
0: वो तो है सर।
4: तो फिर उसके बाद फिर आप जो है, आपको प्रॉब्लम आएगी तो आपको कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो बेटर है कि आप जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है

0: भी लॉज है उसको आप फॉलो करें।
1: तो चलिए श्रोता, ये शो हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आज की बात से हमें यही समझ आई कि सड़क पर सुरक्षा हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना सिर्फ कानून का डर नहीं बल्कि अपने और दूसरों के जीवन का सम्मान करना है। घर निकलते समय हमेशा हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करें और कभी भी शराब पीकर वाहन न चलाएं। छोटी सी सावधानी आपकी और आपके परिवार की खुशियाँ हमेशा सुरक्षित रख सकती हैं। और सुनते रहे FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
2: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6। रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो आप सभी के लिए बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हैंडीक्राफ्ट्स, जहाँ हाथों की कला, हुनर और मेहनत मिलकर खूबसूरत हस्तशिल्प को जन्म देती है। आखिरकार एक हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट के पीछे कितनी मेहनत होती है, कारीगरों के हुनर को बाजार तक पहुँचाने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और बदलते समय के साथ हस्तशिल्प की दुनिया कैसे बदल रही है, और SKI हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हमारे खास मेहमान, तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप पहले भी हमारे साथ रूबरू हो चुके हैं, तो आज आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी पहली बात तो आपके बारे में।
1: मेरा नाम राजेश खन्ना है और मैं पिछले 30 सालों से इंडस्ट्री में कार्य कर रहा हूं, और मैंने ये देखा है कि पैकेजिंग इंडस्ट्री के साथ साथ कि मुरादाबाद से कितना ज्यादा एक्सपोर्ट और लोकल में माल जाता है, वो सब हमारे कॉरोगेटेड बॉक्स में ही जाता है। मेरी इच्छा थी कि मैं एक बार इस फील्ड में कदम रखूं, तो ब्रास के लिए मैंने एक आइडिया मेरे मन में आया, मैंने एक शोरूम की स्थापना करने का मन बनाया।

0: लगा तो हमने ब्रास काम बचपन से देखा, तो मेरी एक इच्छा थी जो मेरा घर में काम चला 10 साल उसी काम को मैं आगे बढ़ाऊं।
1: सर, SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत आपने कैसे करी?
0: देखिए, ब्रास का जो इतिहास है मुराद में हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, लगभग 450 साल पुराना है। 450 साल पहले शाहजहां के पुत्र मुराद ने जो ये शहर बसाया मुरादाबाद, इसकी खास बात ये थी कि ये रामगंगा किनारे जो रेत है बहुत बारीक है, जो ढलाई के काम में बहुत ज्यादा मतलब बेनिफिशियल रहता है। उस वजह से यहाँ पर ढलाई का काम स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे ये काम बढ़ता चला जा रहा है। तो वो आइडिया जो है मेरे मन में था कि ये क्यों ना विरासत वाला काम स्टार्ट किया जाए, उसको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म शोरूम के रूप में देना चाह रहे हैं जो अब तक माल मुरादाबाद से बाहर के मार्केट में बिक रहा था, अब वो सीधे मुरादाबाद के लोगों को मिले शोरूम के माध्यम से।
1: तो सर, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 12 तारीख को ही SKI हैंडीक्राफ्ट की शुरुआत यानी कि ओपनिंग आप क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि फेस्टिवल सीजन है तो कुछ तो आपके दिमाग में आइडिया आया होगा कि 12 तारीख को ही हमें ओपनिंग करना है।
0: मैम, 12 तारीख को सेकंड नवरात्र है और जो नारी शक्ति के लिए नवरात्र की पूजा होती है, ये काम जो है मैंने अपनी मैडम नेहा खन्ना के नाम से स्टार्ट किया है। ये पूरा रजिस्ट्रेशन उनके नाम से ही है। उनका मन था कि मैं कुछ करूं, तो उन्हें मुरादाबाद के इस काम में जो है इंटरेस्ट था और काफी उन्होंने जो है मेरे को सहयोग भी किया है, तो उस वजह से मैंने नवरात्र में ये काम चालू किया है।
1: सर, दिवाली और दूसरे त्योहारों में लोग घर को सजाने के लिए कुछ यूनिक ढूंढते हैं, तो SKI हैंडीक्राफ्ट्स में ऐसा क्या खास मिलेगा जो घर की सजावट को एक अलग ही लुक दे सकते हैं? मतलब क्या एक अलग यूनिक है आपके पास प्रोडक्ट?
0: एक तो मैम, हमारे यहाँ एक खास बात यह है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, वैसे तो सारा हैंडीक्राफ्ट अपने आप में यूनिक ही होता है क्योंकि हाथ से बना हुआ किसी कारीगर के हाथ के द्वारा बना होता है। हमने कुछ ब्रास के ऐसे आइटम सेलेक्ट करे हैं, जैसे कि अभी करवा चौथ आ रहा है तो उसमें पीतल के करुए हम दे रहे हैं, कॉपर के कुछ ऐसे यूटेंसिल हैं जो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और चूंकि चांदी महंगी हो गई है तो चांदी की उर्ली रखना संभव नहीं है आज की तारीख में, तो ब्रास पे अगर हम चांदी की पॉलिश करके रखते हैं तो सेम चांदी की उर्ली से ज्यादा अच्छी ये हमारी ब्रास की लगती है। तो इस तरह के कुछ पर्टिकुलर ऐसे आइटम है जो आपको मार्केट में आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे।
1: SKI हैंडीक्राफ्ट्स के प्रोडक्ट को आपकी प्रोडक्ट से क्या अलग बनाता है जो लोग आप तक कनेक्ट हुए?
0: SKI हैंडीक्राफ्ट्स जो है ना, एक विरासत को आगे लेके आया, जैसे कांसा है, अभी जो है काफी हद तक कांसा मार्केट से गायब हो चुका है। अगर हम ऐसे प्रीमियम प्रोडक्ट जरूर रख रहे हैं कि वो महंगा भले ही हो मतलब अपने कॉस्ट के हिसाब से, बट बेनिफिशियल है, तो वो जो है मार्केट में इजीली नहीं अवेलेबल आज की तारीख में।
1: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट की जो प्रोडक्ट होती है उसमें मेहनत कितना लगता है? क्योंकि हर काम में मेहनत बहुत मायने रखता है और देखा जाए तो अभी ऑनलाइन का जमाना है, आजकल हर कोई यही सोचता है कि ऑनलाइन ले लेते हैं, लेकिन जो हाथ से बनाई हुई चीजें होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: उसके पीछे का प्रोसेस जो है केवल डेडिकेशन है। कोई भी आप देखिए, कोई भी चीज बनाते हैं हाथ से तो उसमें कितना टाइम लगता है, उससे आपकी ना एक मन की भावना आस्था जुड़ जाती है। तो हैंडीक्राफ्ट भी सेम ऐसी चीज है कि कोई चीज आपने ब्रास की या किसी भी चीज की, देखिए कि मेरी नानी या मेरी दादी का ये बर्तन यूज होता था या ये फूलदान यूज होता था, तो आपके उसे आपकी आस्था जुड़ जाती है। तो यही सब चीजें जो है हैंडीक्राफ्ट को विशेष बनाती है।
1: सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आपके साथ आपके बेटे हैं और आपके दोस्त हैं, तो क्या ये भी आपके साथ ही आपके काम में हेल्प करते हैं? तो आप इनके बारे में खुद ही बता दीजिए, फिर इनकी तरफ भी हम बढ़ेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे आराम से शांत बैठे हुए हैं कि हमारे पास नंबर नहीं आएगी, लेकिन आने वाली आपके पास भी नंबर, बस थोड़ा सा इंतजार करिए आप। तो सर, आप पहले इनके बारे में बताइए।
0: हाँ, ये दोनों मेरे साथ एसोसिएट हैं और मेरे इस वर्क में मेरे को हेल्प करते हैं और इनकी स्टडी भी बिजनेस की है, तो उस पे ही वर्क ये आगे बढ़ा रहे हैं अपना।
1: तो आर्यन जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, जैसे कि आपके फादर साहब ने बताया कि उनके फादर साहब भी पीतल का ही काम करते थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने फादर के साथ ही काम करूंगा और अपने जो हमारा बिजनेस है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो आपके दिमाग में कैसे आइडिया आया कि इसको और ग्रो अप करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो बहुत ऑप्शन है, आप कुछ और भी कर सकते हैं क्योंकि आपकी एजुकेशन ही अलग है। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या ख्याल आया कि आपने सोचा कि बस पापा के साथ ही काम करेंगे और इसी बिजनेस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं?
2: हाँ, काफी टाइम से जब हम ऑलरेडी कॉरोगेटेड बॉक्स का काम हो रहा है, तो जब सैंपलिंग होती थी तो उस हिसाब जब मैं देखता था कि अच्छे अच्छे डिजाइन आ रहे हैं, तो मैंने लोकल मार्केट में देखा तो वो डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थे, वो सब डिजाइन बाहर एक्सपोर्ट हो जाते थे। तो इसीलिए हम यहाँ पर अपना शोरूम लेके आ रहे हैं, जहाँ पर जो एक्सपोर्ट क्वालिटी के आइटम्स होंगे और फिनिश होगी वो हम मुरादाबाद के लोगों को देना चाहेंगे।
1: तो आपके यहाँ ट्रेडिशनल ओरिजिनल डिजाइन और मॉडल डिजाइन

0: भिन्न को मिल सकता है, कुछ क्या अलग है आपके पास?
1: हाँ, एक काफी बेहतरीन कॉम्बो है हमारे यहाँ, ट्रेडिशनल में ब्रास का, मॉडर्न में पियानोस का, और बाकी काफी कॉम्बिनेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने जब मार्केट में रिसर्च करी इस बारे में, तो हमें बहुत जगह जा जाकर हमने बहुत लिमिटेड डिजाइन्स को फाइनलाइज करके अपने शोरूम में लेके आए हम, और आपको वही सब देखने को मिलेगा 12 तारीख को एसके हैंडीक्राफ्ट के शोरूम दिल्ली रोड।
0: तो आर्यन जी, हमारा अगला क्वेश्चन है SKI हैंडीक्राफ्ट्स को लेकर आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, किसको और कैसे ग्रो अप करवाना है?
1: एसके हैंडीक्राफ्ट्स के शोरूम के साथ साथ हम ऑनलाइन भी एंट्री ले रहे हैं, और पहले तो हम मुरादाबाद के लोगों को केटर करेंगे, पहले मुरादाबाद के लोगों को सर्व करेंगे, उसके बाद हम पूरे डोमेस्टिक, पूरे पैन इंडिया हम अपना ब्रांड को लेके जाएंगे आने वाले समय में।
0: तो राजेश जी, अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, हैंडीक्राफ्ट की चीजें मशीन मेड प्रोडक्ट से अलग होती है, एक ग्राहक SKI से कोई प्रोडक्ट खरीदते समय कैसे समझ सकता है कि यह एक हैंडमेड आर्ट प्राइस खरीद रहे हैं?
2: हमारे पास जो है सर्टिफिकेट भी है, और हमारे पे गुरु हैं श्री चिरंजी लाल यादव जी, जिन्होंने अभी भारत का एक बहुत अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सम्मान पाया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। उनके द्वारा कुछ निर्मित चीजें हम जो है अपने शोरूम में रखने की हमारी बात चल रही है, जो 100% हैंडीक्राफ्ट है। इसके अलावा हम जो है जो भी प्रोडक्ट रहे हैं उनमें मात्र 20-30% ही जो है मशीन मेड है, बाकी 70% उस प्रोडक्ट पे हाथ से काम हुआ है। हमारे गुरुजी श्री चिरंजी लाल यादव जी को पद्म विभूषण अवार्ड जो मुरादाबाद के 100% हैंडीक्राफ्ट के लिए मिला है, वो हमारे मुरादाबाद की एक तरह से गौरव की बात है। तो उसी गौरव को हम कायम रखते हुए हम 100% जो हैंडीक्राफ्ट से हैंडमेड आइटम है वो रखेंगे, और जो भी हमारे आइटम होंगे वो केवल 20-30% ही जो है मशीन मेड होंगे, बाकी उसमें 70% काम हाथ से या हैंडमेड से ही किया गया हुआ हो।
0: तो सर, मेरा अगला क्वेश्चन है, अगर कोई ग्राहक पहली बार SKI हैंडीक्राफ्ट में आए, तो आप चाहेंगे कि वह सिर्फ शॉपिंग करने ना जाए, बल्कि यहाँ से भारतीय कला और कारीगरों के हुनर की कौन सी याद लेकर जाए?
2: इस मंच के माध्यम से मैं पूरे मुरादाबाद को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि ये SKI हैंडीक्राफ्ट का जो शोरूम है वो एक तरह से एग्जीबिशन है, जो एक आम पब्लिक के लिए खोल दी गई है। आप लोग आइए, यहाँ पर अनुभव कीजिए कि जो है हैंडीक्राफ्ट में हम क्या क्या कर रहे हैं मुरादाबाद में, और हम फर्नीचर में, हम टेबल वेयर में या शो पीस में कितने भी आइटम जो मुरादाबाद में बनते हैं उसके हम कुछ कुछ जो है सैंपल हम यहाँ रखेंगे, और पूरे मुरादाबाद को अनुभव कराएंगे एक्सपीरियंस सेंटर के माध्यम से कि हैंडीक्राफ्ट में हम कितना अच्छा कर पा रहे हैं।
0: सर, हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि 12 अक्टूबर को SKI हैंडीक्राफ्ट की ओपनिंग है, तो आपके पास ऐसा एक खास कोई अलग क्या यूनिक प्रोडक्ट है जिससे लोग आपके साथ कनेक्ट हुए, और क्यों कनेक्ट हुए? कुछ तो आपके पास खास होगा ना, तो आप बताइए कि जो सोचे कि हम इस ओपनिंग में नहीं गए तो बहुत सी चीजें हमने मिस कर दी, तो ऐसा क्या खास है?
2: हम जो है जो हमारे 12 अक्टूबर के इनॉग्रेशन में सम्मिलित होगा उसको हम जो है अपने लिगेसी में शामिल करेंगे, और स्पेशल ऑफर उनको जो है हम पेशकश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वो अगर आते हैं तो उन्हें नया कुछ एग्जीबिशन के टाइप का देखने को मिलेगा, कल को वो कुछ और भी जो है अपने विचार हमें बता के नए डेवलपमेंट हमसे करवा सकते।
0: तो सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, अगर कोई आपके पास आना चाहे तो लोकेशन क्या है?
2: बहुत सिंपल लोकेशन है, मुरादाबाद आपके गागनपुर दिल्ली से रोड से लेकर और प्रेम मंडल तक सिचुएटेड है, उसी बीच में सारा मुरादाबाद जो है आता है। हमारा जो है मेन रोड NH 24 पर कुंदन पेट्रोल पंप के पीछे जूडियो के सामने, और उसकी लोकेशन यूनियन बैंक के सामने है, और बहुत इजी अप्रोच है। आप NH 24 पे आप किसी से पता कीजिए, कुंदन पेट्रोल पंप कोई भी बता दे।
0: तो एक मैसेज जो आप देना चाहे सभी को?
2: मेरा मैसेज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम देने के लिए हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करें, जिससे लोगों को रोजगार मिले, हर एक व्यक्ति अपने परिवार के लिए आय का साधन जो है व्यवस्थित कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अच्छा जीवन शैली, और अपने मुरादाबाद को डेवलपमेंट की ओर लेके जाना है तो अपनी विरासत को हमें संभालना पड़ेगा, और लोगों को एक साथ मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक साथ मिलकर काम करना है। इसमें कोई भी हम इस तरह की जो है भावना न लाएं कि हम ये हैं हम वो हैं, हम केवल मुरादाबादी हैं और अपने मुरादाबाद को प्रमोट।
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
4: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
4: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
5: कॉल 7500153841।

0: नमस्कार। प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर के रेहरा बाजार विकास खंड के बिलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में बलरामपुर के लिए 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है। भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
1: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में मां पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
0: मुख्यमंत्री कल सुबह देवीपाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी देवी का दर्शन पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वर्ष 2017 के बाद कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। उन्होंने अन्नदाता किसान को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ताकत और समृद्धि का आधार भी बताया। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार आज अन्नदाता किसान को बीज से लेकर बाजार तक की सुविधा उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दशकों से लटकी सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण हुई हैं। प्रदेश देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 21% का योगदान कर रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने सीजेपी की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक

0: व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। उधर रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ी रद्द कर दी। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात जाम की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। यह अभियान फिट इंडिया और नशा मुक्त समाज के निर्माण की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है। इस कार्यक्रम में उन खिलाड़ियों को भी शामिल किया जाएगा जिन्होंने 2026 के आईची नागोया एशियाई खेलों में अपने प्रदर्शन से देश का नाम रोशन किया। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए सरकार की इन पहलों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
2: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो माँ को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
3: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मां विंध्यवासिनी धाम में जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पर्यटन विभाग की तरफ से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: विंध्याचल व उसके आसपास के मंदिरों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूरे मेला क्षेत्र को सुरक्षा की दृष्टि से 10 जोन और 21 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था में कुल 2,526 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस अधीक्षक अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि मेला क्षेत्र की निगरानी के लिए 222 सीसीटीवी कैमरे और 4 ड्रोन लगाए गए हैं। वहीं रामनगरी अयोध्या में नवरात्र को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या मंडल के 5 जिलों में लगभग 10,000 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। इस बार शारदीय नवरात्र में प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में शक्ति आराधना के साथ महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन का संदेश गूंजेगा। मिशन शक्ति के तहत 17, 18 और 19 अक्टूबर को प्रदेश के चयनित मंदिरों में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। सहारनपुर में आज एक सड़क हादसे में 4 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा देवबंद में हाईवे स्थित फ्लाईओवर पर उस समय हुआ जब मां शाकंभरी देवी के दर्शन कर माता की ज्योत लेकर श्रद्धालु पदयात्रा करते हुए लौट रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर शोक जताया है। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बलरामपुर में 803 करोड़ रूपये से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। रेलवे ने कई ट्रेनें की रद्द। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। और कल से शुरू हो रहे शारदीय नवरात्र को लेकर प्रदेश भर के देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में तैयारियां पूरी। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
5: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट RJ राज, और कर रहा हूं आपसे बात। तो दोस्तों, आज फिर आप सभी का स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में जो आपको सतर्क कर रहा है। ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से। आज हम बात करेंगे आपके मोबाइल फोन और UPI से जुड़ी सुरक्षा के बारे में, क्योंकि आज आपका मोबाइल सिर्फ फोन नहीं बल्कि आपका बैंक है। तो दोस्तों, आखिर मोबाइल और UPI सुविधा भी आपके लिए खतरनाक हो सकती है, इस पर बात करेंगे। दोस्तों, आज हम मोबाइल से पैसे भेजते हैं, बिल जमा करते हैं, खरीदारी करते हैं और साथ में बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन जरा सी लापरवाही आपका पूरा बैंक बैलेंस लीक कर सकती है। इसी लापरवाही का फायदा उठाते हैं साइबर ठग। तो चलिए आपको एक ड्रामे के जरिए मैं सारी बात समझाता हूँ। रमेश, हेलो, उधर से आवाज आती है। मैं आपके बैंक से बोल रहा हूँ सर, आपके बैंक अकाउंट में संदिग्ध निशान हुई है। क्या, मेरा पैसा सुरक्षित है ना? हाँ सर, बस सुरक्षा के लिए आपके फोन पर जो OTP आएगा वह बता दीजिएगा। OTP आया है, मैं बता देता हूँ। अरे, मेरा अकाउंट तो खाली हो गया और पैसे कट गए हैं। और इस तरह रमेश UPI फ्रॉड का शिकार हो जाता है। आखिर UPI और मोबाइल फ्रॉड कैसे होता है? दोस्तों, मोबाइल और UPI फ्रॉड आम तौर पर इन तरीकों से होता है। बैंक अधिकारी बनकर कॉल किया जाता है, OTP या UPI पिन मांगा जाता है, फर्जी ऐप इंस्टॉल करवाए जाते हैं, स्क्रीन शेयर करवाई जाती है, रिफंड या इनाम का लालच दिया जाता है। याद रखिए, OTP और UPI पिन सिर्फ आपके लिए ही है। खतरे के संकेत, अगर कभी ये बातें हो तो समझ जाइए खतरा है। कोई OTP या आपका पिन पूछे, जल्दी करने का दबाव डाले, कहे अकाउंट बंद हो जाएगा, अनजान ऐप डाउनलोड करवाए, तो असली बैंक कभी ऐसा नहीं करता है। मोबाइल और UPI को सुरक्षित कैसे रखें? दोस्तों, इन आसान नियमों को अपनाइए। OTP, UPI पिन किसी को ना बताएं। मोबाइल में लॉक और बायोमेट्रिक रखें। केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। फोन और एप्स को अपडेट रखें। पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग ना करें, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। खासकर मैं सलाह देना चाहूंगा बुजुर्गों और बच्चों को। श्रोताओं, UPI और मोबाइल फ्रॉड के शिकार ज्यादातर बुजुर्ग, बच्चे, नए स्मार्टफोन यूजर, अधिकतम तकनीकी जानकारी वाले लोग होते हैं। इसलिए कोई भी कॉल आए तो पहले परिवार से पूछें, ओटीपी को चाबी समझें, किसी को बिल्कुल ना दें, शक हो तो कॉल तुरंत काट दें। अगर गलती से आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो पैसे कट गए हो, ओटीपी शेयर हो गया हो, गलत ऐप इंस्टॉल हो गया हो तो देर ना करें, कॉल करें 1930। हाँ जी, शिकायत दर्ज करें www.cybercrime.government.in पर। जितनी जल्दी शिकायत उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना। साइबर सुरक्षा की जानकारी के लिए आप www.staysafeonline.com पर भी विजिट कर सकते हैं। मोबाइल और यूपीआई सुरक्षा के लिए 5 सुनहरे नियम। ओटीपी और पिन कभी साझा न करें। बैंक बनकर आने वाली कॉल पर भरोसा न करें। अनजान ऐप और लिंक से बचें। मोबाइल को हमेशा लॉक रखें। डर नहीं, समझदारी से काम लें। श्रोताओं, डिजिटल भुगतान आसान है लेकिन सावधानी के बिना खतरनाक। मोबाइल आपका साथी है, उसे सुरक्षित रखिए। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की ओर से। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़, आपके शहर का पहला रेडियो स्टेशन जो आपको कर रहा है सतर्क फ्रॉड से, ताकि आप बच सकें। तो दोस्तों, जैसा कि इस कार्यक्रम में बात हुई कि आपका UPI, हां जी, उसकी वजह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ये बात तो आप भी मानेंगे कि आपका ये जो स्मार्टफोन है सिर्फ एक स्मार्टफोन नहीं है, ये आपका बैंक है। आप कहीं भी जा रहे हैं तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं तो सावधान होकर करें, क्योंकि कभी कभी गलत QR कोड से भी आपका नुकसान हो सकता है और शायद आपका पैसा जा सकता है। हम सभी को पता है पैसा कमाने में जितनी मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर वो गलती से कोई आपसे ले ले बिना आपकी परमिशन से, तो शायद सबसे ज्यादा नुकसान हम ही को होता है। तो सतर्क रहें, सेफ रहें। ये महत्वपूर्ण जानकारियां आपको मिलती रहेंगी FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ के माध्यम से। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आर्जराज। अभी के लिए लेता हूं यहां से अलविदा। तो स्टे सेफ। बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: रोबोटिक्स, ऑटोनोमस 5G, AI एजेंट, सभी के लिए डिजिटल पहुंच और बहुपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। दिल्ली यातायात पुलिस ने जंतर मंतर और आसपास के क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात परामर्श जारी किया। सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं, लेकिन विपक्षी पार्टियां चुनावी हार की भरपाई के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के मामले में दोषी करार। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, करमपुरा मोतीनगर फ्लाईओवर मरम्मत के कारण 29 अक्टूबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। दसवीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गई। नई दिल्ली के यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में 4 दिन के इस आयोजन में कई महत्वपूर्ण चर्चाएं, बहुपक्षीय सहयोग और प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन हुआ। इससे ग्लोबल डिजिटल क्रिएटर के रूप में भारत की स्थिति और मजबूत हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीमाओं के बिना विस्तार के विषय पर आधारित इस आयोजन के आखिरी दिन उच्च स्तरीय नीति और मानकीकरण को जमीनी स्तर पर लागू करने पर बल दिया गया।
1: इस आयोजन में एग्री फूड सिस्टम में AI के इस्तेमाल, युवाओं के नेतृत्व में फ्रंटियर रोबोटिक्स, ऑटोनोमस 5G AI एजेंट और लास्ट माइल डिजिटल डिलीवरी की प्रशासनिक जरूरतों पर ध्यान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी IP और सॉवरेन सेमीकंडक्टर के विजन के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन करने से लेकर संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा ग्लोबल 6G पेटेंट का 10% हिस्सा हासिल करने के भारत के लक्ष्य पर बल देने तक इस आयोजन ने देश के टेक्नोलॉजी के उपभोक्ता से ग्लोबल टेलीकॉम स्टैंडर्ड के निर्माता बनने की यात्रा को मजबूत किया। पिछले 4 दिनों में इस आयोजन ने दिखाया कि भारत की डिजिटल गाथा अब सिर्फ रोल आउट और विस्तार तक सीमित नहीं है। ये इंटरनेशनल बेंचमार्क तय करने, सॉवरेन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने और मकसद आधारित इनोवेशन को आगे बढ़ाने के बारे में है। बेहतरीन नवाचार और उद्यमिता में शानदार कार्य के लिए स्काई एयर मोबिलिटी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में आयोजित स्टार्टअप वर्ल्ड कप इंडिया रीजनल स्पर्धा जीती। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में आज हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण यातायात परामर्श जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज सवेरे 6 बजे से मौके की स्थिति के आधार पर राजधानी के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात बदलाव किए जा रहे हैं।
2: शंकर रोड, वंदे मातरम मार्ग, टी पॉइंट, धौलाकुआ फ्लाईओवर, झंडेवालान, पचकुया, मंडी हाउस, मिंटो रोड, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर और कनॉट प्लेस सहित कई प्रमुख स्थानों पर यातायात प्रभावित है। इसके अलावा मदरसा टी पॉइंट, सरदार पटेल मार्ग, पंचशील मार्ग क्रॉसिंग और संसद मार्ग सहित विभिन्न क्षेत्रों में भी यातायात नियंत्रित किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन, अंतर्राज्यीय बस अड्डों और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर चलने की सलाह दी है। पुलिस ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। साथ ही यातायात की ताज़ा जानकारी के लिए दिल्ली यातायात पुलिस के आधिकारिक माध्यमों पर नज़र रखने की भी सलाह दी गई है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
0: दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया कि झंडेवालान मंदिर में नवरात्रि के मद्देनजर आज से 20 अक्टूबर तक रानी झांसी रोड और आसपास के मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। नई दिल्ली से करोल बाग जाने वाले वाहन चालक पंचकुया मार्ग और बग्गा मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं 30,000 से वंदे मातरम मार्ग और करोल बाग जाने वाले वाहन चालक नई रोहतक रोड से जा सकते हैं। नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय बस अड्डे जाने वाले यात्रियों को मिंटो रोड और राजघाट के रास्ते जाने की सलाह दी गई है। यातायात पुलिस के अनुसार पंचकुया गोल चक्कर और झंडेवालान गोल चक्कर पर भी यातायात में परिवर्तन किए जाएंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कहा है कि सुरक्षा कारणों से 45 मेट्रो स्टेशन आज रात 10 बजे तक बंद रहेंगे। ये स्टेशन कल रात 9 बजे से बंद हैं। DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और उसके अनुसार जरूरी जानकारी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हाल के उपचुनावों में पार्टी की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने के इच्छुक लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के खिलाफ नहीं है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अपनी चुनावी हार की भरपाई के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही हैं। उन्होंने विपक्षी दलों पर यह आरोप भी लगाया कि वे अपने विरोध प्रदर्शनों के जरिए पिछले 3-4 दिन से दिल्ली के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में हुए दंगों के मामले में आज दोषी ठहरा दिया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने हुसैन को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत दोषी ठहराया। अदालत ने हुसैन को दी जाने वाली सजा की अवधि पर बहस की सुनवाई 16 नवंबर को तय की है। जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों से 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले चलो यमुना महास्वच्छता अभियान में शामिल होने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश के माध्यम से श्रीमती गुप्ता ने खास तौर पर युवाओं से परिवार और दोस्तों के साथ अपने नजदीकी यमुना घाट पहुंचकर सफाई अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराने की अपील की है।
4: मेरे प्यारे दिल्लीवासी, माँ यमुना हम सब के लिए बहुत ही प्रिय है, हमारी आराध्य। हम सब मिलकर के माँ यमुना को साफ करना चाहते हैं। सरकार अपना काम कर रही है, पर हम सब भी उसके साथ जुड़े। 18 तारीख को हम सब ने यमुना घाट पर सफाई का एक बड़ा अभियान रखा है। रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुला है, सभी लोग इस पे अपना रजिस्ट्रेशन करें। हजारों युवाओं ने अभी तक इस पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। सभी दिल्ली के निवासी यमुना सफाई अभियान से जुड़ करके अपने आप को सौभाग्यशाली बना सकते।
0: इस अभियान के अंतर्गत meriyamuna.in वेबसाइट पर पंजीकरण किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, सहायता और कल्याण दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का प्रयास है कि किसी महिला या बच्चे को संकट के समय सहायता के लिए भटकना ना पड़े और उन्हें समय पर सुरक्षा, परामर्श, आश्रय, कानूनी सहायता और पुनर्वास की सुविधाएं मिल सकें। इसी उद्देश्य से महिला और बाल विकास विभाग से लेकर परिवहन, लोक निर्माण, नगर निकाय और शैक्षणिक संस्थानों तक विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है।
5: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में महिलाओं की मदद के लिए 11 वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 और 15 महिला आश्रय गृह संचालित हैं। इसके अलावा 2,947 बस मार्शल तैनात हैं और 56 महिला विशेष बसें चल रही हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर 2,53,000 से अधिक CCTV कैमरे कार्यरत हैं। वहीं बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को आपातकालीन सेवाओं से जोड़ा गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि सरकार का लक्ष्य महिलाओं और बच्चों को संकट के समय त्वरित सहायता, सुरक्षित वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज राष्ट्रीय डाक दिवस पर भारतीय डाक की विश्वसनीयता, जनसेवा और लोगों को जोड़ने में उसकी भूमिका को रेखांकित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारतीय डाक वर्षों से संदेशों के आदान प्रदान के साथ परिवारों और समुदायों को जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि करमपुरा मोतीनगर फ्लाईओवर मरम्मत कार्य के कारण आज से 29 अक्टूबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। पुलिस ने यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
7: मरम्मत कार्य के दूसरे चरण में शादीपुर और कीर्ति नगर के करमपुरा मोती नगर की ओर जाने वाले फ्लाईओवर का कैरिज वे बंद रहेगा। वहीं सर्विस रोड पर यातायात जारी रहेगा। पटेल नगर और करोल बाग से पंजाबी बाग जाने वाले वाहन चालक गोस्वामी गिरधारी लाल मार्ग लेकर रिंग रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं शादीपुर और कीर्ति नगर से मोती नगर जाने वाले वाहन चालक सदगुरु राम सिंह मार्ग भीम सिंह ढिंगरा रोड और शिवाजी मार्ग से होकर जा सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने यात्रियों से यात्रा की योजना पहले से बनाने, अतिरिक्त समय लेकर चलने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे। श्री शुक्ला के परिवार में उनकी पत्नी और दो अविवाहित बेटियां हैं।
8: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में बिताए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। अपने उत्साह, सूझबूझ और मिलनसार स्वभाव के लिए पहचाने जाने वाले विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सरकारी अधिकारियों, पत्रकारों और मीडिया जगत में जाने माने और सम्मानित अधिकारी थे। कार्य के प्रति उनका समर्पण, सहयोगी रवैया और जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक संभालने की क्षमता ने उन्हें मंत्रालय के मीडिया संगठनों में अपने साथियों का स्नेह और सम्मान दिलाया। रायपुर के साथ लंबे जुड़ाव के कारण वे राज्य के आधिकारिक मीडिया जगत का जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। उनके असामयिक निधन से उनके साथी और परिचित बहुत दुखी हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज सेवा संकल्प उत्सव के अंतर्गत सूरज पार्क में आयोजित भंडारे में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा, इस पहल ने सेवा की भावना को केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित न रखकर उसे सार्थक सामुदायिक सहभागिता में बदलने के महत्व को रेखांकित किया है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने आज पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 121वें वार्षिक सत्र को संबोधित किया। श्री संधू ने कहा कि दिल्ली बड़े उद्योगों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा स्टार्टअप्स को जोड़कर निवेश, रोजगार और आर्थिक विकास का प्रमुख केंद्र बन सकती है। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, नवाचार और मूल्य सृजन वैश्विक प्रतिस्पर्धा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और इससे जुड़ी भ्रांतियां दूर करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी के मामले में दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से हरियाणा में बिक्री के लिए निर्धारित अवैध शराब की 490 क्वार्टर बोतलें बरामद की गयी। मामले की जांच जारी है। आज विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर पक्षियों के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने का आह्वान किया है। आज महालय पर्व है। ये त्योहार मां दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालय के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं।

10 बजे तक बंद रहेंगी। और दिल्ली यातायात पुलिस ने कहा, करमपुरा मोतीनगर फ्लाईओवर मरम्मत के कारण 29 अक्टूबर तक यातायात प्रभावित रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
3: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप ही की पसंद का ये कार्यक्रम है जिसमें आप ही के लोकल फॉर वोकल के लोग यहाँ मौजूद होते हैं और वो बातें करते हैं जो कहीं ना कहीं आपको पसंद होती है, हमें पसंद होती है और हमारे इस पूरे शहर वालों को पसंद आती है। इनफैक्ट जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुनते हैं आप सभी को पसंद आती है। और ये जो शेरो शायरी का माहौल है ना, यहाँ पर शेरो शायरी एक अलग अंदाज में होती है तो प्रोग्राम का जो रुतवा है वो पूरा चेंज हो जाता है। और इस प्रोग्राम को धासु बनाने के लिए अखिल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपनी ऐसी शायरियां मारेंगी जिसे सुनकर मैं बाहर भागना तो चाहूंगा लेकिन भाग नहीं पाऊंगा क्योंकि स्टूडियो बंद कर दिया। हेलो जी, हाउ आर यू?
1: कैसे
0: आपका ये मैंने तारुफ कराया है, ये आपकी आइडेंटिटी है?
1: धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमारा
0: धासु वाली वेलकम किया, मैंने वार्म वेलकम जिसे कहते हैं।
1: आपके धासु वेलकम पे मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता है कि बस
0: कोई शायरी मारूं,
1: आज की जो कुंडी है ये गेट वाली खुलेगी नहीं पहले।
0: अरे अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा मत कीजिएगा, हम आपसे निवेदन करेंगे। खैर ये तो जोक सपाट की बात है। अखिल जी बहुत बहुत स्वागत है और आप बिल्कुल धाकल आरजी बनते जा रहे हैं डेली, दिन प्रतिदिन आप जो है उन्नति प्रगति दोनों ही कर रहे हैं, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
1: आशीर्वाद है हमारे पास, बाबा आनंद जी का हम पे आशीर्वाद है।
0: अच्छा ये कोई नए देवता है कि मुझे उनकी फोटो जरूर शेयर करिएगा,
1: मैं भी आपको बस अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर।
0: ठीक है, सो दोस्तों ये तो जोक सपाट चलता रहेगा तो अखिल भैया आज का प्रोग्राम बहुत स्पेशल हो गया है ना?
1: बहुत,
0: क्योंकि आज आपने बहुत ही स्पेशल पर्सनालिटी को बुलाया है।
1: और जिन्हें हमने बुलाया है वो इसलिए नहीं बुलाया है कि हमने बुलाया है उसे,
0: लिसनर्स की डिमांड पे दोबारा बुलाया गया है।
1: लिसनर्स की डिमांड पे उन्हें दोबारा बुलाया गया है, उन्होंने ऐसा कमल खिलाया है कि उसे हर कोई अब देखना चाहता है।
0: क्या बात है, और सुनना भी चाहता है। तो हम एक काम करते हैं, इसी बात के साथ उनका स्वागत करते हैं। तो सर आपका हमारे स्टूडियो में इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? नमस्कार,
2: मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए आप लोग कैसे हैं?
0: हम लोग भी बहुत बढ़िया हैं सर, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे।
2: बहुत अच्छा हूँ सर, बाकी आप लोगों की कृपा है, दोस्तों का साथ है
0: जी। तो थोड़ा सा अपने बारे में एक बार बता दीजिए, थोड़ा अपना तारुफ करा दीजिए हमारे मुरादाबादीज को।
2: सर तारुफ हुई पिछला वाला है, कुछ चेंज नहीं हुआ अभी,
0: लेकिन अभी तो आप आए हो तो ये तो आप चेंज हो, टी शर्ट चेंज है आपका, लुक चेंज है, हेयर स्टाइल चेंज है,
2: कपड़े
0: तो
2: चेंज
0: हो सकता है आप भी थोड़ा चेंज करके बोले क्यों अखिल जी?
2: बस सर कपड़े चेंज हुए, बाकी जो पुराना वाला ही चल रहा है,
0: जो नए लोग सुन रहे हैं
2: उसमें नई चीज ऐड नहीं हुई।
0: देखिए पिछली बारी जब कमल सर आप आए थे तो वो लिसनर तो थे ही, अब कुछ नए भी जुड़े होंगे तो वो तो जानना चाहेंगे ना आपके बारे में, क्योंकि रेडियो पे तो हर दिन नए लोग सुनते हैं, जो अभी आपको सुन रहे हैं उनको तो अपने बारे में थोड़ा बताइए ना।
2: चलिए सर, मेरा नाम शर्मा है जी, मुरादाबाद का निवासी हूँ, आप छोटे से मोहल्ले चंद्रनगर का
0: जी जी,
2: और पिछले कई सालों से सर्जिकल सेल्स के जुड़ा हुआ हूँ जॉनसन जॉनसन के साथ, और थोड़ा सा शौक है लिखने लिखाने का, तो इस वजह से कुछ भाई लोग याद कर लेते हैं, कभी कभी बुला लेते हैं मुझे, और कुछ लोग पसंद भी कर लेते हैं।
1: आज बढ़िया, आज जो है एक मन में एक सवाल उठा है कमल जी से पूछने के लिए, और ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये आनंद जी का भी सवाल है और जितने भी हमारे लिसनर
0: सभी का सवाल है
1: कि कमल जी एक बात बताइए कि आपके लिए जो शायरी है वो सिर्फ एक शब्द है या एक एहसास है?
2: सही कहूं तो मेरे लिए एक एक एक, एक शांति है, एक सुकून है, क्योंकि जब भी कुछ नया लिखता हूं कुछ ऐसी दिमाग में कोई ऐसी चीज क्लिक करती है और उसको आगे बनाता हूं तो मन में बहुत असेटिस्फेक्शन सा लगता है कि हाँ कुछ किया है अलग हटके कुछ
1: तो
2: किया।
1: ये शांति सुकून आपको शादी के बाद से कब कब महसूस हुई?
2: मतलब आप फिर उसी विषय पर पहुंच रहे हो।
0: ये इनकी शादी हो गई इसलिए आपको स्टार्टिंग में वहीं ले जा रहे हैं। खैर ये बात तो हम जरूर आपसे पूछेंगे,
1: ये वर्ड आजकल सुनने में अच्छे लगते हैं।
0: कोई बात नहीं, बिल्कुल हम
2: अखिल जी क्योंकि खुद शादी शुदा था वो जानते हैं,
0: इसीलिए कमल सर आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है दोस्तों आप समझ ही होंगे बहुत ही स्पेशल होगा, और कुछ लाइनें अगर आपकी हो जाए हम जो है कार्यक्रम को शुरू करने से पहले कुछ आगाज अगर आप कर दें अपनी चंद पंक्तियों से तो प्रोग्राम में चार चांद लग जाएंगे, क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात,
0: मैं निवेदन करूंगा अखिल जी आप अपनी पंक्तियों को जरा दबा के रखें, थोड़ी देर के बाद वो बाहर निकालेंगे
1: जो मेरे अंदर से निकल रही है,
0: तो थोड़ा कंट्रोल वो नाना पाटेकर करते हैं ना कंट्रोल। जी जी सर, मुरादाबाद के लिए आप कुछ अभी जिक्र कर रहे थे हमसे,
2: सबसे पहले जिक्र करते हैं जिससे आजकल सब लोग मतलब एक दो चार हो रहे हैं, गर्मी।
0: हाँ बिल्कुल, आज तो खैर मौसम काफी ठंडा है,
2: मौसम काफी ठंडा,
1: दो चार भी हो रहा है, रात में दो दो बजे चार चार बजे भी एक साथ हो रहे हैं,
2: बिल्कुल क्योंकि बत्ती नहीं आ रही है। धन्यवाद योगी जी का कि एक दिन भरपूर बत्ती मिली है हमें। तो चार पंक्तियां देखे गर्मी पर कि तुम जून सुलगती गर्मी के,
0: वाह
2: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ,
0: वाह जी वाह
2: तुम जून सुलगती गर्मी के मैं ठंडक की सिफारिश हूँ, तुम पहरेदार हो सूरज के मैं मानसून की बारिश हूँ।
0: क्या बात मानसून की बारिश, मैं मानसून की बारिश हूँ। अच्छा, मानसून की बात हुई है तो अखिल भाई क्यों ना एक वो ऐसा ही गाना हो जाए थोड़ा सा, है ना, बारिश वाला, तो प्रोग्राम जो है और भी खूबसूरत हो जाएगा। फिर हम अखिल भाई की शायरी सुनेंगे इसी बात पे। तो कमल सर, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे इस प्रोग्राम में, और बाकी जितने भी लिसनर्स हैं वो भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए इस प्रोग्राम को। अभी थोड़ी देर में लौटेंगे एक अमेजिंग ट्रैक के बाद। आप कहीं मत जाइए और रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। खूबसूरत गाना, उसके बाद लौट कर आ रहे हैं।

0: खूबसूरत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो मैंने
0: आपको
1: आज...
0: तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं कोई इतनी शोकती नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक
1: एकदम...
0: वाला चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चले?
1: मैं
0: अगर
1: बस...
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें करके आप क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, आप फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर एक कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है कि हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं?
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है
2: सर।
0: जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिए बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइनें उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है, क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत ले जाना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा,
1: थोड़ा सा चाहता हूँ कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है ये, तो बहुत ही बढ़िया। जी सर आप कुछ फरमाए?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं, दिल टूटने का सब मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पर चले जाए।
1: नहीं,
2: मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाए।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: दोनों ही चीजें हैं।
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ तो मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है।
2: मतलब
0: क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल,
0: है ना। आपका भी अखिल भाई, मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: सुनप्रत गाने के बाद वेलकम बैक एक बार फिर से आनंद और अखिल के साथ हैं आप इस प्रोग्राम में जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक। साथ में हमारे स्पेशल मेहमान कमल जी मौजूद हैं आज की इस खूबसूरत सी वाइब को और भी फुल ऑन हैपनिंग बनाने के लिए। तो अखिल जी आप कुछ कहना चाहेंगे?
1: मैं यही कहना चाहूंगा कि आज मेरे इस दिल से दिल तक के सेशन पे बहुत ही मतलब कहते हैं चार चांद लग गए हैं जिसमें आनंद जी और साथ के साथ कमल जी भी जुड़ गए हैं।
0: तो क्या बात है,
1: कहते हैं ना कि कभी कभी आप कुछ थोड़ा सा मांगो आपको बहुत ज्यादा मिल जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने आपको आज... तो मिलता ही बहुत ज्यादा है, आप तो शुरू से ज्यादा वाले रहे हैं कोई इतनी शोकती नहीं है।
1: आज मैंने बस थोड़ा सा मांगा था कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाए
0: जी जी,
1: मगर
0: दिल से दिल तक
1: वाला
0: चाहिए था।
1: हाँ दिल से दिल तक में मैं चाहता था कि मेरे साथ कोई तो ज्वाइन हो।
0: हाँ
1: मैंने एक को मांगा और दो लोग ज्वाइन हो गए।
0: भाई आज आप ज्यादा मेहरबान हो रहे हैं, आपके ऊपर जो है एक साथ दो फूलों की बारिश हो गई है ना, तो कुछ कहना चाहेंगे आप?
1: मैं तो बस ये कहूंगा ऐसी फूल जो है
0: पंक्ति आप छोड़ना चाहते हैं या फिर हम सीधा कमल जी के पास चलें?
1: मैं
0: अगर
1: बस...
0: कोई दिल से निकल रही है तो सुना दीजिए सर,
1: मेरे
0: मेरा नाम इस्तेमाल ना करें कृपया करके आप, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सारे लिसनर्स को पता है मैं बहुत ही वाहियात शायरी करता हूँ, हम फिर भी अच्छी कर लेते हैं।
1: मैं तो बस ये कहना चाहूंगा, शायरी नहीं है मगर ये कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बोलना चाहूंगा। अल्फाज अगर दिल से निकले
0: जी
1: तो किताब नहीं
0: वाह
1: किसी की जिंदगी बन जाते हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत
1: तो जो दिल से निकले हुए अल्फाज हैं या दिल से निकली हुई बातें हैं कभी कभी वो आपकी जिंदगी को भी रिलेट करती हैं।
0: करेक्ट, ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी जो जिंदगी में रिलेट बातें हो रही हैं वो आजकल आप ऑफ ईयर बताते हैं मुझे, खैर उसमें हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सर आप कुछ यू नो आजकल मतलब जो है आजकल तो अखिल भाई आपको ही पता है ना शेरो शायरी का कितना ट्रेंड चल रहा है, जैसे इंस्टाग्राम खोलो कोई ना कोई शायर दिख जाता है, हर कोई आजकल शायर हो गया है ठीक है, और कुछ होते हैं ओरिजिनल वाले।
1: हर कोई शायर नहीं बन गया मगर हर कोई जो है शायरी को अब आनंद के साथ लेने
0: नहीं चाहता। मैं आपको बताता हूँ हर कोई शायर का मेरा मतलब ये है अखिल भैया कि आजकल क्या हो रहा है ना सोशल मीडिया पे बहुत सारे क्रिएटर हैं जो लिखते हैं सिर्फ बोलते नहीं है, बट जो बोलने वाले हैं वो उसको उठा के फिर अपने फ्लो में अपने अंदाज में बोलते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं फिर उनको लगता है हम भी शायर हो गए हैं, लेकिन एक जो ओरिजिनल शायर होता है उसकी बात अलग ही होती है क्योंकि वो कलम से जो निकली बात होती है वो एक सच्ची वाली होती है, क्योंकि दिल से दिल वाली बात होती है। अब जैसे कमल सर आए तो वो एकदम जेन्युइन कंटेंट लेकर आए क्योंकि वो उनका ओरिजिनल है।
1: बस कमल सर ये सोच रहे हैं ये दोनों चुप हो तो मैं कुछ बोलूं।
0: नहीं नहीं उनको पता है, कमल सर को ये पता है कि अगर ये दोनों चुप हो गए तो फिर ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप बोलते रहो बच्चों। खैर एनीवे सर हाँ आपका स्वागत है जी सर, तो आज आप जो है हमारी इस महफिल को कैसे शानदार करेंगे, आपने वो मानसून वाली चार लाइनें सुना दी तो देखिये बाहर का मौसम भी अच्छा हो गया है, लेकिन अब आप आगे बढ़ते हुए क्या सुनाना चाहेंगे हमारे मुरादाबाद को, क्या नया लिखा है आपने इन बीते दिनों में?
2: आपने अभी बात करी नए शायरों की
0: जी,
2: जो कुछ जेन्युइन लिखते हैं और कुछ ऐसे ही शौकिया
0: शौकिया बिल्कुल बिल्कुल,
2: मतलब किस तरह से बस पिक्चर आ जाए। तो दो लाइनें उनके लिए देखिएगा कि औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए,
0: वाह
1: क्या बात है,
2: औरों की गजल पर जो लगाते थे हाशिए उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी है।
0: वाह वाह वाह क्या बात है क्या बात है,
2: उनकी बहर से हट रहे उनके ही काफी।
0: मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सर ने बात बोली है ना वो बात आई डोंट नो पूरी हुई या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे पूरी करना चाहता हूँ कि जो आपने बोला ना बिल्कुल रियलिटी है, एकदम जेन्युइन बोला है आपने।
2: नहीं आप इसको अखिल जी पर मत लेना ना।
0: नहीं मैं अखिल जी पे बिल्कुल लेके जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है अखिल जी खुद कहीं और जाने वाले हैं अभी इसीलिए मैं अखिल जी को बिल्कुल इसमें शामिल नहीं करूंगा।
1: हो गया हूं कि थोड़ा सा चाहता हूं कि अपना स्ट्रेस वो करूं थोड़ा सा दूर करूं, इसलिए कमल जी जैसी दिख गए तो मेरा तो आधा स्ट्रेस वैसे ही दूर हो गया।
0: क्या बात है बिल्कुल,
1: मैं तो बस ये कहूंगा जो हंसते हंसते सब कुछ सह जाए वही इंसान सबसे मजबूत होता है, और जो प्यार में भी मजाक कर जाए वही सबसे प्यारा होता है।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही अखिल भैया आपने, आजकल आप बड़े इंटेलिजेंट हो गए दिल से दिल तक करते करते।
1: थैंक यू,
0: बहुत ही अच्छी बात है ये तो, बहुत ही बढ़िया जी। सर आप कुछ फरमाएं?
2: बिल्कुल फरमाता हूँ सर, चैलेंज देखिएगा कि लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो सब इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ।
0: क्या बात,
2: लगी गांठे ममन की देख सारी खोल सकता हूँ, भले हो स्वाद इमली का मैं मिश्री घोल सकता हूँ, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, नहीं लगता हमारे बीच बोली कोई मसला है, तू हिंदी में सुना अपनी मैं उर्दू बोल सकता हूँ।
1: क्या बात है क्या बात है, ये तो आपने बहुत एकदम मेल मिलाप कर दिया हिंदी और उर्दू का, और कहाँ से आप कहाँ से एकदम कि कौन से वक्त में सोचते हैं, सुबह के 3 बजे या सुबह के 4 बजे?
2: सर इसका कोई टाइम निश्चित नहीं होता, ये ज्यादातर जो नए नए आइडिया आते हैं सुबह सुबह जब दिमाग आपका एकदम फ्रेश होता है आप उठते हैं, या कभी कभी रात में जैसे अचानक आप उठे टॉयलेट के लिए तो कोई ना कोई ऐसी चीज होती है आपके दिमाग में कहना कि क्लिक कर जाती है और वो फिर आपके दिमाग में कहीं ना कहीं चोट करती रहती है।
1: तो आपका कहने का मतलब यह है कि दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है?
2: नहीं दिल टूटने का कोई मतलब नहीं है। आप फिर उस ट्रैक पे चले जाए। नहीं, मैं आपको उस ट्रैक से हटाता हूँ, आप फिर उस ट्रैक पर चले जाए।
1: मैं इसलिए उस ट्रैक पे आता हूँ ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता जो हैं और हमारे आनंद जी जो आजकल अपना दिल एक अकलौता दिल लिए घूम रहे हैं, तो वो ये कहना चाह रहे थे, कह भी रहे थे मुझसे कि अगर कमल भैया आए तो उनसे जरूर ये बात पूछना कि क्या दिल टूटने के बाद फिर से प्यार हो सकता है।
2: दोनों ही चीजें हैं,
0: मुझे तो लगता है हो सकता है सर।
2: मैंने कहा ना दोनों चीजें।
0: हाँ हाँ, नहीं भी हो सकता और हो भी सकता। हाँ, है आपके पिटारे में दोनों ऑप्शन है।
2: डिपेंड करता है कि बंदा किस नेचर का है।
0: हाँ, ये भी बात बिल्कुल सही है।
1: मोबाइल की बैटरी की तरह है कि अगर बैटरी डाउन,
2: मोबाइल की बैटरी के साथ मजबूरी है, उसको चार्ज होना ही होना है। लेकिन दूसरे वाले केस में डिपेंड करता है कि आदमी कदम बढ़ाए या ना बढ़ाए।
0: ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन सर मुझे लगता है जो ट्रू लव होता है, जो सच्चा लव होता है, वो एक ही बार होता है, मेरा ऐसा मानना है। मतलब क्यों, जेनरली मुझे ऐसा लगता है कि प्यार तो आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन जो दिल से प्यार निकलता है वो एक बार ही होता है। और जो आपका मुझे लगता है लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम दोनों चलता है।
2: बिल्कुल
0: है ना, आपका भी अखिल भाई। मैं खैर बाद में जिक्र करूंगा, एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं इसी बात पे। इस कॉन्वर्सेशन
1: पसंद नहीं है कि मैं खाना टाइम पे खाऊं।
0: नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूं एक गाना सुन लेते हैं। प्रोग्राम्स में जो बातें हैं वो तो चलती रहेंगी, प्यार प्यार की बातें कर रहे हैं हम, एक प्यार वाला गाना हो जाए, उसके बाद वापस आएंगे। दोस्तों आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो।
1: बजाते रहो, गुनगुनाते रहो।
0: अभी बजाते हैं अखिल भाई एक गाना, टेंशन मत।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज पे आपका अपना ही अपना एफएम मुरादाबाद।
1: बिल्कुल आपने कहा अखिल भैया, आपका अपना ही अपना और सब कुछ अपना ही तो है यहाँ पे। हम भी आपके अपने हैं, हमारे कमल जी भी हमारे अपने हैं और जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी हमारे अपने हैं। तभी तो ये कनेक्शन बनता है दिल से दिल तक। और इसीलिए आपने अपने शो का नाम भी रखा है, बहुत चालू हो रहे हो, दिल से दिल तक शो रख लिया है।
0: आज सारे लिसनर्स आप सभी लोगों से
1: आज मैं अखिल भैया की थोड़ी फिरकी ले रहा हूँ, पहली बार मैं इनके साथ शो में, मतलब ऐसे दिल से दिल तक में तो पहली बार ही हम मिल रहे हैं।
0: आज कॉल बहुत आ रही है मेरे पास कि मैं अगर मैं उनकी कॉल उठा नहीं पा रहा हूँ।
1: मैं समझ सकता हूँ, आप बहुत पॉपुलर आ रहे हैं अखिल भैया, आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है यार। ऑफ कोर्स इतने कॉल तो मुझे भी नहीं आते, मैं खुद देख रहा हूँ, अभी भी फोन ब्लिंक हो रहा है आपका। देखो
0: ये, देखो ये आनंद जो है हर चीज का जो है ना वो दिल का ताड़ बना देता है।
1: मैं जो सच बात है ना दोस्तों वही करता हूँ, और मुझे लग रहा है कि हमारे गेस्ट है कमल जी, इससे पहले वो नाराज होकर भाग जाए हमें छोड़ के, हम वापस उनके पास चलते हैं इज्जत के साथ।
0: तभी मैं आप लोगों की कॉल नहीं उठा पा रहा हूँ क्योंकि आज हमारे साथ कमल जी हैं, और कमल जी बहुत ही अच्छी शायरी कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और इनको बुलाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो अखिल जी का है। वैसे इस टाइम पे मुझे स्टूडियो में होना नहीं चाहिए, लेकिन इनकी मेहरबानी जो मैं अभी तक बैठा हूँ यहाँ पे।
0: धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं देख रहा हूँ आपकी स्क्रीन पे भी लगातार कुछ ना कुछ निकलता जा रहा है। अखिल भैया हमारे बहुत प्रिपेयर करते हैं, वो जब तक वो कहते हैं जो लिखा नहीं वो दिखा नहीं,
0: बिल्कुल
1: ये उनकी खासियत है। तो खैर एनीवेज जी, कमल सर आप प्लीज, बहुत सारा चिट्ठा आप, मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में है, प्रॉपर लिख के लेकर आए हैं कमल सर हमारे, बहुत ही जेन्युइन कंटेंट आज डिलीवर कर रहे हैं वो। पहले ही बताइए सर, आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है?
2: बिल्कुल आ रहा है।
1: एसी चला दें कि अगर आप कहें तो?
2: चलाते रहिए, बंद करते रहिए। मौसम का आनंद तो लेना ही है, गर्मी का भी सर्दी का भी,
1: बहुत ही बढ़िया।
0: चलिए हम आ चुके हैं, ये
1: हम चला ही देते हैं यार, टेम्परेचर थोड़ा गर्म।
0: इस बार इन्होंने टॉवल जो है गीला रख दिया ना बेड पे, तो भाभी जी छोड़ेंगे नहीं।
1: भाई वो आपको पता होगा कि अभी हम तो शादीशुदा है नहीं, तो हमें इस विषय में आइडिया है नहीं।
2: तभी तो टॉवल और ये सब उनकी फिरकी ले रहे हैं आप जो
1: है सर। ऐसा तो देखिए, अब आप भी उनकी टीम में शामिल हो रहे हैं, मैंने सोचा था एटलीस्ट आप तो मेरा साइड देंगे।
0: देखिए साहब, ये एक ऐसा लड्डू है कि जो है ना आपको खाना तो पड़ेगा कभी ना कभी। हाँ, तो अभी आप जब तक बचे हैं, जब तक आप मंदिरों में चक्कर काट रहे हैं, इधर उधर चक्कर उस लड्डू से बच रहे हैं, मगर एक ना एक दिन वो लड्डू तो आपको खाना है।
2: सही, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं सही जगह अप्रोच करें।
1: हाँ, देखिए अखिल भैया, लड्डू खाने से पहले मैं आप जैसे लोगों से ट्रेनिंग ले रहा हूँ ना, तो मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ लड्डू को हजम कैसे करना है, ये भी तो बहुत जरूरी है।
0: सारी ट्रेनिंग धरी की धरी रह जाती है,
1: समझ सकते हैं।
0: आइए कमल जी, आप बताइए कुछ कुछ तो अपने उसमें हमें साझा कीजिए अपनी शायरी में।
1: देखिए मैं इस शायरी से पहले इतना कहना चाहूंगा, ये जो लड्डू और ये जो बातें थी ना, ये मैं जब भाभी कभी स्टूडियो आएंगी तो मैं उनसे जरूर पूछूंगा वो कौन सा लड्डू था जो आपने इनको खिलाया था, वो मुझे भी बताइए आप। खैर कमल जी आप बताइए, अपनी शेर शायरी के माध्यम से कोई लड्डू का जिक्र नहीं होगा मुझे पता है, अब आप सीधे पॉइंट की बात करेंगे।
2: ठीक सर, तो अपने प्यारे से शहर मुरादाबाद के लिए कुछ पंखे हैं।
1: हाँ जी,
2: उम्मीद करता हूँ पसंद करेंगे।
1: बिल्कुल सर,
2: सुनिएगा कि ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं।
1: वाह।
2: ना कोई पहले मेरे ना किसी के बाद हूँ मैं, आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं। आती जाती हर घड़ी में शाद हूँ आबाद हूँ मैं, नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं।
0: क्या बात है,
2: नाम पीतल है मगर सोना हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात कही,
2: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं, राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं।
0: बहुत खूब,
2: राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं। राम गंगा से लगा एक शहर हूँ मैं, उर्दू से हिंदी जोड़ती एक बहर हूँ मैं, हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं।
0: क्या बात है,
2: हूँ जिगर पर जाने क्यों नाशाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: बहुत खूब, बहुत खूब, आज आपने मुरादाबाद से एकदम गुफ्तगू और ऐसी रूबरू करवाया अपने मुरादाबाद की बात।
1: नहीं, ये दिल से दिल वाला कनेक्शन था अखिल भाई, और ये मुरादाबाद के बारे में तो जितनी बातें कही जाए खैर वो कम ही है, लेकिन आपने जो एक शहर के बारे में चार पंक्तियां रखी, ये कहीं हमें मिल नहीं सकती, ना चैट जीपीटी पे ना जेमिनी पे, ये सिर्फ कमल जी के पास मिल सकती
2: है।
0: तो
1: हमें लगा था एंड हो गया है। जी सर कहिए।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, पीत मतलब पीतल।
0: हाँ जी,
1: अच्छा ठीक है जी।
2: पीत के निर्यात में तो खास हूँ मैं, यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं।
1: वाह।
2: यूं समेटे खुद में एक इतिहास हूँ मैं, यूं ही कितनी सदियों से नाबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं।
0: क्या बात है।
2: मास्... देखिएगा
1: जी
2: कि भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, भोर में खिलती हुई एक धूप हूँ मैं, ओढ़ कर एक नई छवि नव रूप हूँ मैं। स्मार्ट हूँ फिर भी कहीं अपवाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ।
0: क्या बात,
1: देख लो मुझको मुरादाबाद हूँ मैं। क्या बात है।
2: और अंतिम चालन देखिएगा कि मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं।
0: बहुत बढ़िया।
2: मंचे जिगर बसता हुआ एक राग हूँ मैं, देता हूँ सबको कंपनी, देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं,
1: क्या बात,
2: देता हूँ सबको कंपनी वो बाग हूँ मैं, शामो शहर रोशन शरर आबाद हूँ मैं, देख लो मुझको मुरादाबाद।
0: बहुत बढ़िया, बहुत खूब। ये कंपनी बाग से तो जुड़ी हुई कई कहानियां हैं हमारे साथ, कंपनी बाग के आसपास घूमना, और इस समय तो कंपनी बाग के नजारे ही बदल गए। आपने कभी देखा उसके अंदर
1: मुरादाबाद की नजारे बदल गए? आप कंपनी बाग पे अटके पड़े हो यार अखिल जी, देखो ना जिस भी चौराहे पे जाओगे वही लाइटें लाइटें, और मतलब चकाचौंध से भरा हुआ है पूरा मुरादाबाद। और इस समय में जब मैं और आप और कमल जी बात कर रहे हैं, हमारा पूरा शहर लाइटों से नहाया हुआ है।
0: ऐसा क्यों होता है कि जब मैं कभी लाइट देखता हूँ मुरादाबाद में चमकती हुई
1: तभी भाग जाती है? ऐसा तो नहीं,
0: एक हफ्ते बाद मुझे लाइट वहां पे मिलती क्यों नहीं है?
1: क्योंकि वो मुझे पता है आप जब उसको ध्यान से देखते हो उसे नजर लग जाती है कि उतार के ले जाता होगा। अखिल ने मुझे देख के नजर लगा दी, अब मैं रोड पे दिखूंगी नहीं तेरे को जा भाई,
2: क्योंकि आपकी रोशनी के आगे उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है।
1: ये तो
0: कमल जी बचा रहे हैं,
1: तारीफ करिए,
0: लाइट लेके गए कमल जी ने बचा लिया उन्हें आज।
1: सही बात है, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूँ अखिल भाई, वो तो खैर दूसरी दूसरी बात है, लेकिन सच में मुरादाबाद की जो भैया ने तारीफ करी है अभी कमल भैया ने, वो उसकी बात ही अलग है। मतलब अपने शब्दों में आपने रूबरू करा दिया है। तो एक काम करते हैं, इसी रूबरू रोशनी में एक बढ़िया से गाना सुनते हैं। ये बातचीत तो हमारी लगातार जारी रहेगी, और मुझे लगता है कार्यक्रम में गीत संगीत भी बहुत मैटर करता है।
0: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात कही। और मैं इसी बात पे कहना चाहूंगा इस गाने से पहले, रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है।
1: वाह वाह वाह,
0: रिश्ते अगर हंसी से निभाओ तो दूरियां भी पास लगती है, और अगर मोहब्बत सच्ची हो तो खामोशी भी बात कर।
1: क्या बात है अखिल जी, मैं आपकी लाइनें सुन के बस चुप हो गया था।
0: हाँ, उसके बाद जो खामोशी आई थी मैं सुनने में आ गया था कि आपको बात समझ
1: नहीं। मैंने एक मिनट पॉज इसलिए लिया कि मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, ये बड़ा मैटर करता है। एक मेरी स्क्रीन पे भी शायरी आ रही है लेकिन मैं बाद में सुनाऊंगा। चलिए एक काम करते हैं, गीत संगीत का आनंद लेते हैं, फिर मिलते हैं। आप सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद। बहुत ही खूबसूरत गाना, और इस गाने के बाद वेलकम बैक है आप सभी का। आप सुन रहे हैं
3: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
4: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
5: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
4: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद, मोबाइल नंबर 7055070552।
6: हाय दयन एनर्जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
7: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं बाराती भी सजने आते हैं।
8: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हल्दी आउटफिट फ्री।
9: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।
10: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
11: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: देशों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्यूटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
3: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सभी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सभी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सभी सारथी ऐप। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इंकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
1: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
0: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
0: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
3: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
4: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
3: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
5: मेरा नाम मुकेश भाई नायका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
3: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रूपये के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
6: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बमबारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। उतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक डीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है, वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060002430।
2: मुरादाबाद, तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को, दिल्ली रोड जूडियो के सामने, कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
3: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रांड्स और हैंडीक्राफ्ट्स की शानदार कलेक्शन। स्काई हैंडीक्राफ्ट्स, खनास लेगेसी सिंस 1970।
2: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90276111।
4: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
5: तुम मेरे
6: पता है कि, देखो यार अखिल भैया, पता है जो शेर-ओ-शायरी का माहौल होता है ना, इसका डबल मजा हो जाता है अगर एक शायर आपके सामने जबरदस्त बैठा हो, है ना, जैसे कि आप

0: बैठे हैं मेरे सामने, आप भी कुछ ना कुछ अतरंगी सतरंगी सुनाते रहते हैं, मजा आ जाता है। मुझे लग रहा है कि कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद हाँ, तो हमें चुप हो चाहिए यार, इज्जत का मामला है।
1: कमल जी कहेंगे चार लाइनें सुन के मेरी वाहवाह कर देते हैं, उसके बाद वो कुछ बोलता नहीं, ये अपनी बात बोल देते हैं।
2: यार मुझे कहना पड़ता है कि पूरी तो सुन लो, पूरी सुन लो,
0: अभी तो मैं कह रहा हूं, तो दोस्तों
1: हां पूरी कीजिए आप पहले। आपकी वो चार लाइनों में दिल एकदम अंदर तक भरा आता है ना,
2: नहीं, जो मुझे भी पता चल जाता है कि चाइल्ड में कुछ दम था या नहीं था।
1: देखा चुपर उस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सर हम थोड़े से अनजान हैं इस फील्ड में, तो आप जरा हमें बख्श दीजिएगा और आप अपनी आगे की लाइनों को पूरा करिएगा।
2: चलिए जिंदगी पर ही कुछ चार पंक्तियां और देखिएगा।
0: बिल्कुल सर।
2: कि जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
0: वाह
1: बहुत खूब।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है, किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: वाह वाह वाह वाह वाह।
2: किसी के मन में छिपा है क्या ये ऐसे पता कहाँ चलता है।
0: जी जी।
2: वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं। वैसे तो जितने भी मुंह हैं उतनी तरह की बातें हैं, कोई खुलकर मिलता है तो कोई मिलकर खुलता है।
1: क्या बात है।
2: जीवन का हर रोज मुझे एक नया तजुर्बा मिलता है।
1: बहुत सही बात कही, आप दिल खोल के बातें करें जिससे कि आपका दिल ना खोलना पड़े कभी। इतनी अच्छी बात कही। मोहब्बत में लोग चांद तक पहुंचने की बात करते हैं, हम तो बस इतना चाहते हैं कि सामने वाला सीन करके भी जवाब दे दे।
0: क्या बात है, बिल्कुल आपको जवाब मिलता भी है, वो बात की कि आप जवाब नहीं देते हैं। बहुत अच्छी आपने करी है, थैंक यू सो मच। और ये जो बातों का सिलसिला है ये और भी मजेदार हो जाता है जब इसमें चार लोग बैठे होते हैं, फिलहाल तीन लोग बैठे हैं। मजे की बात ये है,
1: तीन का जो ये कॉम्बिनेशन है, ये आनंद बहुत ही खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है।
0: बिल्कुल, ये बचपन से हमने कहावत सुनी थी, तीन लोग की जो जोड़ी होती है वो खतरनाक ही होती है।
1: ऐसी तीन दोस्त होते हैं जो गाड़ी में बैठ के एक दूसरे को अपनी कहानियां सुना रहे होते हैं इस समय।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो बात अलग है, आपने स्टेशन में बैठ के अपनी कहानी कभी नहीं सुनाई। खैर कभी फुर्सत से सुनेंगे हम जरूर। जब तक कमल सर कुछ नया निकाल रहे हैं, हम एक काम करेंगे, गाने की तरफ बढ़ेंगे, छोटो सा एक म्यूजिकल ब्रेक होगा और उसके बाद हम लोग वापस आएंगे, फिर सर से इजाजत लेंगे और कुछ उनसे सुनेंगे भी।
1: बिल्कुल सही है, बिल्कुल।
0: गाना सुना है अपने किशोर कुमार का, जिंदगी एक सफर है सुहाना।
1: हाँ, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो अगले एपिसोड में, अगले लिंक में क्या हो जाएगा, अभी किसने कुछ नहीं जाना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आगे की लाइन बताओ या भूल गए हो। गाइस अभी काम करते हैं, गाना सुनते हैं, मुझे खुद को भी याद नहीं आ रही है, कमल सर भी सोच रहे हैं आगे कुछ तो कहा था किशोर कुमार ने। अखिल भाई तो पूरा ही डूब चुके हैं। खैर एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, आपका ही मजा।

0: वेलकम बैक 89.6 मेगाहर्ट्ज एफएम मुरादाबाद, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। धड़कना सीख जाते हैं,
1: हाँ,
0: टूटे हुए दिल भी फिर धड़कना सीख जाते हैं जब कोई सच्चा इंसान जिंदगी में आ जाता है।
1: क्या बात है, और इनकी जिंदगी में भी एफएम आ गया है, तो इसलिए ये अपना दिल बहुत धड़का रहे। सही बात है, गलत
0: दिल से दिल तक चल रहा है,
1: नई बात,
0: दिल से दिल तक चल रहा है। आज हमारे पास कई लिसनर्स के कॉल आ रहे हैं, हम उठा नहीं पा रहे हैं, उसके लिए माफी। मगर आज आप सभी सुन रहे होंगे हम सबके दिलों की बात, क्योंकि जो हमारे साथ बैठे हैं ना शख्स कमल जी, वो ऐसे हैं कि अगर कोई बात भी निकल रही है, अगर हंसी मजाक में भी निकल रही है ना, तो आज उनके डायरेक्ट दिल से निकल रही है। और आनंद को तो आप जानते हो,
1: तो
0: ये
1: मतलब
0: तो हिला ही देता है।
1: कहना क्या चाहते हैं, उनकी बात घर पे दिल से नहीं निकलती है।
0: अब घर पे तो
1: भाभी जी के लिए
0: भाभी के आगे क्या क्या बातें इनकी निकल रही नहीं निकल रही हमें तो नहीं पता।
1: वो आपको तो खैर पता है, आप भी तो शादी शुदा है। मैं ये बोल बोल के सबको बता देना चाहता हूँ कि अखिल इट्स नॉट सिंगल। आप लोग इस नजर से नहीं देखेंगे हमारे अखिल भाई को, नहीं तो भाभी जी हमें बहुत मारेंगी। खैर, बैक टू पॉइंट, इससे सपाट अखिल भाई, मैंने कहा था ना जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हमने कहा था हम कमल जी से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले अखिल जी ने सुना दिया, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है कभी भी। खैर सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं एक बार फिर से। आप जरा अब जो है ये हमारी अंतिम कॉन्वर्सेशन चल रही है, ऑलमोस्ट हम लोग यहाँ पे अब इजाजत लेंगे आपसे, और आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। बट जाते जाते कुछ अच्छा सा अगर आप सुनाना चाहें, ताकि अगली बार लिसनर और डिमांड करें, हम दोबारा आपको बुलाना चाहें, है ना अखिल भाई?
0: बिल्कुल सही कहा।
2: देखिएगा कुछ पंक्तियां और हैं कि नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं।
1: क्या बात है,
2: नामवरों की महफिल में, मतलब जैसा आप लोगों की महफिल है
1: जी, हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, हमारा नाम है सर, मेरा आनंद है, उनका महफिल है।
2: नहीं मतलब जाना माना नाम, उसको नामवर कहते हैं।
1: अच्छा नाम,
2: जो जाना माना नाम होता
0: है, स्वयंवर की बात कर रहे हैं, बाद में स्वयंवर।
1: अच्छा ओके, सॉरी सॉरी।
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: वाह,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने
1: जी,
2: आओ कुछ ऐसा लिखते हैं।
1: वाह बात, क्या बात है,
2: अपनी भी कुछ पहचान बने, आओ कुछ ऐसा लिखते हैं। अब तक तो गैर की महफिल में
1: जी जी,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए।
1: वाह वाह वाह वाह,
2: अब तक तो गैर की महफिल में बस वाह वाह ही करते आए, एक खरीदार की चाहत है, बाजार में हम भी बिकते हैं।
0: क्या बात कही,
2: नामवरों की महफिल में गुमनाम से हम क्यों दिखते हैं,
1: दिखते हैं, क्या बात है, क्या बात है।
0: ये तो आज इन्होंने उल्टा ही कह डाला, मतलब हमारा तो मतलब कहते हैं अंदर तक पहुंच गए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये अंदर से बाहर भी निकल जाएगी, आप चिंता ना करें दोस्तों। जी जी सर, और देखिए वही वाली बात है ना कि जब मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कलाकार की खूबसूरत बात यही होती है कि जो वो दिल से लिखते हैं ना, और जो वो दिल से सुनाते हैं, तो वो कनेक्ट भी दिल से दिल तक होती है। कमल सर, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो अभी इस फील्ड में आना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बट उन्हें पता नहीं है वो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे लिखें, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारे ऐसे आजकल हमारे इस शो को सुन के बहुत लोगों के मन में, मुझे तो बहुत मैसेज आते हैं, ख्याल आ रहा है कि हम भी आएँ, हम भी यू नो इस तरह की शायरी करें, बट उनको पता ही नहीं है कि उनको स्टार्ट कैसे करना है। तो आप जैसे आपका 3-4 सालों का भी सर ने एक्सपीरियंस बताया, तो आप इस पे कुछ कहना चाहें उन बच्चों को?
2: किसी भी लिखने वाले के लिए बहुत बड़ी चीज है सब्जेक्ट।
1: हाँ बिल्कुल,
2: और अगर आप बिल्कुल सटीक दिमाग से बिल्कुल एक मतलब एक एम लिए देखोगे ना, तो आपको बहुत सारे आसपास में सब्जेक्ट दिखेंगे। वो सब्जेक्ट किसी भी विषय पे हो सकते हैं, देश पे भी हो सकते हैं, आपकी आम जिंदगी जो है रोज की, उससे भी जुड़े हो सकते हैं।
1: 100%.
2: बस आपको वो सब्जेक्ट देखना है और कुछ सोचना है उसके बारे में,
0: आप खुद
2: अपने आप ही आप जुड़ते जाएंगे सब्जेक्ट से, और पंक्ति अपने आप ही अंदर आपके बनती रहेगी, बस आपको उनको
1: उतारने की
2: सेट करना है,
0: उन शब्दों को अपने जहन में ला के आपको
2: उसमें आपकी जो भी घटनाएं घट रही है उन पर थोड़ा नजर रखिए,
1: मतलब आपको ऑब्जर्व करना है।
2: मुझे
1: और दिल से
2: मुझे तो जो इंस्पिरेशन मिलती है वो अखबार से मिलती है।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया,
0: अमर उजाला से या दैनिक जागरण से?
2: अमर उजाला और हिंदुस्तान।
1: क्या बात है, बढ़िया, वेरी नाइस, आपने इन दोनों को प्रमोट किया है, हमें दोनों पैसे भी देते हैं, तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
0: नहीं, अगर आपको आसपास कोई सब्जेक्ट नहीं मिले तो आप खुद को भी अपना एक सब्जेक्ट बना सकते हैं।
2: नहीं, खुद पे लिखना बहुत बड़ा काम है, हर कोई नहीं कर सकता।
1: बहुत अच्छा आपने कहा है सर,
2: खुद पर लिखना और खुद पर हंसना
1: जी,
2: बहुत बड़ी बात,
1: बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल। हम मजे की बात है कि हम दोनों खुद पे हंसते रहते हैं, क्योंकि हम लोग रेडियो में काम करते हैं। एनीवेज,
0: बहुत दूसरों को देख के हंसते रहते हैं,
1: बहुत नहीं, दूसरे लोग हमें देख के हंसते हैं।
0: मैं कहना चाहूंगा ये बिल्कुल आनंद जी दिल से निकल रही है आवाज,
1: बिल्कुल मेरा दिल का तार आप प्लीज तोड़ दीजिए, इससे पहले कोई और जूते चप्पल बरसाए, आप प्लीज पूरा करिए अपनी बात।
0: महफिलों की रौनक तुमने ना एकदम वो कर देता, महफिलों की रौनक लोग नहीं,
1: वाह,
0: महफिलों की रौनक लोग नहीं, उनके अल्फाज होते हैं।
1: क्या बात है,
0: जो दिल से निकले वही हमेशा याद रहते हैं।
1: अरे वाह बहुत बढ़िया, जैसे कि आप याद रहते हैं हमारे लिसनर्स को, और कमल जी तो हमेशा याद रहेंगे, इतनी अच्छी बातें करते हैं सर। चलते चलते कुछ सुनाना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जाते जाते?
2: बिल्कुल सर, आपने कहा तो जरूर सुनाना पड़ेगा।
1: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दोस्ती वाला अगर कुछ हो जाए तो मेरे को बड़ा मजा आता है दोस्ती में, यू नो हमारे जितने भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं सब हमारे फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, तो अगर इस पे आपको
0: और सब अपने दोस्तों को भी याद कर रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अखिल जी भी याद कर रहे हैं।
2: पर भी चार लाइनें सुनाते हैं, पहले जो निकली हुई है पहले उनको।
0: हां हां हां, क्यों नहीं क्यों नहीं।
2: तो देखिएगा कि जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है।
1: वाह।
2: जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई है, उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई।
1: वाह जी वाह।
2: उसकी लिखी नज्मों की महफिल दीवानी हो गई है, उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी।
0: बहुत खूब।
2: उसकी गुमनामी भी एक दिन नाम की मोहताज थी, शोर है अब हर तरफ उसकी कहानी हो गई है, जाने किस आलिम की उस पर मेहरबानी हो गई।
1: क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात है, कमाल कर दिया, कमाल।
0: जो लोग आलम बिरयानी के आसपास कहीं बैठे हुए हैं गाड़ी में तो वो अपनी बिरयानी आराम से खाते रहे।
1: एब्सोल्युटली सही
0: कहा। और ये शायरी का असली आनंद तो उन्होंने लिया।
2: तो ये मतलब उसकी प्रमोशन हो गई क्या, आलम बिरयानी की प्रमोशन भी हो गई।
1: सर यहाँ कुछ भी हो सकता है,
0: कुछ भी हो सकता है।
1: जैसे कि मैंने कहा था आपसे कुछ, अगर आप हमारे दोस्तों के लिए कुछ दोस्ती पे अगर दो लाइन कहना चाहे जाते जाते।
2: चलिए साहब जैसा हुक्म है।
1: बिल्कुल हाँ हाँ, आप बहुत सुपर फास्ट भागते दौड़ते पहुंचे हमारे ऑफिस, हमें पता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो
2: देखिएगा कि कुछ मतलब दोस्ती, मिलना मिलाना, महफिल, इस बारे में कुछ आप उससे कोरिलेट कर लेंगे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: कि महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे।
1: वाह वाह।
2: महफिलों के दौर ये आते रहे जाते रहे, आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे।
1: क्या बात है।
2: आप सब बस ऐसे ही हंसते रहे गाते रहे, सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ। सोच नाना ये कि मैं तुम सबसे कितना दूर हूँ, ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: ये ना कह देना कि मैं नाकाबिले दस्तूर हूँ, घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ।
1: अरे वाह।
2: घर की जिम्मेदारियों के बोझ से कुछ चूर हूँ, पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ।
1: क्या बहुत बढ़िया, खूबसूरत।
2: पर तुम्हारी महफिलों का एक चमकता नूर हूँ, बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा। बंद गए हैं दिल तो ये बंधन न तोड़ा जाएगा, जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा।
1: क्या बात है, क्या बात।
2: जुड़ गया है साथ तो अब टूटने ना पाएगा, बस करम इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे।
1: क्या बात है।
2: बस करम इतना करो महफिल यूं ही सस्ती रहे, जाम भी चलते रहे और क्षमा जलती रहे।
0: क्या बात कही, क्या बात कही। जिनके हाथ में जाम है वो तो
2: उनका भी परमिशन हो गया।
0: वो तो इस समय खुशी से कह रहे हैं क्या बात है, आज तो सही टाइम पे हमने एफएम लगा लिया और दिल से दिल तक बात जो है हमारे बीच पहुंच गई है। और मैं सभी लिसनर से कहूंगा कि आप भी अपनी शायरी हमें मैसेज कर सकते हैं 9837896896 पे, हम भी आपकी दिल की बात सभी के पास पहुंचाएंगे।
1: बिल्कुल सही कहा अखिल भाई आपने, और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने टैलेंट को छुपाएं नहीं बाहर निकालें, है ना। तो कमल जी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, आप आए, आपने इतना इंपॉर्टेंट टाइम साझा किया और अपने दिल से लिखी बातों को हमारे लिसनर तक पहुंचाया, और हम चाहेंगे कि बीच बीच में हम आपको ऐसे ही परेशान करते रहे, है ना, और आप ऐसे ही हमारे दोस्तों को एंटरटेन करते रहे। बिल्कुल। तो अब हम आपसे इजाजत चाहते हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े और इतना स्पेशल इस प्रोग्राम को बनाया। अखिल जी चले अपना पोटला उठा के बातों का पिटारा लेके,
0: कल आप लोगों से मिलेंगे हम ठीक फिर से रात में 9 बजे से 10 बजे तक, और करेंगे दिल से दिल की बातें।
1: क्या बात है। तब तक के लिए मैं यानी आरजे आनंद और हमारे साथ अखिल भैया थे और कमल जी थे, हम लेते हैं आपसे जाने की इजाजत, जल्दी करेंगे आपसे मुलाकात। फिलहाल छोड़ के जा रहे हैं कुछ अच्छे गाने, आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। बाय बाय।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841।
0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
3: हाँ है ना, श्रीहरि.in। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और UTL जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशन, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.in पर जाकर।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

0: मुरादाबाद तैयार हो जाइए, स्काई हैंडीक्राफ्ट का शानदार शोरूम खुलने जा रहा है 12 अक्टूबर सोमवार को दिल्ली रोड जूडियो के सामने कुंदन पेट्रोल पंप के बराबर में।
1: आइए और देखिए प्रीमियम ब्रास और हैंडीक्राफ्ट की शानदार कलेक्शन स्काई हैंडीक्राफ्ट खनास लेगेसी सिंस 1970।
0: मोर डिटेल्स के लिए कॉल करें 90 276 111 01।

सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

0: सीने में दर्द, सांस फूलना या तेज धड़कन को बिल्कुल नजरअंदाज ना करें।
1: श्री साई हॉस्पिटल में डॉक्टर अखिल कौशिक टीएम कार्डियोलॉजी द्वारा
0: एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर एवं अत्याधुनिक कार्डियक कैथ लैब की सुविधा उपलब्ध है। वो भी किफायती रेट्स पर। स्वस्थ दिल, सुरक्षित जीवन। आज ही अपॉइंटमेंट ले। श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल करें 7060022430।

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: आवश्यक सूचना 400 KB बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन की मझोला 400 KB उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: सुनो ना, मुझे ज्वेलरी खरीदनी है।
1: तो चलो फिर, इतना सोचना क्यों है, शहर चलते हैं ना ज्वेलरी लेने।
0: नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ पर बहुत ट्रैफिक रहता है और शोर भी बहुत होता है।
1: अरे नहीं,
2: अब ट्रैफिक की चिंता छोड़ो, क्योंकि बाबूराम सर्राफ का नया ज्वेलरी शोरूम ओपन हो गया है,
1: वो भी सिविल लाइंस में। ना ट्रैफिक की चिंता, ना शोर की, और हाँ, वहाँ ज्वेलरी खरीदने पर गोल्ड कॉइन जीतने का मौका भी है।
0: अच्छा?
2: हाँ, आपका वही पुराना एवं विश्वसनीय शोरूम बाबूराम सर्राफ, पता जैन मंदिर रोड, सिविल लाइंस, मुरादाबाद।
3: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.

0: अरे सुनो, बैटरी और इन्वर्टर ऑनलाइन मिल सकता है क्या?
1: हाँ है ना, श्रीहरि.इन। यहाँ मिलती है लुमिनस, माइक्रोटेक, एक्साइड, ओकाया और यूटीएल जैसे 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, ऑथराइज्ड ब्रांड्स, एक्सपर्ट इंस्टॉलेशंस, सेम डे डिलीवरी और हैसल फ्री एक्सचेंज। तो आज ही विजिट करें श्रीहरि.इन पर जाकर।

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: जी, आपका दूल्हा तो बहुत ही जच रहा है।
1: हो भी क्यों ना भाभी, राज कलेक्शन ने जो सजाया है, आफ्टर ऑल उनका कहना है दूल्हे हम सजाते हैं, बाराती भी सजने आते हैं।
2: अ कंप्लीट रेंज ऑफ वेडिंग कलेक्शन जैसे कोट सूट शेरवानी इंडो वेस्टर्न के साथ 10,000 की खरीद पर हेल्दी आउटफिट फ्री।
1: तो आज ही विजिट करें राज कलेक्शन, ओल्ड तहसील गेट मुरादाबाद।